आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update from Shimaru Filmi Gaane.

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: शहर का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: click on the bell icon to get regular updates from Venus.
1: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.
2: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
3: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: सुनो दिल से।

0: click on the bell icon to get regular updates from Venus.
1: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.
2: उत्तर बिहार का गौरव,
3: सारण प्रमंडल की शान,
2: गोपालगंज की धड़कन
3: और अपने भाषा की पहचान,
2: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: सुनो दिल से।

0: अच्छा राहुल, कुछ अपने बारे में बताओ ना।
1: मुझे फास्ट म्यूजिक अच्छा लगता है। आई लाइक बीट्स, फास्ट बीट्स। तू जो
2: है। आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

हमारे मुकद्दर में तो तुम यूं ही चली आई। लगता है खुदा ने अपने मासूम बचपन को बहलाने के लिए एक खूबसूरत खिलौना तराश रखा है।

0: आज दो शराबें मिल गई, सो नशा भी दुगना, तू गुलाब की पंखुड़ी से भी ज्यादा कोमल, शराब की बो
1: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: on the bell icon to get regular updates from Venus.
1: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.
2: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM. सुनो.

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: ओ मेरी चांदनी, तू मेरी चांदनी।
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

मसा

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: चुप हो जाना, चुप।
2: दिल मेरे तू दीवाना है।
1: लो छोटी मालिक का गीत गूंजा, अब ये चुप हो जाएगा।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
3: भरोसे वाले से लेंगे,
2: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
3: और कीमत भी।
2: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
4: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
6: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
7: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
6: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज।
8: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
6: कॉल करें 85070-32042 पे।
0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
9: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
10: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
11: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
10: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
12: All right.

0: आपने झीले किया जो रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
1: कॉल कीजिए 90 066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
0: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200 42 34 03 6200 42 34 03।
6: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
7: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।

हेलो प्रणाम नमस्ते नमस्कार कैसन बानी रउआ सबे। उम्मीद करते नहीं रउआ सबे ठीक होके हम है रउआ सबके दोस्त भारती और रउआ सब सुनतनी रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और इस समय हो गई बा रउआ सबके कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस के। तर ट्रेन निकल चुकल बिया, रउआ सबे सवार होके के चाहत हैं तो रउआ सब हमसे जुड़ सकते नहीं हमारा व्हाट्सअप इंस्टा कॉल के माध्यम से। तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 98 52 78 82 91। और कॉल के माध्यम से जुड़े के चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। और रउआ सबके एक और बात बता दी कि रउआ सब से तहे दिल से माफ़ी मांगते तनी, कहें कि हमने सबके रेडियो रिमझिम 18 घंटा से बंद रहला, कहें कि कुछ तकनीकी प्रॉब्लम हो गई रहला। अब सब ठीक हो गई बा और रउआ सबके मनपसंद कार्यक्रम के साथ हाजिर हो गई बानी। तो चलिए बिना देरी के लिए रउआ सब के खातिर एगो गाना प्ले करते नहीं, तब तक आप सभी जुड़त रही हमसे। और गाना है

रउआ सब अभी हमरा तरफ से सुननी हालो एगो खूबसूरत सा गीत और गाना के बोल रहा है जान से प्यारा सॉन्ग। तो चलिए लोग बिना देरी के लिए बढ़ल जाओ आगे की तरफ। और हमारे पास यहाँ बहुत सारा मैसेज पहुँच चुकल बा जे कि लिखत नहीं कि भारती मैडम नमस्कार, हम राहुल कैसन बानी रउआ गोपालगंज से, और ये मौसम कैसन बा बताई, और हमरो गाना सुने के बा, और ये खेसारी लाल यादव के बोलबम के गाना बजा देम, और रहीम आलम नरकटिया बाजार, योगेश कुमार फैशन टेलर साजिद आलम मॉडर्न लेडीज टेलर बेंगलोर से, प्रमोद प्रेमी पटरा टोली और एमडी मीनू बेंगलोर से। तो बहुत बहुत स्वागत बा रउआ सब के। और हम रउआ के बता दी कि हम भक्ति गाना तो नहीं बजा सकत, और कोनो और भोजपुरी गाना के रउआ फरमाइश कर दी तो जरूर प्ले कर दे। यही के साथ हमारे पास यहाँ एक और फरमाइश पहुँचल बा जे कि लिखा था नहीं, भारती जी नमस्कार, लिंक भेज दिले बानी और आपके सोनू भाई सभी दोस्तों को दिलीप राम की तरफ से नमस्कार। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और खाली गाना चली कि ऑनलाइन भी हुई तो ना ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू हो गई बा, और गाना के बोल बाबे यहाँ की नैनवा से बाढ़। तो चलिए बिना देरी के लिए यहाँ के गाना के प्ले कर जाऊँ और इन्जॉय कर जाऊँ सभी के साथ ही प्यारा सा गाना।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 अमरजैट पर।
3: ओम नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
4: बोलबम हर हर महादेव।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी के दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: ब्रेक के बाद फिर से रुवा सभी के स्वागत बा भोजपुरिया एक्सप्रेस में। तो रुवा सब सुनातानी रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और रुवा सब के एक बार फिर से बता दी कि रुवा सब से तहे दिल से फिर से माफ़ी मांगते हैं। काहे कि हमनी के सबके रेडियो रिमझिम 18 घंटा से बंद रहल है, काहे कि तकनीकी प्रॉब्लम हो गई रहल है। अब सब ठीक हो चुकल बा, तो चलिए बिना देरी कैले कार्यक्रम के आगे बढ़ावल जाओ। तो हमारा पास यहाँ बहुत सारा मैसेज पहुँच चुकल बा जे कि लिखते नहीं कि हेलो हाय नमस्ते भारती दी, हम श्याम सुंदर संग्रामपुर से, मुझे हमरो एगो गाना सुने के बा और गाना के बोल बा जीजा के छोटका भाई है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, स्वागत बा रोवा भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखते नहीं कि सोनी जी प्रणाम, सभी रेडियो रिमझिम साथी के नमस्कार, और सुबोध साहू बेगूसराय से बोलते नहीं और गाना सुने के बा। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और एक साथ ही हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत है नी मीनू जी, और यहाँ के गाना सुने के बाद तोरा दिल है कि चार्जर कते ही लगा ले लूँ। तो चलिए बिना देरी कैले यहाँ के गाना के प्ले कर जाऊँ और इन्जॉय कर जाऊँ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

तो अभी हमने के सुनत रहनी हम बहुत ही खूबसूरत से गाना खेसारी लाल की आवाज़ में, तोहर दिल है कि चार्जर कते ही लगा ले लूँ, तो बिना देरी के लिए आगे बढ़ल जाऊँ। और हमने के पास यहाँ बहुत सारा मैसेज पहुँचल बा, और जे कि लिखते दी कि हेलो का हाल बा आरजे सोनू, हमके भी गाना सुने के बा और शादी हुई रुपया फेंक के। और लिखते दी का हाल बा जी बता। अच्छा तो बहुत बहुत स्वागत बा रहो, और बिना देरी के लिए चली रहो गाने के प्ले करते नहीं, और सभी लिसनर के साथ एंजॉय कर जाओ खूबसूरत से गाना।

0: तो अभी हमने क्या सुना प्रणी आसान सोनू जी सोनू आरजे जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत से गाना शादी हुई रुपया फेंक के अंकुश राजा और शिल्पी राज की आवाज़ में और लिखा था नहीं कि सब कोई के सुनाए रहल और कैसन बानी सब लोग तो जरूर जवाब देम लो और एक साथ ही हमारे पास अगला मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखा था नहीं कि सोनू भाई कौन सा बाबा के हाथ दिखाए हैं तो अब यहाँ के तो ई बात तो वहीं के बता सकते नहीं और एक साथ ही हमारे पास अगला मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखा था नहीं कि भोजपुरिया प्रणाम सबके होके हम दिलीप कुमार ठाकुर मिर्जापुर से मोहल्ली पंजाब से आज हमरो फरमाइश बा लिंक भेज दिले बानी और गाना सुने के चाहते नहीं तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी और यही के साथ हैं लिख रहे हैं कि भोजपुरी वॉइस तो बड़ा अच्छा लगा था तो बहुत बहुत धन्यवाद एक खाती और एक साथ हमारे पास अगला मैसेज पहुँचल बा जी लिखा था नहीं हाय भारती दी का हलवा और हम गणेश कुमार पिपरा नारायण से जुड़ चुकल बन तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी और एक साथ हमारे पास अगला जो फरमाइश पहुँचल बा लिखा था नहीं कि भारती जी भोजपुरी प्रोग्राम भोजपुरी प्रणाम और हमारा टिकट कन्फर्म कर दी तो चलिए और टिकट कन्फर्म करते नहीं और मैसेज करे वाला बनी धनेश मिश्रा दिल्ली से और लिखा था नहीं कि गाना के बोल बा प्यार ओकरे से होला गाना सुने के बाद और चलिए बिना देरी के लिए यहाँ के गाना प्ले कर जाऊँ और एंजॉय कर जाऊँ सभी के साथ ही प्यारा सा सॉन्ग
1: प्यार बाउट चीज ना हो यह नजर जगह पर लड़ जाए तो प्यार हो जाए अकु जगह लड़ जाए तो मार हो जाए अब प्रभु से लड़ जाए तो उधार हो जाए अब हमनी के सोचे के बा ये नजर के कहाँ लड़ावे के

प्यार का भी गजब रीत है। प्यार अक्सर उसी से होता है जो चाहता नहीं है। कुदरत का खेल देखिए, वो अक्सर वही देता है जो भाता नहीं है।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 8470103092 या 9765065750।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ, विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456 या 9707-06-575।
7: ब्रेक के बाद फिर से स्वागत बा रउआ सबके भोजपुरिया एक्सप्रेस में, और रउआ सब सुना तनी रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तब बिना देरी कैले आगे बढ़ल जाओ, और हमरा पास यहाँ बहुत सारा मैसेज पहुँचल बा, जिनमें कि लिखा तनी कि RJ सोनू जी लिखा तनी कि हमरा बराती जे भी जाई उनका के धोती कुर्ता फ्री में बा, और खाली नहा के आवे के बा, बराती जाए के बा। और लिखा तनी कि दिलीप भाई और राघव भाई के लहंगा मिली। और एक के साथ ही हमारे पास जौन अगला मैसेज पहुँचल बा, लिखा तनी कि गाना सुनाए खाती बहुत बहुत धन्यवाद, और गाना रुआ कैसन लागल है बताएं भारती जी, तो गाना तो बहुत ही सुंदर रहा। और एक के साथ ही हमारे पास अगला मैसेज पहुँचल बा दिलीप राम जी के तरफ से, तो लिखा तनी कि अति सुंदर गाना, प्यार ओकरे से होला दिलीप राम। तो यहाँ एक और मैसेज पहुँचल बा, लिखा तनी कि हेलो मैम, सरफरोज अली अखिल टोला से जुड़ चुकल बानी, तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यही के साथ ही हमारे पास जौन अगला फरमाइश पहुँचल बा, लिखा तनी भारती जी गुड आफ्टरनून, मनीष रजाक फाजिलगढ़ कुशीनगर उत्तर प्रदेश से और भोजपुरिया एक्सप्रेस में जुड़ चुकल बानी, और ये गाना सुने के चाहत नहीं, तो यहाँ के तरफ से गाना पहुँच चुकल बा। और लिखा तनी कि गाना के बोल ह अब तू सतावल छोड़ दे, तो चलिए बिना देरी कैले यहाँ के गाना के प्ले कर जाऊँ और इन्जॉय कर जाऊँ सबके साथ ही प्यारा सा सॉन्ग।

सुनत रहनी आसान खेसारी लाल की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत से गाना और गाना के बोल रहा ला, अब तू सतावल छोड़ दो और बहुत ही खूबसूरत गाना रहा ला। तो चलिए बिना देरी के लिए आगे ला फरमाइश की तरफ बढ़ल जाओ और हमारा पास यहाँ मैसेज पहुँचल बा जैसे लिखा था नहीं गुड आफ्टरनून और मैसेज करे वाला बानी मुस्तफ़ा सऊदी अरबिया से। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी और यही के साथ ही हमारा पास अगला मैसेज जे कि पहुँचल बा लिखा था नहीं कि मुन्ना खान जुड़ चुकल बनी हमके साथ है और गाना सुनने के चाहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी और यहाँ एक और मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखा था कि भोजपुरिया एक्सप्रेस में आप रुआ सबके स्वागत बा। भारती जी नमस्कार, हम पौन सा ग्राम मड़ैया खगड़िया बिहार से जुड़ चुकल बानी और गाना सुनने के चाहनी। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी और यहाँ एक और मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखा था नहीं कि हमरो गानवा बजा दी और सरफरोज अली अकील टोला से जुड़ल बानी और लिखले गाना के बोल बा हमार जिंदगी में आके गोरी पवन सिंह के गाना हो। तो चलिए बिना देरी कैले यहाँ के गाना प्ले कर जाओ और बहुत ही खूबसूरत से गाना बा तो इन्जॉय कर लो सभी लोग।

अभी हमने के सुना तरनिया से सरफुर जी की तरफ से बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग और गाना रहल है हमरा जिंदगी में आके गोरी। तो बिना देरी के लिए आगे बढ़ल जाऊँ और हमरा पास यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखा था नहीं कि नमस्कार भोजपुरिया प्रणाम, हम धर्मेंद्र सानी समस्तीपुर से जुड़ गई बानी और ये हमरो हाजिरी लगा दी और आज हमके एगो गाना सुने बा और गाना सुना दे। और लिखा था नहीं कि बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी और यही के साथ ही हमारे पास अगला मैसेज जन पहुँचल बा लिखा था नहीं कि हेलो बजा दीजिए बजा दी गाना और इसराइल अंसारी तीन फेरिया बाजार से जुड़ चुकल बानी तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यही के साथ ही हमारे पास अगला जन मैसेज पहुँचल बा लिखा था नहीं कि गुड आफ्टरनून मैडम, लिख रहे हैं कि लिखा था नहीं कि भटक गए हम राहों में, मंजिल का ठिकाना नहीं था, ले गई जिंदगी उन राहों में जहाँ हमें जाना नहीं था, कुछ किस्मत की मेहरबानी कुछ हमारा कसूर था और हमने खो दिया सब कुछ वहाँ जहाँ कुछ पाना नहीं था। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी और भोजपुरिया एक्सप्रेस में जुड़ चुकल बानी। तो यही के साथ जौन हमरा पास अगला फरमाइश पहुँचल बा इंस्टाग्राम के माध्यम से जे कि लिखा तनी कि हम दीनानाथ हम दही भत्ता से और उषा बोलते नहीं और हमरो टिकट कन्फर्म कर दी और गाना सुने के बा और गाना सुना दी। लिखा तनी कि प्यार किकरों से ना करी है तो बहुत ही खूबसूरत गाना की फरमाइश पहुँचल बाद चलिए बिना देरी के लिए राउ टिकट कन्फर्म करते नहीं और गाना प्ले करते नहीं। तो एंजॉय करिए अपना गाने के सभी के साथ।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
4: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
6: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
8: ब्रेक के बाद फिर से स्वागत बा रउआ सबके भोजपुरिया एक्सप्रेस में। और रउआ सब सुना तनी रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तब बिना देरी के लिए आगे बढ़ल जाओ। और ये हमारा पास यहाँ बहुत सारा मैसेज पहुँचल बा, जेके लिखा तनी कि नमस्ते मैडम जी, हम जुड़ चुकल बानी और इजरा नवादा संग्रामपुर से सोना लाल कुमार, हमरो एगो गाना सुने बा और गाना सुना दे। और लिखा तनी कि इश्क की राह में अक्सर मुकाम बदल जाते हैं, हवा का रुख क्या बदला, इंसान बदल जाते हैं, संभल के दिल लगाना ऐ मेरे नादान दोस्त। यहाँ जरूरत पूरी होती है, इंसान बदल जाते हैं। और यह शायरी सबसे पहले आपको सुनाना चाहते हैं और उसके बाद श्याम सुंदर जी को और निकेश जी के और बिरगुन भैया के और अखिलेश भैया और मिथिलेश जी के, निकेश जी के, रघु जी को और ये दिनेश जी के। तो थैंक यू शायरी पढ़े खातिर। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ हमरा पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँचल बा, तो चलिए लिहल जाऊँ कॉल और सुनल जाका यहाँ के बा फरमाइश। हेलो,
9: नमस्कार मैम।
8: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत बा रेडियो रंजीम 90.4 FM में। ना ना, डस्टबिन में कौनो नहीं खे, फोन आईल हा, दिखल हा, तबे तो उठाई नहीं हा। और गाना बाजत रहेला वो टाइम फोन करे नहीं लो तो हम कैसे उठा सकता नहीं।
9: ना ना, गाना बाज जब चालू, जैसे गाना चालू हो वो बेरा तो हम फोने कर दीजिए। सोमवार से भी हम यूज में हम फोन कर करने से रहुआ नहीं
8: उठा। ना ना, फोन उठावे नहीं, गाना बाजत रहेला तबे ना उठाए नहीं, प्रचार रहेला तबे ना उठाए नहीं।
9: हमारे को रूल है कि जैसे गाना जब चालू हो जाए तो वैसे हम फोन करते, कोई बेरा फोन कर दीजिए।
8: तो बता दी कौन गाना सुनने के चाहते नहीं आज?
9: गाना सुनने के बाद भक्ति गाना था जी।
8: ना ना, भक्ति गाना नहीं के बात सकत।
9: भक्ति गाना ना था जी, चाहे वो गाना बावे जब कुमार लड़की साइकिल चलावे लगली तब लड़का ऐसा ही कुछ बावे, वह गाना सुना दी।
8: गाना सुना हो के बाकी ओके।
9: अब जितना रेडियो रिमझिम श्रोता सबके बच्चिया श्रोता बा सबके सुनिए, गाना तो बड़ा बताता जी, एक दूसरा के कितना मिला था?
8: दिलीप जी के मिला था और राघव जी के।
9: अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है। हमारे सोनी मैम
8: अभी तो हम नहीं बता सकते, ये हमार मैनेजमेंट बताई रुआ लोग इनके। चलिए बिना देरी के लिए और गाना प्ले करते नहीं, एंजॉय करी रेडियो रंजीम 90.4 FM में। नमस्कार।

अभी हमने के सुनत रनिया सर रवि किशन जी के बहुत ही खूबसूरत से गाना लेकी जब से साइकिल चलावे लागल और एक साथे बढ़ल जाइए आगे की तरफ। और हमारे पास यहाँ अभी भी मैसेज बहुत सारा पहुँचल बा और लिखत है कि भारती जी आज तक गर्दा उड़ गई बा और गाना अच्छा चलता और वो अच्छा लागल, ये सुन के हमरो अच्छा लागल। और एक साथे हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचल बा लिखत है कि गाना सुने के बाद लाली लाली उठवा से चुआ तलाली। और अमरूपाली जी जुड़ल बानी तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यही के साथ ही हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत है कि नमस्ते मैडम का हाल बा कैसन बानी बताई। और ये हम सुनील कुमार बिहार गोपालगंज उज्जैन से बानी और हमरो एगो गाना सुने के बा और गाना के लिंक भेजत नहीं और गाना सुना दे मोरी लाजवाब गाना चलाता। और यही के साथ ही यहाँ अगला मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत है कि हमार गनवा बाजी कि ना तो जरूर बाजी। और एक के साथ जौन हमरा पास जौन अगला फरमाइश पहुँचल बा लिखत है कि गाना सुने के बा और सुबोध साहू बेगूसराय से जुड़ल बानी और गाना के बोल यहाँ पहुँचल बा गाना के बोल बा किकरा से कहीं दिल के बतिया। तो चलिए बिना देरी के लिए यहाँ के गाना प्ले कर जाऊँ और इन्जॉय कर जाऊँ सभी के साथ ही प्यारा सा सॉन्ग।

और यहाँ गाना के बोल जौन पहुँचल बा लिखा तनी कि दोसर गाना बा लाल टेनिस वाला सानिया दुल्हा खोजली पाकिस्तानी। तो चलिए बिना देरी के लिए यहाँ के गाना के प्ले कर जाओ और इंजॉय।

तो अभी हमने के सुना त्रिनी आसन बहुत ही खूबसूरत से गाना खेसारी लाल के आवाज में, लाल टेनिस वाली सानिया दुल्हा खुजली पाकिस्तानी। तो चलिए बिना देरी के लिए आगे बढ़ जाओ। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचल बा, जैसे लिखा था नहीं कि सोनू भाई आज तो लहंगा सिलाई उसमें ऊँ में सिलाई ला लेकिन ऊँ में डोरी ना लागल हा, और आधा उम्र बीत गई शादी के दिन देखत देखत, और लहंगा मत दी धोती कुर्ता दी, और वो धोती कुर्ता चैन लगावा के राघव जी के दी। और हम बोलते नहीं दिलीप राम दिल्ली से, तो बहुत बहुत स्वागत बा। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचल बा, देखी लिखत नहीं ए मैडम हमार एस एम एस पहुँचल बा कि ना। जी रो एस एम एस पहुँच गई बा। और यहाँ हमारा पास जौन अगला फरमाइश पहुँचल बा, लिखत नहीं भोजपुरिया एक्सप्रेस में हम सबके स्वागत बा और ये नमस्कार। और ये हमारा पवन सिंह के गाना सुने के बा, और मैसेज करे वाला बानी कि पवन सा ग्राम मड़ैया से तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके, और पवन सिंह के गाना सुने के चाहत नहीं और गाना के बोल बा लॉलीपॉप लागेली। तो चलिए बिना देरी के लिए यहाँ के गाना के प्ले कर जाओ और इन्जॉय कर जाओ सभी के साथ ही प्यारा से सॉन्ग।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
8: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
7: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
9: ब्रेक के बाद फिर से स्वागत बरोवा सबके भोजपुरी एक्सप्रेस में, और रोवा सब सुना तनी रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तो चलिए बिना देरी के लिए कार्यक्रम के आगे बढ़ावल जाओ, और यहाँ हमारा पास मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखा तनी कि भारती जी अब भोजपुरी समझ में आवता नो रोवा, तो कोशिश तो करते बानी कि समझी और बोलते बानी, और रोवा सब बताएं कि कैसा लगता। और एक साथ हमारा पास अगला मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखा तनी कि बहुत ही अच्छा गाना लागल लॉलीपॉप सॉन्ग, पवन साहू के धन्यवाद कहें तो बोल दिल बानी। और यही के साथ ही हमारा पास अगला मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखा था नहीं कि बहुत बहुत बहुत बढ़िया सॉन्ग पवन सिंह के। और अगला मैसेज जौन की पहुँचल बा लिखा था नहीं कि मोतिहारी से MD गाना सुने बा, और गाना सुना दी मैडम जी, और गाने के बोल पहुँच चुकल बा, और लिखा था नहीं कि चांद जैसन चेहरा तोहार दिल हमार हमरा लिए। तो चलिए बिना देरी के लिए यहाँ के गाना प्ले कर जाओ और एंजॉय कर जाओ खूबसूरत से गाना।

0: अभी हमने के सुना त्रिनिया सन बहुत ही खूबसूरत से गाना, चांद जैसन चेहरा तोहार, और फिल्म रहल है निरहुआ रिक्शा वाला के, और एक साथे बढ़ल जी आगे। और हमरा पास यहाँ मैसेज पहुँचल बा, लिखा था नहीं कि का हाल चाल बा भारती जी, और बहुत अच्छा प्रोग्राम चलत बा, तो बहुत बहुत शुक्रिया, और रुआ सबके मजा होता कि ना। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचल बा जी के, लिखा था नहीं कि हेलो मैम नमस्ते, हम अंकित राय गोपालपुर से, और गाना सुनने के चाहते हैं, तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचल बा जी के, लिखा था नहीं कि मैम हमारा नंबर आई कि ना, और एक घंटा हो गई बा मैसेज के लिए। और यहाँ हमरा पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँचल बा, तो चलिए लिखल जाओ कॉल और सुनल जा का यहाँ के बा फरमाइश। हेलो।
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत बा रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। जी जी
1: बहुत अच्छी की स्वागत है भैया, मैं बिना सफरी के ली थी और के सुखा चली।
0: हाँ
1: जगरा ना खाए कोई चली आई, जगरा खाए कोई मत आई।
0: अच्छा जी।
1: हाँ गाना सुने बा।
0: बता दी कौन सा गाना।
1: अंगना में बाहर आई भौजी, राखों में एक हमार भौजी।
0: और गाना क्यों के सुना हूँ कि बा

और हमने क्या सुना त्रिनी हसन, बहुत ही खूबसूरत से गाना श्यामा जी की तरफ से, साची कहे तुर आवन से। और एक साथ बढ़ल जी आगे और हमरा पास यहाँ मैसेज पहुँचल बा, जे कि लिखा था नहीं कि भजपुरिया प्रणाम भारती मैम, और अनूप कुमार कुशवाहा ग्राम निर्जन से जुड़ चुकल बानी, अभी पुणे में गाना सुना था नहीं और गाना सुने के चाहत नहीं, तो गाना रो प्ले कर लिए। और एक पहले हमरा पास यहाँ मैसेज पहुँचल बा, जे कि लिखा था नहीं मोतिहारी मीना बाजार से पुट्टू भाई और लाली, गाना सुने के बाद तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचल बा, जे कि लिखा था नहीं कि गाना बाज सकत का, तो बिल्कुल रहो गाना बाज सकत। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचल बा, जे कि लिखा था नहीं कि समर सिंह की आवाज़ में गाना सुने के बाद गुरैया जलेबी। और हेलो नमस्ते मैम, हम अंकित राय गोपालपुर से, तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ जौन की मैसेज पहुँचा रहा है, लिखा था नहीं कि गाना सुने के बाद अनूप कुमार कुशवाहा जी, और गाना सुने के चाहते नील कमल जी की आवाज़ में, और गाने की भूल बा गाना बजाओ डीजे डांस करे। तो चलिए बिना देरी के लिए यहाँ के गाना प्ले कर जाओ और इन्जॉय कर जाओ सभी के साथ ही प्यारा से गाना।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
7: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
6: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9939365923।
9: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।

ब्रेक के बाद फिर से स्वागत बरुआ सबके भोजपुरिया एक्सप्रेस में। और यदि हमरे से भोजपुरिया एक्सप्रेस में जुड़े के चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91। और रिकॉल के माध्यम से जुड़े के चाहते हैं तो नंबर बा 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी के लिए कार्यक्रम के आगे की तरफ बढ़ावल जाओ। और यहाँ हमारे पास बहुत सारा मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत है नी भारती मैम, हमरो एगो गाना के फरमाइश बा, प्लीज़ हमरो गाना बजा दी। और बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ लिखत है नी कि थैंक यू मैम गाना बजाए खाती। और यहाँ हमरा पास जन अगला फरमाइश पहुँचल बा जे कि लिखत है नी कि इजरा नवादा संग्रामपुर से जुड़ल बानी सोना लाल कुमार। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी और गाना के सुने के चाहत नहीं और गाने की भूल बा। प्रीतिया कितना सताई। तो बिना देरी के लिए यहाँ के गाना के प्ले कर जाओ और एंजॉय कर जाए खूबसूरत से गाना सभी के साथ।

अभी हमने क्या सुना त्रिनियासन, सोना लाल जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत से गाना प्रीतिया कितना सताई, और एक साथ ही बढ़ल जाऊँ आगे की तरफ। और हमारा पास यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखा था नहीं कि हम गोल्डन टेलर, प्रणाम मैडम जी, हम भोजपुरी एक्सप्रेस में जुड़ गल बानी और ये हमरो एगो गाना के फरमाइश बा और गाना बजा देम, तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखा था नहीं मनीष कुमार घर पिपरा नारायण से लिंक भेज दिल बानी हमरो गाना बजा देम, तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और गाना प्ले हुई पर ओकरा से पहले हमरा पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखा था नहीं कि सनी शर्मा जुड़ चुकल बानी, तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और गाना सुने के चाहत है नी और गाना के बोल बा मती मार के यार के फसैला सरे बंगले निया, तो चलिए बिना देरी के लिए यहाँ के गाना के प्ले कर जाओ, इंजॉय कर जाओ सबके साथ खेसारी लाल की आवाज़ में।

और खेसारी लाल के गाना के साथ बढ़ल जाऊँ आगे की तरफ। और एक के साथ हमारे पास यहाँ बहुत सारा मैसेज पहुँचल बा, जो कि लिखा था नहीं कि हमार नाम स्नेहा कुमारी और हम गोपालगंज से जुड़ल बानी और हमरो एगो गाना सुने बा और हमरो गाना बजा दी और लिखा था नहीं प्लीज़ दी सुना दी। तो रो गाना प्ले हुई ओकरा ले पहले हमारे पास यहाँ लिखा था नहीं कि मैसेज पहुँचल बा और लिखा था नहीं कि अजय कुमार कुशवाहा दरौली सिवान बिहार से जुड़ चुकल बानी और हमरो एगो गाना सुने बा और गाना के लिंक पहुँचल बा और लिखा था नहीं गाना सुने के बाद एगो माई के दूगो ललनवा। तो चलिए बिना देरी के लिए यहाँ के गाने का प्ले कर जाऊँ और इन्जॉय कर जाऊँ सभी के साथ ही खूबसूरत से गाना।

तो अभी हमने के सुना तनिया सन बहुत ही खूबसूरत से गाना है एगो माई के दुख ललनवा। तो एक साथे बढ़ल जाइए आगे की तरफ और यहाँ हमारे पास अभी मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखा देनी कि हमार गाना बुरा में कस दिले बानी का। तो ना ऐसा बात नहीं है, सब केहू के गाना बाजत और यहाँ टाइम के भी बहुत ही कमी बा और आज शो भी लेट से शुरू भइल वही की वजह से थोड़ा परेशानी हो गई है। और यहाँ हमरा पास एक और मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखा दानी कि नमस्ते मैडम, का हाल बा, कैसन बानी, और सुनील कुमार बिहार गोपालगंज उज्जैन से जुड़ल बानी और गाना सुने के चाहत नहीं और गाना के बोल यहाँ पहुँचल बा जे कि लिखा दानी कि रोए के अकेले बा। तो चलिए बिना देरी के लिए यहाँ के गाना के प्ले कर जाऊँ और इन्जॉय कर जाऊँ सबके साथ।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 5599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
1: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
3: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
0: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034648652 पे।

ब्रेक के बाद फिर से स्वागत बरोवा सबके भोजपुरी एक्सप्रेस में और रोवा सब सुनाते नहीं रेडियो रिमझिम 91.4 एफएम। तो बिना देरी के लिए चलिए यहाँ आगे बढ़ल जाओ और हमारे पास यहाँ बहुत सारा मैसेज अभी भी पहुँचल बा और लिखा था नहीं कि लेट से हम जुड़ल बानी और अपन मन के बात कहते नहीं भोजपुरी एक्सप्रेस चलत रहल है और हर रोज काहे हर रोज नहीं चलत हमसे बताएं और नमस्कार प्रणाम गाना सुने के बा ए गणेश के मम्मी पा भर भांग खिया देना और लिखा था नहीं कि बात रउआ निराला बा बोली राउर प्यारा बा और रउआ स्टूडियो से बोला था नहीं सुनत दुनिया सारा बा और एक साथ जुड़ल बानी जे कि लिखा था नहीं कि सब श्रोतागण के साथ सावन शर्मा धन्यवाद। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी और आपके हम बता दिए कि भक्ति गाना प्ले नहीं की कर सकत और अगर रउआ भोजपुरी कौन और गाना बोले तो जरूर प्ले कर दे और एक साथ हमारे पास यहाँ और मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखा था नहीं कि गुड आफ्टरनून मैडम जी का हाल बा ठीक बानी नू और लिखा था नहीं कि दिन रात मेहनत से जो हर धुन को सजाते हैं अपनी मीठी आवाज़ से हर दिल को बहलाते हैं सलाम है रेडियो रिमझिम के उन हुनरमंदों को जो पर्दे के पीछे रहकर भी हर चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और बहुत ही खूबसूरत लाइन थी इसके लिए दिल से धन्यवाद। और इसी के साथ यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि

मनीष कुमार घर पिपरा नारायण से जुड़े हैं और गाना सुनना चाहते हैं और गाने की जो कि बोल पहुंची हुई है, लिख रहे हैं बर्बादी सॉन्ग सुनना है। तो चलिए बिना देरी किए इनके लिए गाना प्ले किया जाए और इन्जॉय किया जाए सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

और शिल्पी राज की आवाज में अभी गाना चलत रहा है बर्बादी सॉन्ग। और यहाँ धनेश जी की तरफ से मैसेज पहुंचल बा भारती जी, ऐसा लागत है कि आज बर्बादी सॉन्ग ना बाजी, जाते जाते अपना से बर्बादी सॉन्ग प्ले करके जाएं। और लिखत है नी कि बाज गई तो यहाँ बर्बादी सॉन्ग के भी फरमाइश आई रहला और रोवा कहे के ना पड़ल और फिर गाना भी बाज गई और ये अपना मन से हमारा प्ले भी ना करे के पड़ल। और एक साथ ही हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत है नी कि आज गाना ना बाजी का, और लिखत है नी कि सुना दे बहुत राउर धन्यवाद बा। और लिखत है कि आज इतवार और सब भगवान के आशीर्वाद बा। यही के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत है नी कि भोजपुरिया प्रणाम, और गाना सुने के बाद दिलीप कुमार ठाकुर मिर्जापुर से जुड़ल बानी और गाना के बोल पहुँचल बा जे कि लिखत है नी कि जैसे चमके सूरज के किरणवा। तो चलिए बिना देरी के लिए यहाँ के गाना प्ले कर लिया और इंजॉय कर लिया सबके साथ।

अभी हमने सुना त्रिनिया सन बहुत ही खूबसूरत से गाना और एक के साथ बढ़ल जाइए आगे की तरफ और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत है नहीं कि हमरो मैडम जी गाना प्ले कर दें और जाए से पहले और मैसेज करे वाला बानी पाजी यूपी 54 से और गाना के बोल पहुँचल बा और लिखत है नहीं कि केहू आई परदेसी और गाना बहुत ही खूबसूरत बात चली इन्जॉय कर जाए सबके साथ हो

तो श्रोतालो समय हो गया कार्यक्रम के समाप्त करे के, और यदि हमरा से रुआ जुड़े के चाहते नहीं भोजपुरी एक्सप्रेस में तो हमारे व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकता नहीं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91, और कॉल के माध्यम से जुड़े के चाहते हैं तो नंबर बा 72 77 16 65 96। और यहाँ हमरा पास सभी के तरफ से बाय बाय के मैसेज पहुँचा था, और लिखा था नहीं कि हम खिसियाल बानी मैम हमार गाना ना बजैनी, तो ऐसा कोनो बात नहीं खे, और गाना सब केहू के बाज जाए अगर सो समय से शुरू हो जाए, लेकिन कुछ परेशानी दिक्कत के कारण गाना सो समय पे शुरू ना हो समय पे शुरू ना भइला, और यही के वजह से कुछ लोग के फरमाइश छूट गईला, और ये खाती हमरा दिल से खेद बस, और सबके उसे निवेदन बा कि कल से तो फिर गाना बजबे करी, और भोजपुरी भी गाना रुआ सुनबे करे नीलो तो ओह में अपन भोजपुरी गाना सुन सकत हैं लो। एक ही साथ है आज हमरा के दिल हो जाए के इजाजत, और सुनत रही लो ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। तो दोस्तों, हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए आपको कॉल करना होगा हर रविवार 12 बजे से हमारे स्टूडियो के नंबर 8029494 पर। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं रेडियो रिमझिम के इस रोमांचकारी खेल के रूल्स को। इस हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे 10 प्रश्न। हर प्रश्न के होंगे 3 ऑप्शन, जिसमें से होगा एक सही जवाब और आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय। यदि आप 10 सेकंड में जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप इस खेल से बाहर हो जाएंगे। 10 प्रश्न के सही जवाब देने वाले प्रतिभागी को मिलेगा रेडियो रिमझिम के तरफ से एक एक्साइटिंग गिफ्ट और हमारे स्टूडियो में आने का मौका। तो दोस्तों, आपको अपने तरफ से इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके मोबाइल में पर्याप्त बैलेंस हो। साथ ही हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के दौरान शांत जगह से कॉल करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी से सहायता ना लें और इंटरनेट पर जवाब सर्च ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट को और लेते हैं पहले प्रतिभागी का कॉल।
1: हेलो जी, नमस्ते।
2: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
1: जी मैम, थैंक यू।
2: नाम बता दीजिए।
1: नाम सचिन कुमार चौहान, पोखर में नियुक्त रहते हैं।
2: जी, क्या करते हैं सचिन जी?
1: मैम क्या करते हैं, काम करते हैं, केरला में अभी है और काम वो करते हैं। जी,
2: तो आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है?
1: जी मैम, 11th फाइनल है।
2: ओके, तो आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
1: मम्मी का नाम चंद्रावती देवी, पापा का नाम रमेश महतो।
2: ओके, आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं तो आप तैयार हैं पहले प्रश्न के लिए?
1: जी मैम, तैयार है।
2: ओके, तो लिया जाए आपसे आपका पहला प्रश्न।
1: जी जी,
2: चलिए सचिन जी, आपसे आपका पहला प्रश्न ये है

0: सम्राट अशोक के शिलालेख किस लिपि में मिले हैं? सम्राट अशोक के शिलालेख किस लिपि में मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए है नागरी, ऑप्शन नंबर बी है गुरुमुखी और ऑप्शन नंबर सी है ब्राह्मणी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: रिपीट कीजिएगा।
0: ऑप्शन नंबर ए है नागरी।
1: नहीं, सवाल
0: सम्राट अशोक के शिलालेख किस लिपि में मिले हैं?
1: जी मैम, ऑप्शन
0: ऑप्शन ए है नागरी, ऑप्शन नंबर बी है गुरुमुखी और ऑप्शन नंबर सी है ब्राह्मणी।
1: बी को लो कीजिए।
0: बी को? गुरुमुखी।
1: जी जी,
0: कन्फर्म है?
1: कन्फर्म नहीं है, ये सवाल अभी कभी पढ़ा ही नहीं है, बता दो।
0: ओके, तो सचिन जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी गुरुमुखी को लॉक करते हैं। अरे बता दे कि पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा ब्राह्मणी। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट संडे फिर ट्राई करिएगा।
2: हेलो
0: जी, रेडियो रेंजिंग के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाम बता दीजिए आप अपना।
2: आकाश कुमार यादव नाम है।
0: आकाश कुमार, कहाँ से बात कर रहे हैं आकाश जी?
2: खालवा टोला से।
0: ये कहाँ पड़ता है आपका गांव? ये आपका गांव कहाँ पड़ता है?
2: गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में।
0: अच्छा, तो क्या करते हैं आकाश जी आप?
2: पढ़ते हैं।
0: किस क्लास में पढ़ते हैं?
2: 9th।
0: अच्छा, तो आपका आगे का लक्ष्य क्या है?
2: आगे का लक्ष्य है टीचर बनने का।
0: ओके, तो आप इससे पहले हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में जुड़े हैं?
2: नहीं नहीं।
0: आज फर्स्ट है आपका? आप पहली बार जुड़ रहे हैं?
2: जी मैम।
0: ओके, तो आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: मम्मी का नाम है मालती देवी।
0: ओके, आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं तो तैयार हैं आप पहले प्रश्न के लिए?
2: जी मैम।
0: ओके, लिया है आपसे आपका पहला प्रश्न। आपसे आपका पहला प्रश्न ये है

0: कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मॉनिटर, ऑप्शन नंबर बी है सीपीयू और ऑप्शन नंबर सी है माउस। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मॉनिटर होगा।
0: ऑप्शन नंबर ए कंफर्म है?
1: क्या कैमरा था, कौन कौन था?
0: ऑप्शन नंबर ए था मॉनिटर, ऑप्शन नंबर बी था सीपीयू और ऑप्शन नंबर सी था माउस।
1: सीपीयू होगा मैं।
0: सीपीयू होगा कंफर्म है? ओके तो लॉक करें।
1: लॉक कर दीजिए।
0: ओके तो चलिए आकाश जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी सीपीयू को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: ओके तो आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, भारत का पहला कंप्यूटर किस वर्ष आया था? ऑप्शन नंबर ए है 1955, ऑप्शन नंबर बी है 1965 और ऑप्शन नंबर सी है 1975। आपका समय शुरू होता है अब।
1: उन्नीस सौ पचपन होगा।
0: कंफर्म है?
1: कंफर्म नहीं है।
0: तो लॉक करें?
1: लॉक कर दीजिए।
0: ओके तो चलिए आकाश जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर 1955 को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: ओके तो आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
0: कंफर्म है?
1: कंफर्म नहीं है मैम, पर लॉक कर दीजिए।
0: ओके तो चलिए आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तो तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: ओके आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1930, ऑप्शन नंबर बी है 1942 और ऑप्शन नंबर सी है 1947। आपका समय शुरू होता है अब।
1: कन्फर्म
0: है?
1: जी मैम।
0: तो लॉक करूं?

0: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
0: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 80-29-94-921, 80-29-94-921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
7: हेलो, हेलो
8: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो निम्जिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
7: हाँ,
8: आप अपना नाम बता दो बाबू।
7: रुद्र।
8: रुद्र कहाँ से बात कर रहे हो?
7: भीतभेरवा से।
8: तो आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं?
7: हाँ, पहले भी हेलो माय चॉइस के शो में भी एक बार फोन किया था।
8: जी जी, आप हेलो माय चॉइस के शो में कॉल किए थे, लेकिन ये हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का कार्यक्रम है। आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए। रुद्र।
7: मम्मी का नाम है अनुपमा कुमारी और पापा का नाम रवि श्रीवास्तव।
8: ओके, आपके पापा क्या करते हैं?
7: क्या?
8: आपके पापा क्या करते हैं?
7: पापा क्या करते हैं? वो जो ऑफिस।
8: आपकी आवाज कट रही है।
7: फीस के मैनेजर है जो दिल्ली में है।
8: अच्छा अच्छा, दिल्ली में है, मैनेजर है। ओके, और मम्मी?
7: मम्मी टीचर।
8: ओके, आप किस क्लास में पढ़ते हैं रुद्र?
7: और सैनिक माइंड।
8: स्कूल का नाम बताया आपने, आप किस क्लास में पढ़ते हैं?
7: 4B।
8: 4 में पढ़ते हैं।
7: हाँ।
8: ओके, तो आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं, तो तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
7: हाँ।
8: रुद्र, मैं आपसे आपका पहला प्रश्न लेती हूँ।
7: ठीक है।
8: आपका पहला प्रश्न आपसे है,

0: बिहार की राजधानी कौन सी है? बिहार
1: पटना।
0: कंफर्म है?
1: हाँ।
0: ओके, तो रुद्र जी आपकी पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तो ले आपसे आपका दूसरा प्रश्न।
1: हाँ।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है पटना, ऑप्शन नंबर बी है कैमूर और ऑप्शन नंबर सी है पश्चिमी चंपारण। आपका समय शुरू होता है अब।
1: पटना।
0: कंफर्म है? पटना है।
1: हाँ।
0: तो लॉक कर दें?
1: हाँ।
0: तो रुद्र जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर पटना को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा आपका पश्चिमी चंपारण। ठीक है?
1: ठीक है।
0: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का कॉल किए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: थैंक यू मैम।
0: वेलकम। नाम बता दीजिए।
2: मेरा नाम रवि पंडित है।
0: जी
2: रवि पंडित है, गोपालगढ़ से बोल रहे हैं।
0: जी क्या करते हैं रवि जी?
2: क्लास 9th में पढ़ते हैं।
0: ओके, तो नाम बता दीजिए आप अपने मम्मी पापा का। ना
2: पापा का नाम कन्हैया लाल और मम्मी का नाम श्रीमती कुमारी है।
0: क्या करते हैं आपके पापा?
2: गवर्नमेंट टीचर है।
0: ओके, आपका क्या लक्ष्य है आगे चल के, आपको क्या बनना है?
2: अभी सोचे नहीं है।
0: ओके, तो हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं, तैयार हैं आप पहले प्रश्न के लिए?
2: यस मैम।
0: लिया जाए आपसे आपका पहला प्रश्न?
2: यस मैम।
0: तो आपसे आपका पहला प्रश्न ये है रवि जी,

0: आर्यभट्ट किस क्षेत्र के महान विद्वान थे? ऑप्शन नंबर ए है इतिहास, ऑप्शन नंबर बी है भूगोल और ऑप्शन नंबर सी है खगोल और गणित। आपका समय शुरू होता है अब।
1: खगोल और गणित में।
0: ओके, तो लॉक करें?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए रवि जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर खगोल और गणित को लॉक करते हैं। बता दें, आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तो आप तैयार हैं दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: ओके, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1930, ऑप्शन नंबर बी है 1942 और ऑप्शन नंबर सी है 1947। आपका समय शुरू होता है अब। कन्फर्म है?
1: यस मैम।
0: लॉक करें?
1: यस मैम।
0: चलिए लॉक करते हैं। तो आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर 1942 को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: ओके, आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? ऑप्शन नंबर ए है कंधार, ऑप्शन नंबर बी है फरगना और ऑप्शन नंबर सी है तक्षशिला। आपका समय शुरू होता है अब।
1: एक बार क्वेश्चन दोबारा बोलिएगा।
0: बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था?
1: ऑप्शन दीजिएगा।
0: ऑप्शन नंबर ए है कंधार, ऑप्शन नंबर बी है फरगना और ऑप्शन नंबर सी है तक्षशिला।
1: ऑप्शन नंबर ए काबुल क्या है?
0: कंधार
1: को लॉक कीजिए।
0: कंफर्म है?
1: कंफर्म करेंगे।
0: ओके, तो लॉक करें
1: जी। ऑप्शन नंबर सी क्या था?
0: तक्षशिला।
1: और बी?
0: फरगना।
1: फरगना को लॉक कीजिए। तुम
0: कंफर्म है?
1: कंफर्म बनाएंगे, लॉक के सहारे सही हो गया।
0: तो लॉक करें?
1: यस मैम।
0: ओके, तो आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी फरगना को लॉक करते हैं। और बता दें आपको कि आपके इस तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तो तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: ओके, तो आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, अलेक्जेंडर भारत किस वर्ष आया था? ऑप्शन नंबर ए है 326 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर बी है 100 ईस्वी पूर्व और ऑप्शन नंबर सी है 500 ईस्वी पूर्व। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन नंबर ए क्या है?
0: 326 ईस्वी पूर्व।
1: 326 को लॉक करिए।
0: कंफर्म है?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए है 326 ईस्वी पूर्व को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप पांचवे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: ओके, आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है, माउंट एयरवेज ज्वालामुखी किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है यूरोप, ऑप्शन नंबर बी है एशिया और ऑप्शन नंबर सी है अंटार्कटिका। आपका समय शुरू होता है अब।
1: एशिया का फिक्स है।
0: कंफर्म है?
1: नहीं, कंफर्म नहीं है।
0: ओके, तो लॉक कर दें?
1: लॉक कीजिए।
0: ओके, तो चलिए आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी एशिया को फिक्स करते हैं।
1: ये
0: जी, और बता दें कि आपके पांचों प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ही गलत है। सही उत्तर होगा अंटार्कटिका। जी, हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट संडे फिर ट्राई करिएगा।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
8: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
9: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
8: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
10: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
8: संपर्क करें 9939365923।
11: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
12: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
11: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
13: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
14: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
15: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
14: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94-921, 8029-94-921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: हेलो जी, रेडियो रिमझिम का कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
16: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बता दीजिए।
16: बबुंती कुमारी, एक डेरवा से।
0: जी, क्या करती हैं बबुंती जी?
16: जी, घर पे रहते हैं, पढ़ाई भी करते हैं।
0: किस क्लास में पढ़ती हैं?
16: अभी तो 9th में है।
0: पढ़ाई कैसी चल रही है?
16: अच्छी चल रही है
0: जी। तो आपको पढ़ के आगे क्या बनना है?
16: अभी सोचे नहीं है।
0: ओके, तो आप अपने, ठीक है, तो आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
16: मम्मी के नाम मायना देवी, पापा का नाम रेचू राम।
0: जी, क्या करते हैं आपके पापा?
16: जी, काम करते हैं।
0: आप कितनी भाई बहन हो?
16: हम 5 बहन हैं और भाई 2,
17: लोग 7 भाई बहन हो
16: जी। अब बड़ी हैं?
17: नहीं, माझिल हैं।
16: अच्छा, तो आप हेलो प्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल की हैं, तैयार हैं आप पहले प्रश्न के लिए?
17: जी।
16: लिया जाए आपसे आपका पहला प्रश्न?
17: जी।
16: ओके, आज से आपका पहला प्रश्न ये है

0: किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मंगल, ऑप्शन नंबर बी है शनि और ऑप्शन नंबर सी है बृहस्पति। आपका समय शुरू होता है अब। शनि ग्रह हो सकता है? आप बताइए कि ये कौन सा ग्रह होगा। मैं अब ये थोड़ी बोलूंगी हाँ या ना, मैं तो डायरेक्ट फिक्स करूंगी। शनि ग्रह कंफर्म है?
1: जी मैम।
0: ओके तो लॉक करूं?
1: जी मैम।
0: ओके तो चलिए बबुंती जी, आपके इस पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी शनि ग्रह को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ही गलत है। सही उत्तर होगा मंगल। हेलो फ्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट संडे फिर ट्राई करिएगा।
1: ओके मैम।
2: हेलो नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो फ्यूज कॉन्टेस्ट में।
2: रंजन बोल रहे हैं आदमपुर से।
0: जी तो क्या करते हैं रंजन जी?
2: पढ़ाई करते हैं।
0: जी किस क्लास में पढ़ते हैं?
2: बीएड।
0: बीएड चल रहा है। ओके तो आपका आगे का लक्ष्य क्या है?
2: गवर्नमेंट जॉब मैम।
0: ओके तो तैयारी करते हैं?
2: हाँ करते हैं।
0: ओके तो आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: पिता जी का नाम इंदल है और मम्मी का नाम है लाल प्रिय।
0: ओके तो लिया जाए आपसे आपका पहला प्रश्न।
2: यस।
0: ओके तो रंजन जी आपसे आपका पहला प्रश्न ये है,

0: हैं।
1: भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1930, ऑप्शन नंबर बी है 1942 और ऑप्शन नंबर सी है 1947। आपका समय शुरू होता है अब। कंफर्म है?
0: हाँ।
1: तो लॉक करें?
0: हाँ कर दीजिए।
1: तो रंजन जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1942 को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तो तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
0: यस।
1: ओके, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, सम्राट अशोक के शिलालेख किस लिपि में मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए है नागरी, ऑप्शन नंबर बी है गुरुमुखी और ऑप्शन नंबर सी है ब्राह्मणी। आपका समय स्टार्ट है अब।
0: ब्राह्मणी को गिफ्ट कीजिए।
1: कंफर्म है?
0: हाँ।
1: ओके, तो लॉक करें?
0: हाँ कर दीजिए।
1: तो चलिए रंजन जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मणी को लॉक करते हैं। अरे बता दे कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तो आपसे आपका तीसरा प्रश्न लिया जाए?
0: हाँ।
1: तो आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? ऑप्शन नंबर ए है कंधार, ऑप्शन नंबर बी है फरगना और ऑप्शन नंबर सी है तक्षशिला।
0: ऑप्शन और दीजिए।
1: ऑप्शन नंबर ए है कंधार, ऑप्शन नंबर बी है फरगना और ऑप्शन नंबर सी है तक्षशिला। आपका समय शुरू होता है।
0: फरगान को फिक्स कीजिए, ऑप्शन बी को।
1: कंफर्म है?
0: हाँ कंफर्म है।
1: ओके, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी फरगान को फिक्स करते हैं। और बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तो तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए?
0: यस।
1: ओके, तो आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, माउंट एयरबस ज्वालामुखी किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है यूरोप, ऑप्शन नंबर बी है एशिया और ऑप्शन नंबर
0: एशिया को
1: कंफर्म है?
0: हाँ कंफर्म है।
1: ओके, तो चलिए आपके इस चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी एशिया को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा अंटार्कटिका।
0: माउंट एवरेस्ट
1: एयरबेस ज्वालामुखी पूछा, माउंट एयरबेस ज्वालामुखी किस महाद्वीप में स्थित है? माउंट
0: एयरबेस,
1: हाँ अंटार्कटिका में है। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी नमस्कार मैम।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी नाम बता दीजिए आप अपना।
2: जी शिवम, शिवम कुमार।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं शिवम जी?
2: पटना से।
1: जी क्या करते हैं आप?
2: पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं।
1: अच्छा, तो आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: जी माता जी का नाम है मनोरमा देवी और पापा का नाम है मनोज सिंह।
1: ओके, क्या करते हैं आपके पापा?
2: प्राइवेट जॉब करते हैं।
1: तो आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं, तैयार हैं आप पहले प्रश्न के लिए?
2: जी जी।
1: ओके, आपका पहला प्रश्न ये है,

0: माउंट एयरबस ज्वालामुखी किस महाद्वीप में स्थित है? माउंट एयरबस ज्वालामुखी
1: में है।
0: हाँ,
1: एशिया।
0: लॉक करें या ऑप्शन सुनिएगा?
1: हाँ हाँ हाँ,
0: लॉक करें।
1: हाँ।
0: तो चलिए शिवम जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा अंटार्कटिका।
1: माउंट एवरेस्ट था,
0: माउंट एयरबस ज्वालामुखी पूछे हैं।
1: ओ, ज्वालामुखी। तो आप कंफ्यूज हमसे, कंफ्यूज हो गए।
0: कंफ्यूज तो इसीलिए तो हम बोले ना दोबारा कि दोबारा सुनिए, तो आप दोबारा सुनने के लिए तैयार नहीं थे, तो क्या करूं?
1: ओ, मेरी गलती हुआ
0: जी।
1: ठीक है, धन्यवाद ना
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रिमझिम 90.4 AMZ पर।
5: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
6: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
5: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
6: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
5: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
6: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94921 8029-94921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। जी, नाम बता दीजिए आप अपना।
9: आयुषी
0: जी, कहाँ से बात कर रही हैं आयुषी जी?
9: बिहार गोपालगंज से।
0: क्या करते हैं आयुषी?
9: कुछ नहीं, पढ़ते हैं।
4: स्कूल में पढ़ती हूँ।
0: कौन से स्कूल में पढ़ती हैं?
4: NMD पब्लिक स्कूल अलवर।
0: और किस क्लास में पढ़ती हैं?
4: क्लास नाइन्थ
0: में। तो आप सोचिए आपको पढ़ के आगे चल के क्या बनना है, क्या करना है?
4: मुझे आगे चल के BPSC क्लियर करना है और कोई गवर्नमेंट जॉब करनी है।
0: ठीक है, तो आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
4: पापा का नाम अभिषेक कुमार और मम्मी का नाम अन्नू देवी।
0: क्या करते हैं आपके पापा?
4: बिजनेसमैन है और क्लोथ का दुकान
0: है। आप इससे पहले भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में जुड़ी थी?
4: जी।
0: विनर बनी है?
4: जी। जी।
0: ओके, तो आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की हैं, तो तैयार हैं आप पहले प्रश्न के लिए?
4: जी जी।
0: तो आयुषी जी, आपसे आपका पहला प्रश्न है,

0: भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1930, ऑप्शन नंबर बी है 1942 और ऑप्शन नंबर सी है 1947। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन नंबर बी 1942।
0: कन्फर्म है?
1: जी।
0: लॉक करे?
1: जी। क्वेश्चन में शुरू हुआ था क्वेश्चन में, मतलब ये था कब शुरू हुआ है
0: आंदोलन, किस वर्ष शुरू हुआ था?
1: जी 1942।
0: ओके, तो आयुषी जी आपके इस पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1942 को लॉक करते हैं। बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तो तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: ओके, आज से आपका दूसरा प्रश्न ये है, सम्राट अशोक के शिलालेख किस लिपि में मिले हैं? सम्राट अशोक के शिलालेख किस लिपि में मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए है नागरी, ऑप्शन नंबर बी है गुरुमुखी और ऑप्शन नंबर सी है ब्राह्मणी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: फिर से बता सकती हैं?
0: क्वेश्चन या ऑप्शन?
1: ऑप्शन।
0: ऑप्शन नंबर ए है नागरी, ऑप्शन नंबर बी है गुरुमुखी और ऑप्शन नंबर सी है ब्राह्मणी। हेलो।
1: हाँ, ऑप्शन नंबर ब्राह्मणी जिसमें है वो लॉक कर दीजिए।
0: कहीं सर्च कर रही है या हेल्प ले रही है किसी की चीज का?
1: नहीं, वो थोड़ा सोचने में टाइम लग रहा था।
0: ओके, तो हेल्प नहीं लेना है?
1: जी।
0: तो लॉक करें?
1: जी।
0: तो आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मणी को लॉक करते हैं।
1: जी।
0: और बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी बिल्कुल सही है। तो तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: ओके, तो आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार कौन थे? भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद।
0: कन्फर्म?
1: ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।
0: कन्फर्म है?
1: जी।
0: लॉक करूं?
1: जी।
0: ओके, तो चलिए आयुषी जी आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर भी बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, आर्यभट्ट किस क्षेत्र के महान विद्वान थे? आर्यभट्ट किस क्षेत्र के महान विद्वान थे? ऑप्शन नंबर ए है इतिहास, ऑप्शन नंबर बी है भूगोल और ऑप्शन नंबर सी है खगोल और गणित। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन नंबर सी खगोल और गणित पे लॉक किया जाए।
0: कन्फर्म है?
1: जी।
0: ओके, तो आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी खगोल और गणित को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर भी बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप पांचवे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है, बिहार में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? बिहार में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है गंगटीक, ऑप्शन नंबर बी है पारसनाथ और ऑप्शन नंबर सी है बिंदुदार। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन नंबर फिर एक बार फिर से बोल सकती हैं?
0: ऑप्शन नंबर ए है गंगटीक और ऑप्शन नंबर बी है पारसनाथ, ऑप्शन नंबर सी है बिंदुधार।
1: ऑप्शन नंबर बी पारसनाथ।
0: कंफर्म है?
1: लगता तो है।
0: ओके, तो लॉक करें?
1: जी।
0: ओके, तो चलिए ऋषि जी, आपके इस पांचों प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी पारसनाथ को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके पांचों प्रश्न का उत्तर भी बिल्कुल सही है। तो तैयार है आप छठे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: तो आपसे आपका छठा प्रश्न ये है, बिहार में कौन सा जिला नेपाल से जुड़ा है? बिहार में कौन सा जिला नेपाल से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए है सीतामढ़ी, ऑप्शन नंबर बी है अररिया, और ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन नंबर ए सीतामढ़ी है।
0: हेलो,
1: ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाए।
0: सीतामढ़ी को?
1: जी।
0: कंफर्म है? हेलो
1: जी, जी जी।
0: आप कहीं सर्च कर रही हैं?
1: नहीं, वो थोड़ा डाउट है कि दोनों होगा या बस एक तो पता है दूसरा।
0: मुझे डाउट हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो क्या लॉक क्या करें?
1: ऑप्शन ए लॉक कर दीजिए
0: सीतामढ़ी को।
1: जी।
0: कंफर्म है?
1: जी जी
0: जी। तो चलिए आयुषी जी, आपके छठे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए सीतामढ़ी को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके छठे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों से, मतलब सीतामढ़ी और अररिया दोनों ही नेपाल से जुड़ा हुआ है। ठीक है
1: जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपने लोग क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की। नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करिएगा।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोसमोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
6: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
7: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403, 6200042403।
8: नमः शिवाय।
9: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
8: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
9: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
8: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
9: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
8: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
9: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
8: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
9: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
8: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
9: बोलबम, हर हर महादेव।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिंजन के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
10: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। हेलो,
11: हाँ बोलिए,
10: नाम बता दीजिए।
11: मेरा नाम है आदित्य पंडित, मेरे पापा का नाम कन्हैया लाल, मम्मी का नाम श्रीमती कुमारी। इससे पहले मेरा भाई किया था फोन, रवि नाम है।
10: अच्छा अच्छा, आप अपना नाम एक बार और बताइए।
11: आदित्य पंडित।
10: आदित्य, क्या करते हैं आदित्य जी?
11: अभी 8 क्लास में पढ़ते हैं। 8 क्लास में पढ़ते हैं।
10: 8 में पढ़ते हैं जी। तो क्या करना है आगे पढ़ाई करके?
11: अभी तो कोई लास्ट फिक्स नहीं है।
10: अच्छा, तो बस पढ़ाई चल रही है ऐसे ही?
11: हाँ।
10: ओके, तो आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं, तो तैयार है आप पहले प्रश्न के लिए?
11: यस मैम।
10: ओके, आप इससे पहले भी कॉल किए हैं हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में?
11: मेरा पहली बार है।
10: ये पहली बार है?
11: हाँ, मेरा पहली बार है।
10: ओके, तो आप इसका प्रसारण सुनते हैं रेडियो पे?
11: हाँ सुनते हैं।
10: कैसा लगता है?
11: मजा आता है सुनकर।
10: अच्छा, जब गलत बोलते हैं तो मजा आता है?
11: हाँ, गलत है उस क्वेश्चन पर वो मजा आता है कुछ सुनने में।
10: तो लिया जाए आपसे आपका पहला प्रश्न। तो आपसे आपका पहला प्रश्न ये है,

0: आर्यभट्ट किस क्षेत्र के महान विद्वान थे? ऑप्शन नंबर ए है इतिहास, ऑप्शन नंबर बी है भूगोल और ऑप्शन नंबर सी है खगोल और गणित। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन नंबर सी।
1: हाँ,
0: कन्फर्म है?
1: यस मैम।
0: ओके, तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ही सही है। तो तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: ओके, तो आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? ऑप्शन नंबर कन्फर्म है? ओके, चलिए, तो आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी बिल्कुल सही है। तो तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए? ओके, तो आपका तीसरा प्रश्न आपसे ये है, अलेक्जेंडर भारत किस वर्ष आया था? ऑप्शन नंबर ए है 1326 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर बी है 100 ईस्वी पूर्व और ऑप्शन नंबर सी है 500 ईस्वी पूर्व। आपका समय शुरू होता है अब।
1: तीन सौ छब्बीस।
0: कन्फर्म है?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए आदित्य जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए 326 ईस्वी पूर्व को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तो तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: हाँ मैम, तैयार हैं।
0: ओके, तो आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, माउंट एयरवेस ज्वालामुखी किस महाद्वीप में स्थित है? माउंट
1: अंटार्कटिका में है।
0: कन्फर्म है?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर भी बिल्कुल सही है। तो आप तैयार हैं पांचवे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: ओके, आपका पांचवा प्रश्न आपसे ये है, पहाड़ों पर पानी कितने तापमान पर उबलने लगते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी है 100 डिग्री सेल्सियस से कम और ऑप्शन नंबर सी है 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक।
1: यस मैम।
0: कन्फर्म है?
1: यस मैम।
0: तो लॉक करें?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए आदित्य जी, आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 100 डिग्री सेल्सियस से कम। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट संडे फिर ट्राई करिएगा।
1: ठीक है मैम।
0: ओके।
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बता दीजिए आप अपना।
1: सुनील कुमार। सुनील कुमार।
0: सुनील कुमार।
1: सिबुल। सिबुल।
0: सिबुल।
1: हाँ,
0: कहाँ से बात कर रहे हैं सिबुल जी?
1: मीरगंज हरखौली से।
0: जी, तो क्या करते हैं आप सिबुल जी?
1: अभी तो घर पर है।
0: पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी?
1: इंटर किए हैं।
0: पढ़ाई जारी है कि छूट गया है?
1: अभी तो छूटा है, आगे देखिए क्या करना है।
0: अच्छा, अभी सोचे नहीं है कुछ?
1: नहीं, मैंने इंटर तो निकल गए हैं, अब आगे देखिए क्या होगा।
0: ओके, आपका लक्ष्य क्या है आगे का, क्या करना है?
1: अभी तो कुछ सोचे नहीं है, सब भगवान के हाथ में है, देखिए क्या हो रहा है।
0: अच्छा अच्छा, तो आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं, तो तैयार हैं आप इस खेल को खेलने के लिए?
1: जी।
0: लिया जाए आपसे आपका पहला प्रश्न?
1: जी।
0: आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
1: मम्मी का नाम है मालती देवी और पिताजी का नाम राम किशोर भगत।
0: जी, क्या करते हैं आपके पापा?
1: खेती बाड़ी।
0: ओके, तो सिविल जी आपसे आपका पहला प्रश्न ये है

0: भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1930, ऑप्शन नंबर बी है 1942 और ऑप्शन नंबर सी है 1947। आपका समय शुरू होता है अब।
1: उन्नीस सौ सैतालीस होगा। हम
0: कंफर्म है?
1: कंफर्म नहीं है लेकिन फिर भी
0: उन्नीस सौ तीस और 1942 नहीं हो सकता
1: जी।
0: 1930 या 1942 नहीं हो सकता
1: ना। 47 को लॉक कीजिए, देखा जाए।
0: ओके, तो चलिए सिविल जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1947 को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा 1942। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप फिर से

0: पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
8: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
9: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD शादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
10: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
11: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710-3992 या 97-65-65-750।
12: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिंजन के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 80029-94-21 80029-94-21 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
13: हेलो
14: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगजिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
13: जी,
14: नाम बता दीजिए।
13: आर्यन कुमार।
14: कहाँ से बात कर रहे हैं आर्यन जी?
13: गोपालगंज, कुरान चौक।
14: जी, आप इससे पहले भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं?
13: नहीं,
14: आज फर्स्ट टाइम है।
13: हाँ,
14: कहाँ से पता चला आपको हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के बारे में?
13: मेरा दोस्त बताया है।
14: अच्छा, आप सुनते हैं?
13: नहीं
14: नहीं सुनते हैं।
13: नहीं।
14: ओके, तो क्या करते हैं आर्यन जी आप?
13: स्टूडेंट हैं।
14: किस क्लास में पढ़ते हैं?
13: 9।
14: आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
13: अनु देवी।
14: और पापा का नाम?
13: अभिषेक कुमार।
14: जी, क्या करते हैं आपके पापा?
13: बिजनेसमैन है, कपड़ा का दुकान है।
14: अच्छा, तो लिया जाए आपसे आपका पहला प्रश्न।
13: हाँ।
14: ओके,

0: आर्यभट्ट किस क्षेत्र के महान विद्वान थे? ऑप्शन नंबर ए है इतिहास, ऑप्शन नंबर बी है भूगोल और ऑप्शन नंबर सी है खगोल और गणित। आपका
1: खगोल
0: कंफर्म है?
1: जी।
0: लॉक करें?
1: जी।
0: ओके, क्यों इतिहास और भूगोल नहीं हो सकता?
1: नहीं।
0: ओके, आपके इस पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी खगोल और गणित को लॉक करते हैं। और बता दे कि आपके इस पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: ओके, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, सम्राट अशोक के शिलालेख किस लिपि में मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए है नागरी, ऑप्शन नंबर बी है गुरमुखी और ऑप्शन नंबर सी है ब्राह्मणी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ब्राह्मणी। ब्राह्मणी।
0: कंफर्म है?
1: जी।
0: लॉक करें?
1: हाँ।
0: ओके, तो चलिए आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मणी को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी बिल्कुल सही है। तो आप तैयार हैं तीसरे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: ओके, तो आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, भारत की प्राचीन भाषा क्या है? ऑप्शन नंबर ए है हिंदी, ऑप्शन नंबर बी है पाली और ऑप्शन नंबर सी है संस्कृत। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन नंबर सी संस्कृत।
0: कंफर्म है?
1: जी।
0: ओके,
1: लॉक कीजिए।
0: ओके, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी संस्कृत को फिक्स करती हूँ। और बता दूं कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर भी बिल्कुल सही है। तो तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? ऑप्शन नंबर ए है कंधार, ऑप्शन नंबर बी है फरगना और ऑप्शन नंबर सी है तक्षशिला। आपका समय शुरू होता है अब।
1: फरगना।
0: कंफर्म है?
1: हाँ।
0: लॉक करें?
1: जी।
0: ओके, तो चलिए आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी फरगना को लॉक करते हैं। और बता दे कि आपके इस चौथे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तो तैयार हैं आप पांचवे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: ओके, तो आर्यन जी आपके आपका पांचवा प्रश्न ये है, माउंट एयरबेस ज्वालामुखी किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है यूरोप, ऑप्शन नंबर बी है एशिया और ऑप्शन नंबर सी है अंटार्कटिका। आपका समय शुरू होता है अब।
1: एशिया।
0: कंफर्म है?
1: जी।
0: जी, तो फिक्स करें?
1: जी।
0: ओके, तो चलिए आर्यन जी आपके इस पांचवे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी एशिया को लॉक करते हैं। और बता दे आपको कि आपके इस पांचवे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा अंटार्कटिका। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट संडे फिर ट्राई करिएगा।
1: ठीक है।
2: हेलो,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो टिमटिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: जी, मेरा नाम बिंदल कुमार।
0: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं बिंदल जी?
2: हेमवरदहा से।
0: जी, तो क्या करते हैं बिंदल जी आप?
2: पढ़ाई करते हैं।
0: किस क्लास में?
2: इस साल 12th में आए।
0: तो आपका आगे का लक्ष्य क्या है?
2: अभी सोचते नहीं है।
0: ओके, तो आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं, तैयार हैं आप पहले प्रश्न के लिए?
2: यस मैम।
0: तो लिया जाए आपसे आपका पहला प्रश्न।
2: यस मैम।
0: आपसे आपका पहला प्रश्न ये है

0: भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? आपका ऑप्शन नंबर ए है 1930, ऑप्शन नंबर बी है 1942 और ऑप्शन नंबर सी है 1947। आपका समय शुरू होता है अब।
1: जी 1942 होगा।
0: कंफर्म है?
1: नहीं, लेकिन फिक्स कीजिए।
0: ठीक है, 47 और 1930 नहीं हो सकता?
1: नहीं, क्योंकि 1947 में तो आजाद हुआ था ना।
0: जी,
1: ये तो कंफर्म है कि नहीं होगा, और इन दोनों में जो हो।
0: ओके, तो लॉक करें 1942 को।
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए विमलेश जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर 1942 को लॉक करते हैं। और बता दें, आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तो तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: ओके, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, बिहार का कौन सा जिला पूरी तरह से गंगा के उत्तर में स्थित है? बिहार का कौन सा जिला पूरी तरह से गंगा नदी के उत्तर में स्थित है? आपका ऑप्शन नंबर ए है भागलपुर, ऑप्शन नंबर बी है सिवान और ऑप्शन नंबर सी है वैशाली। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम भागलपुर ऑप्शन नंबर सी है।
0: ऑप्शन नंबर ए है भागलपुर, ऑप्शन नंबर बी है सिवान और ऑप्शन नंबर सी है वैशाली।
1: फिक्स कीजिए। भागलपुर को फिक्स कीजिए।
0: कंफर्म है?
1: नहीं।
0: okay, तो लॉक करें?
1: यस मैम।
0: तो चलिए विमलेश जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए भागलपुर को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा वैशाली जिला।
1: जी
0: जी। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट संडे फिर ट्राई करिएगा।
1: जी थैंक यू मैम।
2: तो दोस्तों, ये रहा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का आज का एपिसोड। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर और बने हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के विनर। और हमें दीजिए अब जाने की इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। सुनते रहिए रेडियो रिंजुम 90.4 FM। नमस्कार।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 9056 59536 या 9056 57902।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिंजिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
9: हेलो
0: जी, रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
9: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, नाम बता दीजिए आप अपना।
9: रुपेश कुमार
0: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं रुपेश जी?
9: जादवपुर से।
0: हाँ, क्या करते हैं?
9: पढ़ाई करते हैं।
0: किस क्लास में पढ़ते हैं?
9: 11th में।
0: आपने सोचा है आपको पढ़ाई करके आगे क्या करना है?
9: अभी सोचे तो नहीं है, लेकिन आगे पढ़ाई करना है।
0: ओके, आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
9: मेरे माता जी का नाम श्रीमती सुमिता देवी और मेरे पिता जी का नाम श्री संजय प्रसाद चुरखिया।
0: क्या करते हैं आपके मम्मी पापा?
9: पापा जी तो किसान है।
0: तो आपने हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में इससे पहले भी कॉल किया है?
9: हाँ।
0: विनर बने हैं?
9: हाँ, 2 बार विनर बन चुका है।
0: ओके, तो आप आज तैयार हैं पहले प्रश्न के लिए?
9: हाँ।
0: ओके, तो चलिए रुपेश जी, आपसे आपका पहला प्रश्न ये है

0: सन 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेजों की आर्थिक नीति, ऑप्शन नंबर बी है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, और ऑप्शन नंबर सी है चर्बी वाले कर्तूसों। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन नंबर ए को फिक्स कीजिए।
0: अंग्रेजों की आर्थिक नीति,
1: हाँ उसी को फिक्स कीजिए।
0: कंफर्म है?
1: कंफर्म तो नहीं है लेकिन उसी को फिक्स कीजिए।
0: ओके, तो चलिए रुपेश जी आपके पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए को फिक्स करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा चर्बी वाले कर्तूसों। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट संडे फिर ट्राई करिएगा।
2: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, रेडियो रिंगिंग का कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नाम बता दीजिए आप अपना।
2: शिवम कुमार सिंह।
0: शुभम?
2: शिवम, शिवम।
0: अच्छा शिवम कुमार।
2: जी जी।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं शिवम जी?
2: कहाँ से बात, अभी कहाँ से बात कर रहे हैं? पटना।
0: पटना से बात कर रहे हैं?
2: हाँ
0: जी। आपका घर कहाँ पड़ता है?
2: जी मीरगंज।
0: मीरगंज,
2: हाँ जितना पड़ता है।
0: जी जी। तो क्या करते हैं शिवम जी? आपकी आवाज़ थोड़ा कट कट के आ रही है। आपने
2: बोल रहा हूँ बीपीएससी का तैयारी कर रहा
0: हूँ। तो आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: मम्मी का नाम है मनोरमा देवी, पापा का नाम है मनोज सिंह।
0: मम्मी का नाम मनोरमा देवी।
2: जी जी। पापा का नाम मनोज।
0: मनोज सिंह।
2: जी मनोज सिंह।
0: जी क्या करते हैं आपके पापा?
2: प्राइवेट जॉब करते
0: हैं। ओके, तो क्या आप तैयार हैं पहले प्रश्न के लिए? जी। तो शिवम जी आपसे हमारा पहला प्रश्न ये है

0: सन 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? सन 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? आपका ऑप्शन नंबर
1: चर्बी वाला कारतूस।
0: श्योर है?
1: हाँ बिल्कुल।
0: ओके, तो चलिए शिवम जी, आपके इस पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तो आप हमारे दूसरे प्रश्न के लिए तैयार हैं?
1: जी बिल्कुल।
0: जी शिवम जी, आपका दूसरा प्रश्न आपसे ये है, भारत में वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? भारत में वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन नंबर ए है भोपाल, ऑप्शन नंबर बी है लखनऊ और ऑप्शन नंबर सी है देहरादून। आपका समय शुरू होता है अब।
1: भोपाल से लगाइए।
0: भोपाल
1: जी।
0: कंफर्म है?
1: जी नहीं।
0: तो लॉक करें?
1: हाँ।
0: तो चलिए शिवम जी, आपके इस दूसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए भोपाल को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा देहरादून।
1: देहरादून
0: जी।
1: क्वेश्चन क्या था मैम?
0: भारत में वन अनुसंधान कहाँ स्थित है?
1: देहरादून। देहरादून
0: जी। जी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट से जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से ट्राई करिएगा।
2: तो दोस्तों, ये रहा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का आज का एपिसोड। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर और बने हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के विनर, और हमें दीजिए अब जाने की इजाजत और रखिए अपना ख्याल। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
2: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरजे सोनी।
7: इस कार्यक्रम को हम स्मार्ट संस्था नई दिल्ली और रेडियो रिमझिम के सहयोग से आप सभी तक पहुंचा रहे हैं।
2: आज की कड़ी बहुत खास है, क्योंकि आज 28 मई है, एक ऐसा दिन जब हम दो बहुत ही जरूरी विषयों पर बात करते हैं। पहला है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, यानी मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, और दूसरा है विश्व पोषण दिवस, यानी हमारे खाने पीने और सेहत से जुड़ा दिन। पहली नज़र में ये दोनों विषय अलग लग सकते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, खासकर महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए।
7: बहुत बहुत धन्यवाद आपको और सभी श्रोताओं को, आपने बिल्कुल सही कहा। मासिक धर्म और पोषण, ये दोनों ही विषय ऐसे हैं जिन पर खुलकर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ जहां मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, वहीं दूसरी तरफ सही पोषण उस प्रक्रिया की स्वस्थ और सुरक्षित बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे समाज में आज भी इन दोनों विषयों को लेकर बहुत सी गलतफहमियां और झिझक मौजूद हैं।
2: सच कहूं से अतिया भैया, आज भी कई घरों में पीरियड शब्द बोलना भी आसान नहीं होता। लड़कियां चुपचाप सब सहती हैं और कई बार तो उन्हें सही जानकारी भी नहीं मिलती। आखिर ऐसा क्यों है?
7: देखिए, ये एक सामाजिक सोच का मसला है। सालों से मासिक धर्म को एक छुपाने वाली चीज बना दिया गया है, जैसे ये कोई गंदगी हो या शर्म की बात हो, जबकि सच्चाई ये है कि यह हर लड़की और महिला के जीवन का एक सामान्य और जरूरी हिस्सा है। अगर हम इसे समझेंगे नहीं, इसके बारे में खुलकर बात नहीं करेंगे, तो हमारे समाज की लड़कियां सही जानकारी से वंचित रह जाएंगी और उनका स्वास्थ्य प्रभावित होगा।
2: मतलब ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे परिवार और समाज की जिम्मेदारी है।
7: बिल्कुल, माँ, पिता, भाई, पति, शिक्षक, सभी की भूमिका होती है। जब परिवार समर्थन देता है तो लड़की आत्मविश्वास के साथ अपनी सेहत का ध्यान रख पाती है, उसे साफ सफाई, सही सामग्री और सुरक्षित जगह मिलती है।
2: तो सेहतिया भैया, अगर हम सीधे तौर पर समझे तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी मानसिक धर्म स्वच्छता का मतलब क्या है?
7: मासिक धर्म स्वच्छता का मतलब है साफ और सुरक्षित तरीके से पीरियड को संभालना, जैसे कि साफ सैनिटरी पैड, कपड़ा या अन्य सुरक्षित साधन का इस्तेमाल करना, उसे समय समय पर बदलना, हाथ धोना, शरीर की सफाई रखना और इस्तेमाल किए गए सामग्री का सुरक्षित निपटान करना। इसके साथ ही जरूरी है कि लड़की या महिला के पास एक निजी और सुरक्षित जगह हो जहां वो आराम से खुद का ख्याल रख सके।
2: लेकिन सेहतिया भैया, गांव में या कम साधनों वाले इलाकों में ये सब सुविधाएं हर किसी को मिल पाती है क्या?
7: यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। कई जगहों पर आज भी लड़कियां पुराने गंदे कपड़े इस्तेमाल करती हैं या फिर समय पर बदल नहीं पाती, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती है या संसाधन नहीं मिल पाते। इससे संक्रमण का खतरा और भी बढ़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम इस विषय पर जागरूकता बढ़ाएं और सरकार व समुदाय से मिलकर सुविधा सुनिश्चित करें।
2: और यहीं पर विश्व पोषण दिवस की बात भी जुड़ जाती है, क्यों अगर शरीर को सही पोषण नहीं मिलेगा तो इसका असर मासिक धर्म पर भी पड़ेगा, है ना?
7: बिल्कुल सही समझा आपने। अगर लड़की या महिला को सही पोषण नहीं मिलेगा, जैसे कि आयरन, प्रोटीन, विटामिन, तो उसे कमजोरी, चक्कर, ज्यादा दर्द या अनियमित पीरियड्स जैसी समस्या हो सकती है। इसीलिए पोषण और मासिक धर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं।
2: तो एक संतुलित आहार कैसा होना चाहिए? हमारे श्रोता क्या क्या चीजें अपने रोज के खाने में शामिल कर सकते हैं?
7: देखिए, संतुलित आहार का मतलब है थाली में विविधता। आधी थाली में सब्जियां हो, साथ में दाल या अन्य प्रोटीन हो, अनाज जैसे कि रोटी या चावल हो, और अगर संभव हो तो दूध या दही, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, फल, मेवे, ये सब बहुत जरूरी है। और सबसे अहम बात, जंक फूड, ज्यादा तला भुना और ज्यादा नमक चीनी से बचना चाहिए और पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए।
2: मतलब अच्छा खाना सिर्फ महंगा खाना नहीं होता, बल्कि सही और संतुलित खाना होता है।
7: बिल्कुल, हमारे गांव में जो स्थानीय और मौसमी खाना मिलता है ना, वही सबसे अच्छा है। बस हमें उसे सही तरीके से अपनाना है।
2: सेहतिया भैया, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन कई बार लोग तब तक नहीं समझते जब तक वे किसी असली कहानी से न जुड़े। क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो हमारे श्रोताओं को ये समझा सके कि सही जानकारी और पोषण कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं?
7: हाँ हाँ, बिल्कुल है। देखिए सोनी जी, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हमारे ही गांव की एक लड़की रीना की ये कहानी है। रीना करीब 14 साल की थी। पढ़ने में तेज लेकिन बहुत चुपचाप रहने वाली लड़की थी। जब उसे पहली बार पीरियड्स हुआ तो घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। घर में इस बारे में कभी भी खुलकर बात नहीं हुई थी। उसकी माँ ने उसे बस एक पुराना कपड़ा दे दिया था और कहा था कि किसी को बताना मत, बस चुपचाप संभाल लेना। रीना को ना तो ये पता था कि कपड़ा साफ होना चाहिए, ना ये कि उसे कितनी बार बदलना चाहिए। वो उसी कपड़े को कई कई घंटों तक इस्तेमाल करती रही। धीरे धीरे उसे खुजली होने लगा, जलन होने लगा, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसे लगता था कि शायद यह नॉर्मल है। लेकिन दोस्तों, रीना के साथ एक और समस्या थी। रीना का खान पान, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और खाने में अक्सर सिर्फ रोटी और नमक या कभी कभी दाल मिलती थी। हरी सब्जियां, फल, ये सब बहुत कम मिलते थे। धीरे धीरे रीना को कमजोरी महसूस होने लगी। पीरियड्स के समय उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, चक्कर आते थे उसे और कई बार वह स्कूल भी नहीं जा पाती थी। एक दिन की बात है, स्कूल में स्वास्थ्य शिविर लगा था। वहाँ आशा दीदी और एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी आए थे। उन्होंने लड़कियों से खुले में बात की, पीरियड्स क्या होते हैं, कैसे संभालना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए। रीना पहली बार किसी को इतनी खुलकर बात करते हुए सुनी थी। दोस्तों, शिविर के बाद उसने हिम्मत जुटाकर अपनी परेशानियां बताई। फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने रीना को समझाया कि साफ सफाई कितनी जरूरी है। इसके अलावा रीना को सैनिटरी पैड दिए और ये भी बताया कि उसे आयरन की कमी है। उसे आयरन की गोलियां भी दी और खाने में हरी सब्जियां, दाल, गुड़ और फल शामिल करने की सलाह दी। साथियों, रीना घर आ गई। धीरे धीरे रीना ने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू कर दिए। साफ सफाई का ध्यान रखना शुरू कर दिया, समय पर पैर बदलना शुरू कर दिया और अपने खाने पीने में सुधार कर लिया। कुछ ही महीनों में उसका स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। अब उसे पहले जैसी कमजोरी नहीं होती थी और वह नियमित रूप से स्कूल जाने लगी। साथियों, आज रीना अपने गांव की दूसरी लड़कियों को भी जागरूक करती है। वह उन्हें बताती है कि पीरियड्स कोई शर्म की बात नहीं है और सही जानकारी और पोषण से हम इसे आसानी से संभाल सकते हैं।
2: सच में सेहतिया भैया, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सीख है। अगर सही समय पर जानकारी और मदद मिल जाए तो जिंदगी बदल सकती है।
7: बिल्कुल, और यही स्मार्ट संस्था नई दिल्ली और रेडियो रिमझिम का प्रयास है और हमारे इस कार्यक्रम का यही मकसद है कि हर रीना तक सही जानकारी पहुंचे, ताकि कोई भी लड़की अज्ञानता या झिझक के कारण अपनी सेहत से समझौता ना करे।
2: सेहतिया भैया, रीना की कहानी ने सच में दिल को छू लिया, लेकिन एक बात जो बार बार सामने आ रही है वो है पोषण। आपने बताया कि सही खाना मिलने के बाद ही रीना की सेहत सुधरी, तो क्या ये समस्या सिर्फ लड़कियों और महिलाओं तक सीमित है या पुरुषों में भी पोषण की कमी एक बड़ी चुनौती है?
7: ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने सोनी जी। अक्सर हम पोषण की बात सिर्फ महिलाओं और बच्चों तक सीमित कर देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पुरुषों को भी पोषण की कभी कभी एक गंभीर समस्या हो जाती है। हमारे देश में बहुत से पुरुष दिन भर मेहनत करते हैं, खेतों में या निर्माण कार्य में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, लेकिन उनका खान पान संतुलित नहीं होता। कई बार वे सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं, शरीर को सही पोषण देने के लिए नहीं, और इसके वजह से इसका सीधा असर उनकी ताकत, काम करने की क्षमता और लंबी अवधि में उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है।
2: मतलब कमजोरी और थकान जो हम आम समझ लेते हैं, उसके पीछे भी पोषण की कमी हो सकती है।
7: बिल्कुल, और यही बात हमें विश्व पोषण दिवस के संदेशों से जोड़ती है। इस दिन का मकसद सिर्फ अच्छा खाना बताना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि सही पोषण हर उम्र, हर लिंग और हर वर्ग के लिए बहुत जरूरी है। और आज जब हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी मना रहे हैं, जिसका इस साल का संदेश है टुगेदर फॉर ए पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड, इसका मतलब यही है कि हम मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां लड़कियां और महिलाएं बिना डर और झिझक के अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके, और इसमें पोषण एक मजबूत कड़ी है जो दोनों विषयों को जोड़ती है।
2: सेहतिया भैया, आपने एनीमिया यानी खून की कमी का जिक्र किया था, ये समस्या हमारे देश में कितनी बड़ी है और क्या ये सिर्फ महिलाओं में ज्यादा होती है?
7: देखिए, एनीमिया भारत में एक बहुत ही बड़ी समस्या है, खासकर किशोर लड़कियों और महिलाओं में इसकी दर काफी ज्यादा है, लेकिन पुरुष भी इससे अछूते नहीं है। खून की कमी का मतलब है शरीर में हीमोग्लोबिन का कम होना, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इसके कारण व्यक्ति को जल्दी थकान, चक्कर, सांस फूलना और कमजोरी महसूस होता है। महिलाओं में ये समस्या ज्यादा है, इसलिए है क्योंकि उन्हें हर महीने मासिक धर्म के दौरान खून की कमी होती है, और अगर उनका खान पान सही ना हो तो यह कमी और बढ़ जाती है।
2: तो इसका सीधा मतलब है कि अगर हम पोषण पर ध्यान नहीं देंगे तो इसका असर सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि पूरे शरीर पर पड़ेगा।
7: बिल्कुल सही समझा आपने। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने रोज के खाने में कुछ खास चीजों को शामिल करें, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे कि पालक, मेथी, दालें और चने, गुड़, मूंगफली, तिल, अगर संभव हो तो दूध, दही, अंडा या अन्य प्रोटीन के स्रोत जैसे कि फल, केला, अमरूद, संतरा, ये बहुत फायदेमंद होते हैं। और सबसे जरूरी बात है कि खाने में विविधता होनी चाहिए। एक ही चीज रोज खाने से शरीर को सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते।
2: मतलब थाली जितनी रंग बिरंगी होगी सेहत उतनी मजबूत होगी।
7: बिल्कुल सोनी जी, यही सबसे आसान तरीका है समझने का। और एक बात और है, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं वो साफ सुथरा और सही तरीके से पकाया गया हो, क्योंकि अगर खाना साफ नहीं है तो वह बीमारी का कारण भी बन सकता है।
2: साथियों, आज की बातचीत से तो एक बात साफ हो गई है कि पोषण सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि ये हमारी ताकत, हमारी ऊर्जा और हमारे पूरे जीवन का आधार है। और जब हम मासिक धर्म और पोषण को साथ में समझते हैं, तो हमें एहसास होता है कि सही जानकारी और सही आदतें मिलकर ही एक स्वस्थ समाज बनाती है। तो साथियों, आज की इस खास कड़ी में हमने जाना कि मासिक धर्म और पोषण दोनों हमारे जीवन के अहम हिस्से हैं। अगर हम इन्हें समझेंगे, अपनाएंगे और दूसरों तक पहुंचाएंगे, तो हम एक स्वस्थ और सशक्त समाज बना सकते हैं।
7: श्रोताओं, याद रखिए, साफ सफाई, सही जानकारी और अच्छा पोषण, यही है स्वस्थ जीवन का आधार।
2: इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे, साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके, नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। मैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरजे सोनी आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाते जाते बस इतना कहना चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। फिर मिलेंगे इसी शो में, सेहत सही लाभ कई में, एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी। क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी। लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
1: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
4: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
3: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
4: ओनली ऑन रेडियो रिमझिम 90.4 AMZ पर।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9956-57-644।
5: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
6: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
7: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
8: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
9: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
6: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करे 87-894-18744।
10: तुलनीय पराक्रम की, ऐसे योद्धाओं की जिन्होंने अपने प्यारे देश के लिए बिना झिझके अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये कहानी है असीम वीरता की, गाथा है अमर बलिदान की, ये कथा है एक ऐसे देश की जो संकट में एकजुट हुआ। कहानी करगिल की।

ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का सीना चीरती ये सड़क पहुंचती है सरहद पर बसे एक शहर में। सुरु नदी के किनारे बसा ये शहर करीब 8,000 फीट की ऊंचाई पर है। इसके चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ी चोटियां हैं। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 1,000 किलोमीटर से भी दूर मौजूद इस छोटे से शहर का नाम है करगिल। जी हाँ, वही करगिल जिसका नाम सुनते ही जहन में खास तस्वीर उभर आती है। तस्वीर एक ऐसे युद्ध की जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।

0: आज यहाँ न गोलियों की गूंज है न युद्ध के निशान। सरहद पर होने की वजह से सेना की मौजूदगी जरूर देखी जा सकती है, लेकिन बाजारों में वैसी ही हलचल है जैसी दूसरे शहरों में होती है। वक्त के साथ जिंदगी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन हवा में लहराता ये तिरंगा अब भी सुनाता है करगिल की वो कहानी जो भारतीय सेना के वीरों ने अपने लहू से लिखी थी। श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला हाईवे हो या यहां मौजूद चोटियां, ये सब करगिल की कहानी का अहम हिस्सा है। बर्फ से ढकी ये पहाड़ी चोटी कभी दुश्मनों के कब्जे में थी, लेकिन जब भारतीय सेना के जवानों ने इस चोटी पर तिरंगा लहराया तो ये तस्वीरें यादगार बन गईं। करगिल के चारों तरफ मौजूद हर चोटी की ऐसी ही कहानी है।
1: 26 जुलाई 1999 ये वही दिन था जब भारत ने पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी। इसी दिन करगिल की जंग खत्म हुई थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फौज को ऐसा सबक सिखाया कि उनके लिए जान बचाकर भागना भी मुश्किल हो गया था। यह भारत और पाकिस्तान की चौथी लड़ाई थी। पाकिस्तान हमेशा से ही भारत के साथ धोखा करता आ रहा है, लेकिन 1999 में पाकिस्तान ने किया सबसे बड़ा विश्वासघात।

0: My message to the people of Pakistan will be short and simple. Put aside the bitterness of the past. Together, let us make a new beginning.
1: इस संदेश के साथ शुरू हुआ साल 1999, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ रिश्तों की एक नई शुरुआत की अपील की। भारत पाकिस्तान की सीमा पर घट रही इस ऐतिहासिक घटना पर पूरी दुनिया की नजर थी। लाहौर में पाकिस्तान ने जिस गर्मजोशी से भारत की दोस्ती का हाथ थामा, भारत ने उतनी ही आत्मीयता से पाकिस्तान को गले लगाया। दिल्ली से लाहौर तक जाने वाली ये बस न सिर्फ दो पड़ोसी मुल्कों को जोड़ रही थी, बल्कि उनके बीच भरोसे की एक नई कहानी लिख रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने यह वादा किया था कि उस साल के अंत तक दोनों मुल्क मिल बैठकर कश्मीर मसले का हल निकाल लेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी इस नए रिश्ते को पूरी शिद्दत से निभाने का वादा किया था।
2: Underscore to Prime Minister Vajpayee the immense potential of building a mutually beneficial cooperative relationship once we achieve a final settlement of Jammu and Kashmir issue.
1: Aman, chain aur dosti ki ummeed se bhare is mahol mein 21 फरवरी 1999 को दोनों देशों ने लाहौर घोषणा पत्र जारी किया। लेकिन जिस वक्त लाहौर में ये सब हो रहा था, उसी वक्त पाकिस्तानी जमीन पर भारत के खिलाफ एक खतरनाक साजिश रची जा रही थी। ये साजिश थी भारत की सीमा में घुसकर हमले की। भारत को इस बात की भनक भी नहीं थी कि जिस पाकिस्तान को वो गले लगा रहा है, वो उसकी पीठ में खंजर भोंकने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के इस छल का खुलासा हुआ मई 1999 में।
3: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
9: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
10: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
11: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
12: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
13: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
13: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर

0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
1: कहानी करगिल की, अमन चैन और दोस्ती की उम्मीद से भरे इस माहौल में 21 फरवरी 1999 को दोनों देशों ने लाहौर घोषणा पत्र जारी किया। लेकिन जिस वक्त लाहौर में यह सब हो रहा था, उसी वक्त पाकिस्तानी जमीन पर भारत के खिलाफ एक खतरनाक साजिश रची जा रही थी। यह साजिश थी भारत की सीमा में घुसकर हमले की। भारत को इस बात की भनक भी नहीं थी कि जिस पाकिस्तान को वो गले लगा रहा है, वो उसकी पीठ में खंजर भोंकने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के इस छल का खुलासा हुआ मई 1999 में।
2: 1999 की करगिल जंग की शुरुआत बटालिक सेक्टर से हुई थी। इस समय हम बटालिक सेक्टर में हैं और मेरे ठीक पीछे पाकिस्तानी नियंत्रण वाले कश्मीर का गांव है। लेकिन जो जंग लड़ी गई थी वो इन पहाड़ियों के ऊपर लड़ी गई थी। जब बटालिक के एक शख्स ने अपनी भेड़ बकरियां लेके ऊपर इस पहाड़ की तरफ गए थे, तो यहाँ पे उनको पाकिस्तानी घुसपैठिए दिखाई दिए थे, जिसकी खबर बाद में उन्होंने मई महीने में ही सेना को दी थी। यानी जो पहले घुसपैठिए देखे गए थे करगिल जंग में, वो इन्हीं पहाड़ियों में दिखे थे।
1: बटालिक सेक्टर के इसी गरकुन गांव के कुछ गडेरियों ने सबसे पहले पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा। उनके मुताबिक पठान सूट पहने कुछ लोग बंकर खोद रहे थे। इस खबर के बाद सेना की कुछ गश्ती टुकड़ियों को भेजा गया, लेकिन भारत को तब यह अंदाजा नहीं था कि जिन्हें वो घुसपैठिया समझ रहे हैं वो दरअसल पाकिस्तानी फौज के सिपाही हैं। पाकिस्तान के धोखे का पता तब चला जब कैप्टन सौरभ गालिया की पेट्रोलिंग टीम लापता हो गई।
3: ये जो पहले पहले जो खबर इन लोगों को मिली यहाँ पर लोकल फॉर्मेशंस को, यूनिट्स को, तो उन्होंने ये समझा कि कुछ घुसपैठिए आ गए हैं यहाँ पर, क्योंकि वो उन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे। लोकल फॉर्मेशन ने समझा कि हम इनको निकाल फेंकेंगे और इनके पास ज़्यादा हथियार नहीं होंगे। जब ये असेसमेंट को चेंज किया गया, जब हमको खुद आर्मी को लगा के नहीं ये घुसपैठिए नहीं है, ये तो रेगुलर आर्मी के लोग हैं, तो उस वक्त हमको पूरा का पूरा स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स सब बदलनी पड़ी।
4: जब तक भारत को पता चल पाता तब तक पाकिस्तान ने भारत की करीब 150 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तानी सेना ने उन चौकियों पर कब्जा किया था जिन्हें भारतीय सेना सर्दियों में खाली कर देती थी और गर्मियों में वापस जाया करती थी। लेकिन 1999 में भारतीय सेना की उन चौकियों पर जाने से पहले ही पाकिस्तानी फौज ने उन चौकियों पर अपना कब्जा जमा लिया था। जाहिर है इसके लिए पाकिस्तान ने एक बड़ी तैयारी की होगी। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या फरवरी 1999 में जब नवाज शरीफ अटल बिहारी वाजपेयी से लाहौर में मिल रहे थे तो क्या उन्हें इस घुसपैठ की जानकारी थी?
1: नवाज शरीफ खुद ये दावा करते रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान की साजिश की भनक भी नहीं थी। खुद को इस मामले से पूरी तरह अलग करते हुए शरीफ ने यहां तक कह डाला कि उन्हें तो अटल बिहारी वाजपेयी के फोन से मालूम चला कि पाकिस्तानी फौज भारत में घुस चुकी है।
5: मेरे भाई मुशर्रफ ने कारगिल पे हमला किया और उस फौजी हमले का मुझे इल्म नहीं था। मैंने उसका नोटिस लिया और नोटिस मैंने तब लिया जब वाजपेयी साहब का मुझे टेलीफोन आया, मुझे कहने के नवाज शरीफ साहब ये आपने क्या कर दिया हमारे साथ, मैं तो थोड़े दिन पहले आपके पाकिस्तान से होके आया हूँ, इतना अच्छा जज्बा लेके मैं हिंदुस्तान वापस आया हूँ और आपने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। तो मैंने कहा क्या हुआ वाजपेयी साहब? कहने आपको मालूम नहीं क्या हुआ है, आपकी फौज ने हमारी फौज पे हमला कर दिया। मैंने मुशर्रफ साहब से बात की और फिर हकायक जो वाजपेयी साहब कह रहे थे उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक निकले और फिर मैंने कहा कि आपने ये सब कुछ क्या किया।
1: परवेज मुशर्रफ, जिन्होंने बाद में नवाज शरीफ का तख्ता पलटकर पाकिस्तान की सत्ता अपने हाथ में ले ली, उस वक्त पाकिस्तानी सेना के प्रमुख हुआ करते थे। जानकारों के मुताबिक 1998 में पाकिस्तानी सेना की कमान संभालते ही मुशर्रफ ने भारत पर हमले की योजना बना ली थी। नवाज शरीफ को इस घुसपैठ के बारे में कितना इल्म था, इस सच का पता तो नहीं चल सका, लेकिन ये बात अब पूरी दुनिया जानती है।

0: कि करगिल का मास्टरमाइंड कौन था।
1: अनऑक्युपाइड एरिया में इंडिया सियाचिन में आ गया, यहाँ हम चले गए, ये हमें और हमने मैं आई से विद कॉन्फिडेंस हमने हिंदुस्तानी फोर्स को गले से पकड़ लिया। और मैं रिपीट कर रहा हूं, उनको गले से पकड़ लिया क्योंकि हम उन जगहों में चले गए जहां उनकी जो मेन आर्टरी है जो श्रीनगर से द्रास, कारगिल और लद्दाख ले जाती है, उसको हम डोमिनेट कर गए। उस पे गाड़ी नहीं चल सकती थी अगर हम ना चाहते।
0: इससे पहले की तीन लड़ाइयों में भारत से मुंह की खाने के बाद भी 1999 में पाकिस्तान ने भारत पर हमले की हिमाकत की। उसकी सबसे बड़ी वजह थी 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट। उस साल दोनों ही मुल्क एटमी हथियारों से लैस हो चुके थे। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान एटमी हथियारों का डर दिखाकर ऐसा कुछ करना चाहता था जिससे कश्मीर के मुद्दे पर भारत पर दबाव डाला जा सके।
2: इन न्यूक्लियर टेस्ट के बाद पाकिस्तान में एक ह्यूबरिस की स्थिति आई कि साहब अब तो हम एटमी ताकत बन गए हैं, भारतवर्ष हिम्मत नहीं करेगा, अगर हम कोई प्रोवोकेशन करते हैं सब कन्वेंशनल दर्जे पे तो भारत में हिम्मत नहीं होगी कि उसका वो जवाबी कार्रवाई कर सके। और इसी के चलते उन्होंने कारगिल का युद्ध जो है छेड़ दिया था।
0: जनरल परवेज मुशर्रफ का प्लान बिल्कुल साफ था, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से काट कर सियाचिन में भारत की पकड़ कमजोर करना।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
6: जी हाँ, कमलश्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आएं कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
9: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने।
10: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
11: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
12: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
13: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
11: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
10: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
11: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
13: कॉल करें 87-894-18744।
14: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
13: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
11: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
13: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
7: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
7: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
11: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
7: संपर्क करें 9939365923।
0: कहानी करगिल की। जनरल परवेज मुशर्रफ का प्लान बिल्कुल साफ था। लद्दाख को जम्मू कश्मीर से काट कर सियाचिन में भारत की पकड़ कमजोर करना। मुशर्रफ ने बेहद खुफिया तरीके से यह साजिश रची। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार नजम सेठी के मुताबिक, करगिल में घुसपैठ के सीक्रेट ऑपरेशन में मुख्य तौर पर पाकिस्तानी सेना के 4 ऑफिसर शामिल थे।
15: आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ, कमांडो, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अजीज, हेड ऑफ कश्मीर, जिहाद, ये वो सारा कुछ, ISI में जब वो थे तो अब वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बन गए। जनरल महमूद, कोर कमांडर, 10 कोर, और हमारा फॉर्मर एम्बेसडर टू अमेरिका ब्रिगेडियर जावेद हसन, इंचार्ज ऑफ नॉर्दर्न इन्फेंट्री फोर्स कमांड, नॉर्दर्न इन्फेंट्री, जो कि इन इलाकों के, ये थे The four people who conceived the gang of four. October, November 98. अभी बस डिप्लोमेसी शुरू भी नहीं हुई थी, तो इन्होंने फैसला किया कि कुछ करते हैं, देखते हैं। उस वक्त कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि इंडिया इस सेक्टर के अंदर कुछ अग्रेसिव शेलिंग हो रही है, इंडिया के कुछ प्लान्स बन रहे हैं, कोई और ना कुछ सीज कर ले LOC के ऊपर। तो इन्होंने ब्रिगेडियर साहब को कहा कि जी, क्योंकि वो इंचार्ज थे, कि आप जाके चेकआउट तो करें वहां इंडिया के क्या इरादे हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये जब ब्रिगेडियर साहब गए उस इलाके में रेकी करने, तो देखा वहां तो बंदा ना बंदे की जात, थोड़ा और आगे गए तो बंदा ना बंदे की जात। उन्हें सोचे कोई तो रास्ता खुला है, तो है ही कुछ नहीं, ये तो ऐसी वी कैन वॉक इन, पता नहीं चलना किसी को। वहां से ये प्लान बना।
0: मुशर्रफ के इस प्लान को नाम दिया गया ऑपरेशन बद्र। नजम सेठी के मुताबिक 1999 के जनवरी फरवरी महीने में मुजाहिदीनों की शक्ल में पाकिस्तान के करीब 200 सैनिक लाइन ऑफ कंट्रोल को लांग कर करगिल की सुनसान पहाड़ियों में घुस गए। धीरे धीरे इन सैनिकों की संख्या बढ़ती गई और मार्च अप्रैल तक उन्होंने भारत की 140 से ज्यादा पोस्ट पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, उस वक्त पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन डायरेक्टोरेट में रहे कर्नल अशफाक हुसैन ने अपनी किताब विटनेस टू ब्लंडर में लिखा है कि हमले से पहले परवेज मुशर्रफ खुद LOC क्रॉस करके भारतीय नियंत्रण रेखा में 11 किलोमीटर अंदर तक गए और वहां एक रात भी गुजारी।
16: करगिल की लड़ाई का ये पहला चरण था। पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री यानी NLI के फौजी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर अपनी पोजीशन ले चुके थे, लेकिन भारत को इसकी खबर तक नहीं थी। करगिल, द्रास और बटाली सेक्टर की ऊंची ऊंची पहाड़ियां करीब 16,000 से 18,000 फीट तक की हैं, और यहां पर बैठे पाकिस्तानी सैनिकों के सीधे निशाने पर था नेशनल हाईवे नंबर 1A, यानी वो रास्ता जो कि लद्दाख को श्रीनगर से जोड़ता है। पाकिस्तान की योजना ये थी कि इस हाईवे पर लगातार फायरिंग कर लद्दाख को बाकी के जम्मू कश्मीर से काट दिया जाए।
0: जम्मू कश्मीर का सबसे शांत इलाका लद्दाख पर पाकिस्तानी कब्जा ऑपरेशन बद्र का पहला लक्ष्य था। इसी रणनीति के तहत करगिल की चोटियों पर बैठे पाकिस्तानी सैनिक नेशनल हाईवे पर जबरदस्त गोले बरसा रहे थे।
17: उनका इरादा मेरे ख्याल से ये भी था कि एक बार अगर श्रीनगर से लद्दाख का रोड कम्युनिकेशन को काट दिया जाए, तो उसके बाद वो शायद सियाचिन मुद्दे के ऊपर भी भारत के ऊपर दबाव डाल सकते हैं, और उसके बाद भारत को एक कमजोर स्थिति से फिर पाकिस्तान के साथ बात करनी पड़ेगी।
0: शुरुआत में भारत यही समझता रहा कि हमला करने वाले पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, लेकिन जैसे ही भारत को इस बात के सबूत मिलने लगे कि आतंकवादियों की शक्ल में पाकिस्तानी सेना गोले बरसा रही है, भारत ने मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी। दुनिया के इतिहास में पहली बार महाविनाशक एटॉमिक हथियारों से लैस दो देश युद्ध के मैदान में आमने सामने थे।
18: इस समय देश के सामने युद्ध जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। कारगिल में, उसके आसपास के क्षेत्र में बड़ी तादाद में पाकिस्तान से सशस्त्र घुसपैठी आए।
0: भारत एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। उसे ऐसा जवाब देना था जिससे पाकिस्तान को सबक भी सिखाया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माहौल उसके पक्ष में रहे। यही वजह थी कि 24 मई को CCS यानी कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। भारत ने पाकिस्तानी हमले का जवाब देने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया, लेकिन सेना को किसी भी हाल में लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस न करने की हिदायत दी।
2: बहुत लोग चाहते थे कि हम पलटवार करें, लाइन ऑफ कंट्रोल को जाके पार करें, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमारी जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट का ये फैसला था LC ना पार करने का, ये बहुत समझदार फैसला था, क्योंकि इससे कोई विदेशी ताकत इसमें अब हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल पार करते तो ये इंटरनेशनल स्थिति बन जाती, UN उसमें बीच में टपक पड़ता, अमेरिका दबाव डालता कि लड़ाई बंद करो, मैक्सिमम हम 7-8-10 दिन 15 दिन तक लड़ाई लड़ सकते थे। जबकि ऐसे पहाड़ों पे हमारा अंदाजा था कि 2-2.5-3 महीने लग जाएंगे उनके पांव उखाड़ने में, तो इसलिए अगर हमने लाइन पार की होती, हम पे दबाव पड़ता, 15 दिन में हमको खत्म करना पड़ता और काफी सारा इलाका उसके हाथ में रह जाता ऐसे ही अहम जगह में।
18: शांति और शक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शांति में राष्ट्र की शक्ति तैयार होती है, आर्थिक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया तेज होती है, शांति में जीवन की रक्षा होती है, विकास होता है। लेकिन जब शांति खतरे में पड़ जाए दूसरों के व्यवहार के कारण, तो फिर शक्ति से काम लेना पड़ता है।
16: युद्ध के इतिहास में करगिल की लड़ाई को सबसे मुश्किल लड़ाइयों में गिना जाता है, जहां दुश्मन 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाइयों पर बंकर में छुपा बैठा था और उनसे मुकाबला करने वालों को हमला करने वालों का नीचे से जवाब देना था। इसलिए भारत रणनीतिक तौर पर कमजोर स्थिति में था। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने हमलावरों की संख्या करीब 5,000 थी और उन्हें खदेड़ने के लिए भारतीय सेना को करीब 30,000 जवानों को भेजना पड़ा था।
0: भारतीय सेना की मुश्किल ये थी कि जिस हाईवे को वो अपने सप्लाई रूट की तरह इस्तेमाल कर सकते थे, उस पर पाकिस्तान लगातार गोलाबारी कर रहा था। इसलिए भारत ने सबसे पहले उन चोटियों को निशाना बनाने की योजना बनाई जो सीधे हाईवे के सामने थी, यानी तोलोलिंग और टाइगर हिल्स। भारत की जवाबी कार्रवाई के इस पहले चरण में सबसे अहम भूमिका निभाई बोफोर्स गन ने। कुछ साल पहले राजनीति के मैदान में बदनाम हो चुकी बोफोर्स गनों ने करगिल के मैदान में अपना दम दिखाया। जमीन पर बोफोर्स के गोले तो आसमान में एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने बम बरसाना शुरू किया।
2: लड़ाई के मैदान में इसने अपना पूरा जौहर दिखाया और जैसे मैंने बताया कि इस ऊंची पहाड़ी चोटियों पर अगर हम दुश्मन को हिला पाए तो सबसे ज्यादा उसमें भूमिका थी हमारी बोफोर तोपों की और हमारे इन्फेंट्री के सिपाहियों की हिमाकत और शुजात की। और ये बोफोर तोपें, हमने बताया, हर इन्फेंट्री पलटन के अटैक के लिए हमने 100 गन्स वहां पे पहुंचवाई थी और जो ग्रैंड रॉकेट लॉन्चर थे वो वहां पहुंचाए ताकि दुश्मन को हिला लिया जाए हमले के पहले, और तभी दुश्मन के पांव उखड़े थे तो उस हाइट से उसको निकालना असंभव था।
16: करगिल की कहानी बिना बोफोर्स के पूरी नहीं होती। 155 मिलीमीटर की होविट्जर गन का बैरल करीब 70 डिग्री तक घूम सकता है, यानी इसका गोला ऊंची से ऊंची पहाड़ियों तक पहुंच सकता है। करीब 40 किलोमीटर की रेंज वाली इन गनों ने ऊंची पहाड़ियों पर बने दुश्मनों के बंकरों को तबाह कर दिया।
0: 26 मई 1999 को भारतीय वायुसेना ने हवाई हमला शुरू किया। हालांकि दुश्मन की सही पोजीशन पता न होने की वजह से वायुसेना को शुरुआती झटके लगे। 27 मई को MiG-27 तकनीकी खराबी की वजह से दुर्घटना का शिकार हुआ। सहायता के लिए बढ़ा दूसरा MiG-21 विमान पाकिस्तानी मिसाइल के निशाने पर आ गया। MiG-27 के पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता को युद्ध बंदी बना लिया गया, जबकि मिसाइल के निशाने पर आए विमान MiG-21 के पायलट स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा को पाकिस्तानियों ने बर्बरता से मार डाला।
19: All of you here will share my sadness that on first report and preliminary inspection of the body we find bullet wounds. Now the body is being taken for post-mortem and when we have the full report of the post-mortem we shall present it to you.
0: शुरुआती झटकों के बाद वायुसेना ने अपनी रणनीति बदली। 1971 के बाद पहली बार वायुसेना के जंगी जहाज युद्ध में शामिल हो रहे थे। इसे ऑपरेशन सफेद सागर का नाम दिया गया। MiG-29 हवा में दूसरे विमानों को सुरक्षा देता था। इसने पाकिस्तानी F-16 विमान को भारतीय सीमा से दूर रहने पर मजबूर किया, जबकि MiG-27, MiG-21 और Mirage-2000 विमान जमीनी निशाना ढूंढते थे। भारतीय वायु क्षेत्र में रहकर विमानों ने वो काम किया जो अब तक दुनिया की किसी भी वायुसेना ने नहीं किया था। 13,000 फुट से 18,000 फुट की ऊंचाई पर छुपे पाकिस्तानी फौज के सैनिकों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। पहली बार लेजर गाइडेड बम का इस्तेमाल हुआ।
20: Fortunately, by a system that we had adopted in Western Air Command, the enemy was convinced that we are ready for the air battle, willing for the air battle. आप आओ, हम आपसे लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, and we are waiting for it. वो नहीं आया।
0: इसके साथ भारत ने जल्द ही दुनिया के सामने पाकिस्तानी फौज की मौजूदगी के पुख्ता सबूत दे दिए।
21: डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी इन दीज इंट्रूजन्स हैव बीन प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट।
0: भारतीय सेना के लिए जमीन पर हालात तब बदले जब तोलोलिंग पर कब्जा हुआ।
22: कोई नाइट 12-13 को टू राजरिफ ने आर्टिलरी की सपोर्ट के साथ ये ऑपरेशन लॉन्च किया और सुबह 13 तारीख को उन्होंने टोलोलिंग के ऊपर कब्जा कर लिया। ये सबसे बड़ा सक्सेस था हमारे लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि कोई 2-3 हफ्ते तक कोई हमको सक्सेस नहीं मिल रहा था और टोलोलिंग एक ऐसा फीचर था जो रोड के ऊपर बड़ी अच्छी तरह डोमिनेशन कर रहा था दुश्मन।
0: टोलोलिंग के बाद भारतीय सेना का मकसद था टाइगर हिल से पाकिस्तानियों को खदेड़ना। टाइगर हिल को दुश्मनों के चंगुल से आजाद कराने को निकले भारतीय सैनिक अपने साथ रसद की जगह ज्यादा से ज्यादा हथियार ले गए थे। यह इस लड़ाई का सबसे मुश्किल मुकाबला था। इसके लिए भारतीय सेना की 3 बटालियनों ने पाकिस्तानी फौज को 3 तरफ से घेरा। करीब 11 घंटे की जंग के बाद 4 जुलाई को भारतीय जवानों ने टाइगर हिल पर भी तिरंगा फहरा दिया। यह इस जंग की सबसे बड़ी जीत थी।
23: घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
24: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
23: आज ही संपर्क करें 7388-8947 या 9198-8869-73।
25: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
26: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
25: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
26: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
25: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
27: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता।
1: खिलाड़ियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है। यह अभियान देशभक्ति के एक अनूठे उत्सव में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत को एक साथ लाता है। उत्सव के हिस्से के रूप में पूरे देश में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन आयोजित किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
4: तिरंगा अभियान के तहत राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर कल पटना में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में यह यात्रा सुबह 10 बजे जेपी गोलंबर से कारगिल चौक तक निकलेगी। इस तिरंगा यात्रा में मंत्री, अधिकारी और बड़ी संख्या में आम लोग शामिल होंगे। प्रदेश में इस अभियान के तहत हर प्रखंड को 4000 तिरंगे उपलब्ध कराए गए हैं। इधर अररिया जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत एसएसबी की 52वीं बटालियन के जवानों ने सदर अस्पताल में रक्तदान किया। वहीं सुपौल जिले में तिरंगा प्रदर्शनी, सेल्फी विद तिरंगा और तिरंगा रंगोली सहित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। मधुबनी जिले में एसएसबी ने ग्रामीणों और बच्चों के साथ तिरंगा रैली निकाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व से प्रेरित होकर भारत छोड़ो का आह्वान देश के स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा लेकर आया। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन ने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाने के लिए भारतीय जनता के अटूट संकल्प को प्रतिबिंबित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली के बेस अस्पताल में रक्तदान शिविर के उद्घाटन के अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की महिलाओं के माथे के सिंदूर की रक्षा के लिए सेना पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने काकोरी षड्यंत्र में शामिल वीर सपूतों की देशभक्ति को याद करते हुए कहा कि काकोरी कांड स्वतंत्रता संग्राम का अमिट अध्याय है, जिसने देशभक्ति और बलिदान का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि स्वराज और मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देने वाले इस अमर बलिदानियों को देश नमन करता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर परीक्षा व्यवस्था और छात्रों के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने आज पटना के अधिवेशन भवन में 2 दिवसीय शिक्षा कार्यशाला सचिंतन शिविर के उद्घाटन समारोह में कहा कि शिक्षा सुधार के लिए विशेष सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें मुख्यमंत्री, मंत्री और सांसद छात्रों से संवाद कर उनकी समस्याएं हल करेंगे। श्री चौधरी ने कहा कि परीक्षा में सुधार के लिए भी विशेष प्रबंध किए जाएंगे।
5: दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है परीक्षा सुधार, क्योंकि जितने परीक्षा होते हैं, क्योंकि इतना टेक्नोलॉजी अधिक हो गया, एक आदमी ने अपना यदि ईमान बेच दिया तो क्वेश्चन पेपर मार्केट में आ जाता है। तो हम लोगों ने तय किया है कि इसको पूर्ण रूप से एक कमेटी इस पर भी बनाएंगे और पूरे दुनिया में जो टेक्नोलॉजी के तहत सभी परीक्षा लिए जाते हैं उसके लिए भी एक कमेटी का गठन हम लोग करने का काम करेंगे।
4: वहीं शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सरकार जल्द ही पेपर लीक मामलों की जांच के लिए एक समिति का गठन करेगी।
6: मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कहा कि अगर एक व्यक्ति ने भी ईमान बेचा तो ये पूरे सरकार पे धब्बा लगता, इसीलिए उसके लिए कड़े कानून माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाए हैं और उस कड़े कानून को बिहार में कड़ाई से लागू किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, नजर रखने के लिए, परीक्षा सुधारों के लिए काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कमेटी बनाएंगे और पारदर्शी परीक्षाएं हमारी हो।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार की ओर से लाए गए 3 नए आपराधिक कानून का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को न्याय सुनिश्चित करना है। श्री शाह ने पुडुचेरी में आयोजित समारोह में यह बात कही।
3: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर तीन भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये तीन पिलर पर खड़ी की गई है।
4: आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा निर्मित मकान लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। मंत्रालय के अनुसार दूसरे चरण के पीएम आवास योजना शहरी के तहत 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 2,09,000 से ज्यादा मकानों को मंजूरी दी गई है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। सोनपुर के सर्वांगीण विकास को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सोनपुर क्षेत्र को भविष्य की उच्च जरूरतों के अनुरूप विकसित करने, ढांचागत सहूलियतों को मजबूत करने तथा सुचारू पेयजल आपूर्ति जैसी मूलभूत आवश्यकताओं पर विचार विमर्श हुआ। बैठक के दौरान सांसद राजीव प्रताप रूड़ी ने कहा कि सोनपुर को केवल पटना के विस्तार के रूप में सीमित न रखकर स्वतंत्र पहचान वाले एक आधुनिक, नियोजित, आर्थिक और पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने समस्तीपुर के रोसड़ा में बनने वाले बाईपास का आज शिलान्यास किया। 85 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित होने वाले इस बाईपास से सिंधिया घाट रेलवे फाटक और रोसड़ा बाजार को जाम से बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही खगड़िया, बेगूसराय से दरभंगा और समस्तीपुर की ओर जाने वाली भारी वाहनों को भी सुगम मार्ग मिलेगा। इस अवसर पर मंत्री अशोक चौधरी और सांसद शांभवी चौधरी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। गोपालगंज को बेतिया से जोड़ने वाले मंगलपुर पुल के पिलर संख्या 5 के पास से क्षतिग्रस्त स्पैन की मरम्मत का काम IIT और NIT पटना के इंजीनियरों की निगरानी में शुरू हो गया। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने बताया कि मरम्मत कार्य के कारण कल सुबह 5 से 7 बजे तक पुल पर आवागमन बंद रहेगा। श्रावण मास की दूसरी सोमवारी को लेकर आज सुबह से ही अजगैबीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इसमें बिहार के अलावा झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और नेपाल के श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हैं। शिव भक्त गंगा का पवित्र जल लेकर देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए पैदल और वाहनों से रवाना हो रहे हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। नमामि गंगे घाट, अजगैबीनाथ घाट और पूरे सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र में पुलिस बलों को तैनात किया गया है। कांवरिया पथ और घाटों पर लगातार साफ सफाई का काम चल रहा है। आपात स्थिति से निपटने के लिए SDRF की टीम भी मुस्तैद है। बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से पटना में 12वें अंतर्राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय संकल्प समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में शामिल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अंगदान के लिए जिला अस्पतालों, अनुमंडल अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंगदान से हम किसी व्यक्ति के जीवन में नए प्रकाश का संचार कर सकते हैं। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत सारण जिले के 11 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्लड स्टोरेज यूनिट स्थापित किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए दिखवारा, मांझी, परसा, अमनौर, एकमा, गड़खा, इसुआपुर, जलालपुर, मशरक, नगरा और रिविलगंज CHC का चयन किया है। मॉनसून के प्रभाव से राज्य के विभिन्न भागों में बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज जिले के गलगलिया और गया जिले के मदनपुर में भारी बारिश हुई है। विभाग के अनुसार गलगलिया में सबसे अधिक 128.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, वहीं मदनपुर में 70.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान कैमूर, रोहतास और किशनगंज जिले के कुछ भागों में भारी बारिश हो सकती है।
1: दिनांक 10 अगस्त को राज्य के उत्तर पश्चिम भाग एवं दक्षिण भाग के कुछ स्थानों पर जबकि उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है। उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम इलाकों में कुछ जगहों पर आंधी तूफान, बिजली गिरने की संभावना है। कैमूर, रोहतास और किशनगंज जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है।
0: सारण के वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार ने कर्तव्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता के खिलाफ जिले के अवतारनगर, तरैया और अमनौर के थाना अध्यक्षों को निलंबित कर दिया है। मधुबनी जिले के अरेर थाना क्षेत्र के हनुमान चौक नौटोली के समीप तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से 3 महिलाओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इधर नालंदा जिले में अलग अलग घटनाओं में करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। सारण के गरखा और नगरा थाना क्षेत्र की पुलिस ने डकैती और पॉक्सो एक्ट में फरार 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अरवल जिले में समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित उज्जवल दृष्टि योजना के तहत 1000 से अधिक मरीजों की जांच की गई। इनमें से 600 से अधिक मरीजों को निःशुल्क चश्मा उपलब्ध कराया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देश भर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। पटना में कल भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर परीक्षा व्यवस्था और छात्रों के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए सरकार प्रतिबद्ध। शिक्षा मंत्री ने पेपर लीक की जांच के लिए समिति के गठन की घोषणा की। पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1 करोड़ से अधिक निर्मित मकान लाभार्थियों को सौंपे गए। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कैमूर, रोहतास और किशनगंज जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
6: प्रसाद क्लिनिक।
7: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
6: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
7: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
5: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4-5 किलोमीटर के अंदर।
5: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
5: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
8: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
9: मैं बनूंगा।
8: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
10: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12-1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
8: हर संडे दोपहर के 12-1:30 के बीच में,
10: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AM-Z पर।
5: ओम नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
5: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए।

0: रेडियो रिमझिम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा यानी रेडियो दोस्त सोनू के तरफ से नमस्कार प्रणाम। समय हो चुका है आपका संदेश मिला कार्यक्रम का, तो ठीक सही समय पे आप सभी के द्वारा संचार के विभिन्न माध्यमों से भेजे गए संदेशों को लेकर हाजिर हो चुका हूँ आप सभी के बीच। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके द्वारा भेजे गए संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया देते हैं रेडियो रिमझिम के प्रबंध निदेशक श्री कृपा शंकर श्रीवास्तव जी। तो सर, सबसे पहले आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: यदि आप भी इस कार्यक्रम में शिकायत, सुझाव, प्रशंसा या अपना विचार भेजना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है रेडियो रिमझिम, बंजारी मोड़, गोपालगंज, पिन कोड 84 14 28। व्हाट्सएप नंबर है 98527 88291 और ईमेल आईडी है radioremjhim@gmail.com। आप संचार के जिस माध्यम से चाहें उस माध्यम से अपना शिकायत, सुझाव या प्रशंसा, अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल अपनी बातों को रोकते हैं और इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं।
1: नमस्कार आदरणीय श्रोता बंधु, आप सबके पूरे परिवार को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बड़े हर्ष की बात है कि प्रत्येक रविवार को संध्या 7:45 पर और रविवार को सुबह में 7:10 पर आपका संदेश मिला कार्यक्रम का रेडियो रिमझिम 90.4 के माध्यम से प्रसारण होता है। यह कार्यक्रम अपने प्रिय श्रोताओं के सुझाव, मार्ग निर्देशन का अनुपालन करते हुए हम करते हैं। आपका संदेश मिला कार्यक्रम में विशेष करके युवा साथी अपने बातों को हम तक पहुंचाते हैं और वही श्रोता आपका संदेश मिला में अपना संदेश भेजते हैं जो रेडियो को नियमित और लगातार सुनते हैं। जमाना बदल गया, सुनने और समझने का तरीका बदल गया, नई नई चीजें आने लगी, विज्ञान अपने तकनीक में बहुत विकसित हो गया और आने वाले समय में और विकसित होगा। रेडियो दुनिया का एक ऐसा यंत्र है कि पूरे भारतवर्ष में 98% जनसंख्या के पास अपनी आवाज को पहुंचाता है, चाहे वह कॉमर्शियल रेडियो हो, आकाशवाणी हो, कम्युनिटी रेडियो हो या और अन्य कोई यंत्र हो, जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, हम एक दूसरे को समझते हैं, हम एक दूसरे के भावनाओं का कद्र करते हैं। रेडियो रिमझिम जब से स्थापित हुआ बिहार गोपालगंज में, तब से और आज तक लगातार एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों का प्रसारण करता रहा और लोग उसे पसंद करते रहे। यह कार्यक्रम जो है आपके विचारों पर आधारित होता है। कई ऐसे बच्चे हैं जो इतिहास में ऑनर्स कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, उन लोगों के बातों का भी हम लोग कद्र करते हुए भारत की कहानियां जैसे कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं। जिन्हें गीत संगीत में ज़्यादा रुचि है उनके लिए ऑनलाइन कार्यक्रम जो है हम प्रसारित करते हैं और कई कार्यक्रम ऐसे हैं जो रिकॉर्डेड है उसे भी हम प्रसारित करते हैं। हम यह चाहते हैं कि सरकार की योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुँचे, जिला प्रशासन के गतिविधियों की भी जानकारी हालचाल के माध्यम से देते रहते हैं। लोगों के पास अपना बैठकर सिनेमा देखने का समय है, अब जो है ज़्यादा मोबाइल पर लोग जो है रील देखना पसंद करते हैं जो 10 से 20 सेकंड का हो और आगे बढ़ते जाए। तो अपने कार्यक्रमों का हम भी संक्षेपण करते गए और विविध कार्यक्रमों का प्रसारण रेडियो रिमझिम से करते रहते हैं। आदरणीय श्रोता बंधु, शनिवार के रात में अचानक कोई तकनीकी व्यवधान आ गया, जिसके वजह से शनिवार के रात में और रविवार के सुबह में हम अपना प्रसारण नहीं कर पाए। इसके लिए हम अपने पूरी टीम के साथ सभी श्रोताओं के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं। आज जो तकनीक का युग है, बहुत सारे तकनीक अपनाया जा रहा है, बहुत सारे चीज जो है जानकारी में है, कुछ नहीं जानकारी में है। दिन प्रतिदिन विज्ञान प्रगति कर रहा है, नए नए टूल्स भेज रहे हैं, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो कभी कभार रेडियो रिमझिम को भी परेशानी हो जाता है। जो उसके जानकार हैं बुलाया जाता है, वे ठीक ठाक करते हैं, फिर हम अपना कार्य शुरू करते हैं। आपका संदेश मिला कार्यक्रम में हम अपने परम आदरणीय श्रोताओं के बातों को अंगीकार करते हैं, मानते हैं। कई हमारे श्रोता हैं जो मिलना चाहते हैं, अपनी बातें कहना चाहते हैं। ईश्वर ने सबको 24 घंटा दिया है, उसी में आपको हर गतिविधि करना है और कम से कम समय में बेहतर से बेहतर रिजल्ट देना है। आने वाले समय में और ज़्यादा कंपटीशन प्रतियोगिता बढ़ने जा रहा है। दुनिया का चाहे कोई भी क्षेत्र हो, खेल हो, पढ़ाई हो, कोई भी क्षेत्र हो, जिसमें कंपटीशन दिन रात बढ़ते जा रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए हम भी अपने कई कार्यक्रमों का संक्षेपण करते हुए प्रसारण करते हैं और हम अपनी आवाज़ जो है 3-4 तरह से बाहर भेजते हैं। आप हमें रेडियो पर सुनिए, गूगल के प्ले स्टोर में ऐप डाउनलोड करके मोबाइल पर सुनिए, इंटरनेट से सुनिए। यदि आप रेडियो रिमझिम के 5 किलोमीटर के रेडियस में हैं तो बिना इंटरनेट से छोटा मोबाइल से आप हमें सुन सकते हैं। हमने ऐसी व्यवस्था की है ताकि कोई भी हमारी आवाज़ से वंचित न रहे, सुनते रहे। रेडियो पर हर तरह का कार्यक्रम दिया जाता है, आप अपने मन पसंद के अनुसार कार्यक्रम को सुन सकते हैं। जैसे प्रत्येक रविवार को हेलो क्विज कॉन्टेस्ट है, यह कार्यक्रम जो है युवाओं में एक प्रतियोगी बनने की क्षमता को उभारता है। हम कैसे किस प्रश्न का उत्तर दें, इन सब बातों के लिए हमारे यहाँ के आरजे इस कार्यक्रम का निर्वहन करती हैं और बहुत सारे हमारे युवा साथी इसमें भाग लेते हैं। वैसे रेडियो रिमझिम द्वारा इसमें उम्र का बंधन नहीं दिया गया है, आप चाहे किसी उम्र के हों, यदि आप अपने ज्ञान को या आप अपनी योग्यता को परखना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। रात को 9:05 में और सुबह 7 बजे हालचाल का प्रसारण होता है, जिसमें अपने जिले के सभी गतिविधियों की जानकारी दी जाती है और हम लोग नकारात्मक सूचना से बचते हैं, सकारात्मक सूचनाएं देने का प्रयास करते हैं। आज जो है हालचाल सुनने वालों की संख्या रेडियो पर लाखों में हो गई है और बहुत सारे हमारे आदरणीय श्रोता हैं जो रेडियो रिमझिम के YouTube पर जो आता है हालचाल गोपालगंज सुनते हैं। हमने देखा है कि उसकी संख्या कई हजारों में होती है। बड़ा अच्छा लगता है, एक सरकार के पास भी संदेश जाता है कि रेडियो रिमझिम को सुनने वालों की संख्या लाखों में है। आपको पता ही है, पिछले आपका संदेश मिला कार्यक्रम में हमने बताया था कि भारत सरकार की एक टीम आई थी और वह जो है रेडियो रिमझिम के 15 किलोमीटर आवर्ती में रेडियस में वह गांव-गांव, घर-घर, नगर परिषद क्षेत्र में घूम-घूम कर पूछा कि इस परिवार में कितने लोग रेडियो सुनते हैं, कितने लोग टीवी देखते हैं, कितने लोग दिन रात मोबाइल चलाते हैं। और बहुत सारे लोगों ने रेडियो रिमझिम के पक्ष में अपनी बातों को रखा, उसमें से कई वीडियो, ऑडियो, फोटो रेडियो रिमझिम को भी मिला है। यह सब देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। जब आप किसी काम में निरंतर और लगातार प्रयास करते हैं तो सफलता तो मिलना ही है। मान लिया जाए हम किसान हैं, धान जो है पानी में डूब गया, बाढ़ आ गया, एक साल बारिश काफी हुआ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम दूसरे साल अपने धान को नहीं रोपेंगे। हम अपना प्रयास जारी रखेंगे। रेडियो रिमझिम का मानना है कि व्यक्ति कितना हूँ पढ़ ले लिख ले, लेकिन जब तक उसे सही दिशा निर्देश नहीं मिले, अस्पष्टता नहीं मिले, अपने बातों को सही जगह पर रखने की परख नहीं हो, तो वह विद्वता जो है कमजोर पड़ने लगता है। आज भी हम देखते हैं कि हमारे कई युवा साथी हैं जो अपने बातों को मजबूती से और सच्चाई से रखते हैं। कोई भी बात कहने से पहले आपको उसके कसौटी पर सही होना पड़ेगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस व्यक्ति के अंदर आत्मबल होता है, आत्मसंयम होता है, वह व्यक्ति सफलता के शिखर पर जाना है। जीवन के कई दशक पूरा करने के बाद मैंने अनुभव किया है कि यदि सच्चाई के साथ आप हैं और उस बात को किसी को कहते हैं तो उसके दिल आत्मा तक पहुंचेगा, लेकिन आप केवल भाषण देकर निकल गए तो वह कहीं नहीं पहुंचेगा। जिस तरह हवा का झोंका आता है और चला जाता है, तो जीवन में हम यदि सत्य के साथ हैं तब हमारा आत्मबल आत्मसम्मान बना रहेगा। जीवन में पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट आदमी खत्म कर दे, अपना आत्मसम्मान खत्म कर दे। पैसा के लिए यदि आप खत्म कर दिए तो वह व्यक्ति मृत के समान हो जाता है। व्यक्ति का सेल्फ रिस्पेक्ट आत्मसम्मान बहुत ही जरूरी है, इसे किसी भी हाल में बनाए रखना चाहिए। व्यक्ति जहाँ काम करता है, जहाँ रहता है, उसके प्रति भी जिम्मेवारी होती है। कल हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो हमारे पास कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगा। कल हम किसी संस्थान में नहीं रहेंगे, कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगा। लेकिन जब हम कहीं से जुड़े हैं तो वहाँ पर जो है अपना मर्यादा, अपना सम्मान और संस्थान का सम्मान रखना चाहिए। यही सही माने में मानव शक्ति है, मानव बल है, आत्मसम्मान है। कई बच्चे पूछते हैं कि आत्मसम्मान क्या है। जो व्यक्ति अपने आप को सम्मान दे और दूसरे के प्रति भी आदर और सम्मान रखे, वही व्यक्ति बेहतर होता है। आदरणीय श्रोता बंधु, जिले के विभिन्न जगहों से आप लोगों का भी बहुत सारा संदेश आया है। मिस्टर सोनू जी पढ़ेंगे और मैं अपने पूरी ईमानदारी से उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद
0: जी। सर, हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी संचार के विभिन्न माध्यमों से बहुत सारे संदेश पहुंचे हुए हैं। सबसे पहला संदेश पहुंचा हुआ है मेरे पास बनारसी सिंह जी का, अहिरौली से लिखे हुए हैं, मैं रेडियो रिमझिम का बहुत पुराना श्रोता हूं। मुझे सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, विशेषकर सोटी बिरजाभार रामायण मुझे बहुत पसंद है। तो सर, इनके संदेशों पर अपना विचार दे।
1: आदरणीय श्रोता बंधु, आपके पूरे ग्रामवासियों को, पंचायतवासियों को और आपके परिवार के सभी लोगों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। रेडियो रिमझिम का सुबह 5 बजे से रात को 11:10 तक विविध कार्यक्रम चलते हैं, जैसे निर्गुण हुआ, सोठी बिरजाभार हुआ, कजरी हुआ, बिरहा हुआ। प्रत्येक दिन नए नए कार्यक्रम चलते हैं और हमारे श्रोता को विभिन्न कार्यक्रम बहुत पसंद आते हैं। हम जो कार्यक्रम का संरचना करते हैं या प्रसारण करते हैं, इसमें हमारे टीम का यह पूरा प्रयास होता है कि हम लोग जब क्षेत्र भ्रमण करने जाएं तो बात के सिलसिले में लोगों का भी विचार लेते रहें। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें निर्गुण सुनाया जाए, उसका समय बढ़ाया जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो भोजपुरी गीतों को पसंद करते हैं। कुछ हमारे ऐसे श्रोता हैं जो पुराने से पुराने गीतों को बहुत पसंद करते हैं। तो जो हम लोग का साप्ताहिक भ्रमण होता है रेडियो रिमझिम परिवार का, गोपालगंज जिले के 14 ब्लॉक और 2 अनुमंडल में, तो यह सब जब बातें निकल कर आती है तब हम अपने चार्ट पर सूची में उन सब कार्यक्रमों का स्थान देते हैं। केवल स्टूडियो में बैठकर हम यह नहीं सोचते हैं कि भारत की कहानियां सुनाएं, HQC हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का कार्यक्रम चलाएं। यह सब हम अपने श्रोताओं के बीच पहुंचकर बातें करते हैं। कुछ हमारे विद्वान अधिवक्ता हैं, वे भी अपने विचारों को देते हैं। कुछ गैर सरकारी सरकारी विद्यालय में कार्य करने वाले शिक्षक हैं, स्टाफ हैं, वे भी अपने बातों को बताते हैं। तो मेरा मानना है कि जिस तरह सूर्य का प्रकाश, वर्षा का पानी और हवा सबके लिए बराबर जाता है, उसी तरह रेडियो रिमझिम को सुनने वाले सभी उम्र वर्ग के लोगों के पास उनके पसंद का कार्यक्रम हम प्रेषित करें। कभी कभार तो ऐसा होता है कि तकनीकी व्यवधान से जब रेडियो रिमझिम का प्रसारण रुक जाता है तो कई सेवानिवृत्त रिटायर्ड व्यक्ति फोन करते हैं कि आपका प्रसारण क्यों नहीं हो रहा है। जैसे हमने बताया कि शनिवार के रात में ठीक 9:02 पर हमारा तकनीकी व्यवधान इतना बड़ा हो गया जो रात में ठीक नहीं हो पाया। जो हमारे टीम के लोग हैं रात को 2 बजे तक बनाते रहे, फिर अगले दिन वे लोग कोई घर नहीं गए, सब लोग लगे रहे, तब जाकर हमारा प्रसारण शुरू हुआ। हम भी चाहते हैं कि हमारा प्रसारण लगातार निरंतर होता रहे, लेकिन जो काम जो मशीन कभी कभार हमें डिस्टर्ब कर देता है उसके आगे हम लोग बेबस और लाचार हो जाते हैं। और हम लोग का मानना है कि जब तक हमें ईश्वर ने आपका सेवा करने का अवसर दिया है तब तक अपना 100% लगाकर हमारी टीम देती रहे, क्योंकि सेवा का अवसर हर व्यक्ति को हर क्षेत्र में नहीं मिलता है। कोई जन प्रतिनिधि बनकर सेवा करता है, तो कोई विद्यालय का शिक्षक बनकर सेवा करता है, तो कोई सरकारी कर्मचारी बनकर सेवा करता है, और वह समझता है कि सब हम अपने आप कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि विधि के विधान के अनुसार आपको सेवा करने का अवसर मिलता है, क्योंकि हम लोग के ऊपर जो बैठा मालिक है वह जानता है कि कौन व्यक्ति किस क्षेत्र में कौन सा अच्छा काम कर सकता है, उसे ही अवसर देता है। इसलिए आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है, इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। इसके अलावा कोई अन्य कार्यक्रम आप सुनना चाहते हैं तो जरूर

मेरे परिवार को, आपके क्षेत्रवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और नमन है। सावन का बड़ा ही पवित्र महीना सनातन धर्म में माना जाता है। इस महीना में कई प्रकार की विधि विधान द्वारा पूजा की जाती है। बिहार से 105 किलोमीटर कांवर लेकर हमारे कांवरिया भाई बाबा बैजनाथ धाम जाकर जल भी चढ़ाते हैं। विभिन्न राज्यों में इसी तरह की प्रक्रिया चलती है। वैसे सावन का महीना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें किसी तरह का मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। मछलियाँ भी अंडा देती है इस समय, और जब भी कोई पर्व त्योहार होता है तो यदि वैज्ञानिक विधि से उसका कारण देखा जाए तो बड़ा ही स्पष्ट और साफ दिखाई देता है। हमारे जो पूर्वज थे वह बहुत ज्ञानी थे, मेरा मानना है। उनके पास ज्ञान का भंडार था। अक्षर ज्ञान भले ही कम हो, लेकिन उनकी सोचने की क्षमता, उनकी परखने की क्षमता हमसे बेहतर थी। और विशेष करके जो हमारे पूर्वज थे वह निस्वार्थ भाव से अपने कार्यों को करते थे। कई जगह हमने देखा है कि गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते थे, गांव में तालाब पोखरा बनवा देते थे। यदि गांव में जाने का रास्ता पानी से भरा रहता था तो उस पर मिट्टी डलवा देते थे। यानी जन सेवा की भावना निस्वार्थ भाव से हमारे पूर्वजों में थी। और सावन की जो आपने शुभकामना दी है, हम अपने पूरे टीम के साथ सहर्ष स्वीकार करते हैं। और सावन का एक बड़ा ही मशहूर गीत है कजरी, जो प्रतिदिन शाम को 4:25 से 5 तक रेडियो रिमझिम द्वारा प्रसारित किया जाता है। उसके पहले निर्गुण चलता है, उसके बाद कजरी शुरू हो जाता है। और सावन में विशेष करके महिलाएं झूला झूलती हैं, हरा रंग का कपड़ा पहनती हैं। यानी उत्सव भरा महीना सावन को माना जाता है। हर धर्म में, हर मजहब में इसे बड़ा ही अच्छा माना जाता है, जहाँ तक हम जानते हैं। और हमारे यहाँ का प्रसारित कार्यक्रम आपको बेहद अच्छे लगते हैं, यह जानकर हमें संतोष हुआ कि जो हमारी टीम लगातार मेहनत कर रही है और आप लोगों द्वारा साबशी शुभकामनाएं, बधाइयां देते हैं, उससे हमारा मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है और ज़्यादा काम करने की ललक पैदा होती है। उम्र चाहे कोई भी हो, लेकिन यदि व्यक्ति ठान ले तो वह सफलता के शिखर पर चला जाएगा। हम लोग जिस राज्य में रहते हैं, उस राज्य में 80 बरस के बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध तलवार उठा लिए थे और अंग्रेजों का पीछा करते करते गंगा नदी पार किए। संयोग से उनके हाथ में गोली लगा और उसी हाथ को काट के वह जो है गंगा माँ को अर्पित कर दिए। तो उम्र चाहे कोई भी हो, यदि आपके अंदर आत्मबल है, काम करने की क्षमता है, जीवन जीने की ललक है, तो आप मजबूती से आगे बढ़ते रहिएगा। उम्र जो है एक नंबर है, एक संख्या है। और काम करने का मन नहीं है तो आप 18-20 साल के हैं, आपको हर काम में बोझ लगेगा। जैसे पिताजी कह दिए गिलास पानी ले आवो, तो इनकर यह काम बा बैठल बैठल खाली यार हावत रहले कि पानी ले आवो, चाय ले आवो। यह जो है सोच के ऊपर निर्भर करता है। आप जीवन में यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमेशा अपने को रफ्तार में रखें, जरूरत के अनुसार पैदल चलें, साइकिल चलाएं, बाइक चलाएं, लेकिन नियम और कायदे के साथ। एक हिंदी में कहावत है कि जो व्यक्ति हमेशा कायदे में रहता है वह हमेशा फायदे में रहता है। तो जीवन जीने का ढंग है, उत्सव मनाने का ढंग है। यदि हम सोचने लगे कि हमारे पैर में दर्द है, नहीं चला जाएगा, हमारा माथा

0: रहा है, क्या करे, तो सोचते रह जाइएगा। उसके लिए उसका इलाज कीजिए, उपचार कीजिए, क्योंकि यह जीवन जो है बड़े भाग्य से, सौभाग्य से मिला है। इस जीवन को उत्सवपूर्ण बनाएं और निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार
1: जी। सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है सबनम खातून का। रेडियो रिमझिम टीम को सलाम, मैं गोपालगंज की बेटी हूँ। मेरा शादी पड़रौना उत्तर प्रदेश में हुआ है। मैं अपने मायके में रेडियो पर और ससुराल में एप पर सुनती हूँ। बचपन से रेडियो रिमझिम से जुड़ाव रहा है। आज भी रेडियो रिमझिम अपने परिवार जैसा लगता है। दिन प्रतिदिन नए कार्यक्रम नए आरजे को सुनने को मिल रहा है, अच्छा लगता है। रात के समय में छोटी छोटी कहानियां भी सुनाई जाए, तो सर इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
0: आदरणीय शबनम जी, आपके पूरे परिवार को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बेटी को एक ना एक दिन माँ बाप का घर छोड़कर दूसरे घर जाना ही है, यह प्राकृतिक नियम है। जिस नियम का आपने अनुपालन किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आप एक बेटी के तरह गोपालगंज में रहते हुए रेडियो रिमझिम को शानदार तरीके से सुना और आज अपने ससुराल में ऐप के माध्यम से सुनती हैं। यह रेडियो रिमझिम परिवार के लिए गौरवपूर्ण बातें हैं। मेरा मानना है कि बेटियां कहीं भी जाएं, लेकिन अपने माँ बाप का घर जो है भूल नहीं पाती है, जीवन के किसी भी दौर में पहुंच जाए। हमें आज भी याद है कि आज से 50-60 साल पहले जब हम लोग काफ़ी बच्चे हुआ करते थे, तो अपने दादी के मायके जाते थे कभी कभार, जो मेरे घर से 15 से 20 किलोमीटर था। तो जब जाते थे और उधर से लौट कर आते थे, तो दादी माँ कहती थी, कौन मिला, क्या खाया, हमको कौन कौन याद कर रहा था। यह सब बातें आज भी मेरे स्मरण में है, यादों में है। तो बेटी चाहे अपने माँ बाप से भी धनवान पूंजीवान के घर में चला जाए, लेकिन जो माँ बाप का घर होता है, जहाँ जन्म स्थान होता है, वहाँ बेटियाँ उसको भूल नहीं पाती हैं। यह मेरा भी अनुभव रहा है। हम जो है अपने माताजी के साथ कभी कभार मामा जी के घर जाने का अवसर मिलता था, तो देखते थे कि 3 किलोमीटर दूर से ही माताजी जो है चिल्लाना शुरू कर देती थी, माँ बाप का नाम लेना शुरू कर देती थी। एक लगाव होता है, एक प्रेम होता है, और इस प्रेम को आप बनाए हुए हैं। यह रेडियो रिमझिम परिवार के लिए बहुत ही खुशी की बात है। बेटी दुनिया में जहाँ भी रहे, लेकिन अपने घर परिवार मायके को याद रखे, यह बड़ा ही सौभाग्य की बात है। आप रेडियो रिमझिम से फरमाइश किए हैं कि छोटी छोटी कहानियों को भी सुनाया जाए, तो मेरा मानना है कि रेडियो रिमझिम में सोठी बिरजा भार, इसके अलावा कई कार्यक्रम हैं जो रात में बुधवार को भी चलते हैं। इतने कार्यक्रम हैं कि हम भी कभी कभी विस्मित हो जाते हैं। जब चार्ट देखते हैं तब याद पड़ता है, जैसे विक्रम बैताल, भारत की कहानियाँ। कोई कार्यक्रम सुबह में है, कोई शाम में है, और दिन में तो ऑनलाइन कार्यक्रम चलते हैं, तो इन सब कहानियों को आप सुने। इसके अलावा भी कोई कहानी यदि आपके दिल दिमाग में है, तो जरूर अपने संदेश के माध्यम से पहुंचाएं, क्योंकि रेडियो रिमझिम श्रोताओं के आदेश का अनुपालन करने में अपनी पूरी क्षमता लगा देता है। बस इतना ही ध्यान रखता है कि भारत सरकार ने एक मार्ग निर्देशिका दिया है, उसी के अनुरूप हमें कार्यक्रमों का प्रसारण करना है, और हम लगातार लंबे समय से करते आए हैं, और इसी अनुपालन के करते हमें भारत सरकार द्वारा भी पूरे भारत वर्ष में प्रथम पुरस्कार मिला था, यह आपको पता ही है, क्योंकि जो व्यक्ति लंबे समय से रेडियो रिमझिम को सुनता है, यहाँ के प्रत्येक गतिविधि के बारे में उसे जानकारी होती है। आपका संदेश काफी अच्छा लगा, जो हमें मरमराहत कर दिया। आप खुश रहें, अच्छे रहें और रेडियो रिमझिम 90.4 को सुनते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है जितेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी का, कैलगढ़ से। रेडियो रिमझिम परिवार को नमस्कार है। सुबह का भजन और शिव जी की कहानी तथा शुक्रवार को शाम को रामायण बहुत अच्छा लगता है। मेरा सुझाव है कि कजरी का समय बढ़ाया जाए। तो सर, इनके संदेशों पर अपना विचार दें।
0: आदरणीय कुशवाहा जी, आपके पूरे परिवार को, पूरे कैलगढ़ के निवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपने जो कजरी के बारे में बताया, तो हमारे कई श्रोताओं का अनुरोध आया था कि सावन के महीना में कजरी रेडियो रिमझिम में जरूर बजता है, तो उसका टाइम हम लोगों ने 40-45 मिनट का रखा है, जो प्रतिदिन शाम को 4:15 से शुरू होकर 5 तक बजता है, केवल रविवार को छोड़कर, क्योंकि रविवार को ऑनलाइन कार्यक्रम होता है जो 2 से 5 तक चलता है, और शनिवार के शाम को कुछ तकनीकी व्यवधान के कारण हमारा प्रसारण रुका था, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। इसलिए इस बात को बार बार कहते हैं कि जो काम तकनीक पर आधारित है, कभी न कभी कुछ कमियां फॉल्ट हो जाता है, उसके लिए हमारे श्रोता बहुत व्याकुल हो जाते हैं। रेडियो रिमझिम के ईमेल पर, व्हाट्सएप पर, फोन पर लगातार संदेश फोन आना शुरू हो जाते हैं, और जब तकनीकी व्यवधान आ जाता है तो हमारे पास कोई जानकारी देने का साधन नहीं रहता है। फिर भी हम चाहते हैं रेडियो रिमझिम के फेसबुक पर इस बात को लिख कर डाल दें कि तकनीकी व्यवधान के कारण प्रसारण रुका हुआ है, यही एकमात्र उपाय होता है। तो आपने जो जिस कार्यक्रम के बारे में बताया, जे आपको अच्छा लगता है, यह सुनकर हमें भी अच्छा लगा, और जो कार्यक्रम का अभी आप समय बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इसे कम से कम 1 किया जाए सावन भर। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण आपने बात कहा कि सुबह का भजन और शिव पुराण काफी अच्छा लगता है, तो यह सब तो आप लोगों के मांग के अनुरूप हम प्रसारित करते हैं। यदि इसके अलावा और कोई कार्यक्रम सुनना चाहते हैं, तो संदेश के माध्यम से हमें अवगत कराइएगा। हम सेवक हैं और सेवा भाव से अपना काम करना चाहते हैं। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, कोई पहचान नहीं है। रेडियो रिमझिम एक छतरी है जिसके अंदर रहकर हम लोग काम करते हैं, और आप लोग जैसे आदरणीय श्रोता हैं, जो रेडियो रिमझिम को पूरे भारत वर्ष में रेडियो के क्षेत्र में एक ब्रांड बना दिए हैं। आज भी जब हम कुशीनगर, देवरिया या पटना जाते हैं और कहते हैं कि गोपालगंज के रेडियो रिमझिम में हम काम करते हैं, तो लोग बड़े ही आदर और सम्मान से देखते हैं। यही हम लोगों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार मिलता है कि हमारी पहचान जो है रेडियो रिमझिम से है। तो आप बेझिझक होकर अपने बातों को हम तक पहुंचाएं, और हम पूरी तरह से प्रयास करते हैं कि अपने श्रोताओं के आदेश का अनुपालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है नवीन कुमार मिश्रा जी का, लिखे हुए हैं, मैं गोपालगंज में सरकारी सेवा में हूं, मुझे रेडियो का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, मैं भी रेडियो से जुड़ना चाहता हूं, कोई रास्ता बताएं। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
0: आदरणीय श्रोता बंधु, आपके पूरे परिवार को और गोपालगंज में जिस विभाग में भी आप सेवा दे रहे हैं, वहाँ के अधिकारी कर्मचारियों को भी रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। कई लोग ऐसे हैं आज भी गोपालगंज जिले में पदस्थापित हैं, जो कभी कभार आकाशवाणी पटना में या आकाशवाणी बनारस में या आकाशवाणी गोरखपुर में काम किए हैं। प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करके पदाधिकारी या स्टाफ सिलेक्शन से निकाल कर स्टाफ बन गए हैं, लेकिन उनके अंदर एक ललक रहती है कि रेडियो पर बोलना, रेडियो के बातों को सुनना अपने आप में बड़ा ही अच्छा होता है। हम एक ऐसे पुलिस अधिकारी को जानते हैं कि वह जो है अधिकारी बनने से पहले जब प्रतियोगी परीक्षा में थे तो आकाशवाणी पटना में वह कभी कभार अपना इंटरव्यू या वार्ता करने जाते थे। संयोग से एक बार मुलाकात हुआ और वह अपने अनुभव को शेयर किए। एक महिला पदाधिकारी थी जो आकाशवाणी से जुड़ी थी, बाद में पदाधिकारी बन गई। तो जीवन में आगे बढ़ने का कई रास्ते हैं और हर व्यक्ति चाहता है कि हम कदम दर कदम आगे बढ़ते जाए और उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहता है और यह अच्छी बात है। लेकिन कभी कभार जीवन एक ऐसा करवट लेता है कि आपको जिस क्षेत्र में बेहतर बनना है आप वहाँ न जाकर किसी दूसरे क्षेत्र में पद और प्रतिष्ठा बड़ा मिल जाता है, जो अपने मन के भावना को दबा देते हैं। यह हमने महसूस किया है। पिछले कई वर्षों से रेडियो संचालक होने के नाते कई तरह के लोगों से मिलना जुलना, बातें करने का अवसर मिला है। फिर भी यदि आप सरकारी सेवा में हैं, यदि सरकार का कहीं कोई रुकावट नहीं है, तो रेडियो में आप भेंट वार्ता, इंटरव्यू या बातचीत कर सकते हैं। लेकिन मेरे समझ से आरजे के रूप में आप न समय दे पाएंगे, न प्रशिक्षित हो पाएंगे, न कार्यक्रम में जा पाएंगे। लेकिन रेडियो से जुड़ने का कई तरीका है। यदि आपको बेहतर स्क्रिप्ट लिखने आता है तब भी जुड़ सकते हैं। यदि एक अच्छा वक्ता हैं तो किसी न किसी विषय पर बोल सकते हैं। चूंकि सरकारी सेवा का अपना एक प्रावधान होता है, जिसका अनुपालन सरकारी सेवा में रहते हुए सभी व्यक्ति को करना पड़ता है। तो आप एक बार स्वयं आकर मिले, तब हम खुलकर आपसे बात करेंगे। और रेडियो रिमझिम तो जितने लोगों का अवसर दिया है, हमें नहीं लगता है कि वह कोई दूसरा रेडियो स्टेशन इतना अवसर दिया होगा। आज रेडियो रिमझिम में काम करने वाले कई लोग जो है पदाधिकारी बने, संविदा पर काम करने लगे, शिक्षक बने, आकाशवाणी में किसी निजी चैनल में गए हुए हैं। जिनके पास जो अनुभव होता गया वह कदम दर कदम आगे चलते गए, यह अच्छी बात है। लेकिन उनके मन में रेडियो रिमझिम के प्रति आदर और सम्मान है, और जिसके पास यह चीज होता है वह जीवन में जरूर तरक्की करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है प्रवीण कुमार दुबे जी का, मीरगंज वार्ड नंबर 10 से। मैं रेडियो रिमझिम का सुबह और शाम का हालचाल प्रादेशिक और राष्ट्रीय समाचार सुनता हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी स्वच्छ तथा अस्पष्ट प्रसारण रहता है। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दे। साथ ही देखे तो मेरे पास कई संदेश हैं, लेकिन समय का इशारा है कि कार्यक्रम को समापन करना चाहिए, तो प्रतिक्रिया देते हुए कार्यक्रम को समापन करें और विदा लें।
0: आदरणीय प्रवीण जी, आपके पूरे परिवार को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमें लगता है कि व्यवसाय के क्षेत्र में आप हैं, क्योंकि अधिकतर व्यवसायी वर्ग जो है सुबह और शाम रेडियो रिमझिम सुन पाते हैं। कई व्यवसायी भाई ऐसे हैं जो अपने दुकान में रेडियो रिमझिम को लगातार बजाते हैं। और आपने बताया कि सुबह और शाम का हालचाल प्रादेशिक और राष्ट्रीय समाचार सुनते हैं, तो हमारा उद्देश्य यहीं पर पूरा हो गया। मेरा भी मानना है कि जो व्यक्ति 15 मिनट का राष्ट्रीय समाचार सुन लिया, उसे पूरे संसार का हालचाल मालूम हो गया, और जो प्रादेशिक समाचार सुन लिया, उसे बिहार के 38 जिले का सूचना मिल गया, और जो हालचाल सुन लिया अपने जिले के 14 ब्लॉक और 2 अनुमंडल का सूचना उसे प्राप्त हो गया, और यह काफ़ी अच्छी बात है। कहा जाता है कि सूचना जिसके पास जितना अधिक होगा, वह अपने जीवन में तरक्की उतना अधिक करेगा। हमने एक कहानी पढ़ा था स्पेन में कि स्पेन एक देश है जहाँ पर हर बात की सूचना त्वरित गति से कई माध्यमों से लोगों के पास पहुँच जाता है, और सूचना के पाने से व्यक्ति जो है अपने आप में पूर्ण हो जाता है। और रेडियो रिमझिम का मानना है कि कम से कम गोपालगंज जिले में जितने लोग रहते हैं, वह किसी न किसी माध्यम से सरकार की सूचनाओं की जानकारी उनके पास पहुँचे, और सरकार क्या करना चाहती है, जिला प्रशासन द्वारा क्या किया गया है, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी घटना घट रही है, इसकी जानकारी हमें रखनी चाहिए। हमने यहाँ तक सुना है कि जो भी व्यक्ति पदाधिकारी बनना चाहता है, UPSC हो या BPSC की परीक्षा हो, इंटरव्यू का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है, और सामान्य ज्ञान तो अनंत है। जिस तरह हमारा आकाश जो है, जिसका कहीं अंत नहीं है, उसी तरह मेरा मानना है कि सामान्य ज्ञान भी अनंत है, लेकिन फिर भी जो मोटी मोटी बातें हैं, उसे तो आत्मसात करना ही होगा। आप प्रवीण जी रेडियो रिमझिम को सुनते हैं और निरंतर सुनते हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सबसे अच्छी बात है, आपका संदेश मिला कार्यक्रम में जो हमारे आदरणीय श्रोता अपनी बातें हम तक पहुंचाते हैं, उससे रेडियो रिमझिम परिवार का मनोबल जो है काफ़ी ऊंचा हो जाता है। हमें नहीं लगता है कि केवल हम एक तरफा संवाद कर रहे हैं। जिस तरह प्रचार गाड़ी को हम लोग देखते हैं कि शहर में आया और एक तरफ से बोलते और दूसरे तरफ चला गया, कोई सुना कोई नहीं सुना, लेकिन रेडियो रिमझिम का दो तरफा संवाद जो है, हमें यह बताता है कि हमारे सुनने वाले लोग पदाधिकारी हों, कर्मचारी हों, किसी भी सरकारी गैर सरकारी सेवा में हों, या किसान हों, जवान हों, सिपाही हों, कोई भी हो जो हमें सुनता है और अपने बातों को हम तक पहुंचाता है। हमारा मानना है कि सबके विकास के साथ ही पूरे देश का विकास होता है, इसलिए आप अपनी बातों को हम तक पहुंचाते रहें, ताकि हम लोग मिलजुल कर अपने प्यारा देश भारत को मजबूत बनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय श्रोता बंधु, RJ सोनू जी ने बताया कि समय भी समाप्त हो रहा है, तो अब हमें भी निकलना चाहिए, और हम लोगों के देश का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार 15 अगस्त आ रहा है। हम अपने घरों पर, दुकानों पर, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर, कार्यालय में, हर जगह तिरंगा फहराएंगे और इस राष्ट्रीय पर्व को पूरे उत्साह से मनाएंगे। यह एक सरकारी छुट्टी के तरह नहीं मनाना है। हम सरकारी सेवा में हैं या गैर सरकारी सेवा में हैं, लेकिन हमें अपने घरों के ऊपर, झोपड़ी हो, पक्का हो, दो तल्ला हो, तीन तल्ला हो, लेकिन हर घर पर तिरंगा फहरना चाहिए, ताकि हमें लगे कि हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग मिलकर इस राष्ट्रीय त्यौहार को पूरे उमंग और उत्साह से मना रहे हैं। इसी के साथ अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: तो श्रोताओं, ये रहा आज का संदेश मिला कार्यक्रम। यदि आप भी इस कार्यक्रम में अपना शिकायत, सुझाव, प्रशंसा या अपने विचारों को भेजना चाहते हैं, तो आप भी भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है रेडियो रिमझिम, बंजारी मोड़, गोपालगंज, पिन कोड 84 14 28, तथा व्हाट्सएप नंबर है 98527 88 291, और ईमेल आईडी है radiorimjim@gmail.com। आप जिस माध्यम से अपने शिकायत, सुझाव या प्रशंसा या अपने विचारों को भेजना चाहते हैं, उस माध्यम का उपयोग करके हम तक पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से हमें भी दीजिए जाने की इजाजत। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम, जो हमेशा से कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
5: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
6: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
6: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज यहाँ सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
11: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
12: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD शादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
13: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान, नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान, नाक, गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर, RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765655750।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
4: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
9: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
10: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
9: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
10: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
9: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
8: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
8: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
9: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
11: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
12: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
13: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
12: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा। और
14: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा। जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने लाभार्थियों को 1 करोड़ से अधिक घर सौंपकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3,00,000 लोग विस्थापित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग खेलों से जुड़ते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देशवासियों से खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह बढ़ाने की अपील की।
6: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
14: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में 4th स्थान पर था। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े भारत छोड़ो आंदोलन का स्मरण किया।
15: It is indeed to pleasure to launch this campaign today on the August Gandhi Devas as we commemorate the Quit India Movement of 1942. Millions of Indians responded to his call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day.
14: गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी में तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोगों ने इस यात्रा में तिरंगे के साथ भागीदारी की। मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हुए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
16: झारखंड सरकार ने आंदोलनरत छात्रों की अधिकांश मांगों पर सहमति जताई है। राज्य के मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023 से 25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद में मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी, साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए आईआईटी आईएसएम आईआईएम रांची और एक्सएलआरआई के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी। छात्रों ने कहा कि सीबीआई जांच की मांग पर कोई समझौता नहीं होगा। इस बीच झारखंड लोक सेवा आयोग के 3 मौजूदा सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। तीनों को सीआईडी ने कल पूछताछ के लिए तलब किया है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
14: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही।
17: पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष नागरिकों पर कायराना आतंकी हमला हुआ था, तो उसके बाद हमारी बहादुर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों को नेस्त नाबूद कर दिया और सारी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने दुनिया को बताया कि हमारी नारी शक्ति के सिंदूर की रक्षा करने के लिए हम किसी भी तक जाने को तैयार है।
14: गृह मंत्री अमित शाह पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है।
18: ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
14: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
19: दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी में स्वीकृत 2,09,000 आवासों में से 2,03,000 से अधिक आवास महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए 16,600 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि करीब 22,000 आवास अनुसूचित जाति, 14,000 से अधिक अनुसूचित जनजाति और 75,000 से अधिक आवास अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित किए गए हैं। इस योजना में आवासों के स्वामित्व में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। पीएम आवास योजना शहरी की शुरुआत वर्ष 2015 में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं से युक्त हर मौसम के लिए उपयुक्त पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
14: भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है। इसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है, जो वर्ष 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में हुई घटना की जांच कर रहा है। इसे गंभीर घटना के रूप में दर्ज किया गया है। दोनों पायलट की मादक पदार्थों के सेवन की जांच की गई। जांच पूरी होने तक दोनों पायलट को ड्यूटी से हटा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि जांच और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जनजातीय लोगों के अधिकारों, संस्कृति, परंपरा और योगदान को मान्यता देने के लिए आज दुनिया भर में विश्व जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1994 में जनजातीय लोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस की शुरुआत की थी। इस वर्ष का विषय है जनजातीय धाय सम्मान, जीवन और देखभाल का संरक्षण। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित पवित्र कलश वंदन यात्रा आज कंबोपुरा गांव पहुंची। बड़ी संख्या में लोगों ने संत श्री रविदास मंदिर में यात्रा का स्वागत किया। ये यात्रा गुरु रविदास की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के काशी स्थित सीर गोवर्धनपुर से शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, आसाम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा में एक बार फिर तेज बारिश होने के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
20: उड़ीसा में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस सीजन में बैतरणी नदी में तीसरी बार बाढ़ आई है, जिससे जाजपुर और भद्रक जिलों के कुछ हिस्सों में फिर से पानी भर गया है। जबकि बैतरणी की एक शाखा कानी नदी के कारण जाजपुर जिले में फिर से बाढ़ आ गई है। IMD ने पूरे राज्य के लिए येलो वार्निंग जारी की है और अनुमान लगाया है कि उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम उड़ीसा के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के आसपास के इलाके में कम दबाव वाले सिस्टम के कारण भारी बारिश होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
14: चीन के पूर्वी तट से तूफान डॉल्फिन के टकराने से झेजियांग और फुजियान प्रांत प्रभावित हुए हैं। मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच शंघाई के दोनों हवाई अड्डों ने 1300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं और 3,00,000 लोग विस्थापित हुए हैं। तूफान के तट से टकराने के बाद उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और धीरे धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है। उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुंग पंडियन ने 65 किलो वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने आज कुल 285 किलो का भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की। लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद JPSC प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा। JPSC के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3,00,000 लोग विस्थापित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
21: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
22: बनिए अपने जिले की आवाज रेडियो रमजिम के साथ। आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
0: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
22: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
2: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
22: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
5: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
23: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
5: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
23: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
5: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
23: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
5: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
23: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
24: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
25: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
24: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
25: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
26: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
27: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
23: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
23: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
23: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
23: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
28: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। भीमराव अंबेडकर विद्यालय का जिला पदाधिकारी ने किया निरीक्षण। रेलवे ट्रैक से एक अज्ञात बुजुर्ग का शव पुलिस ने किया बरामद। आगरा का एक युवक बना लुटेरी दुल्हन का शिकार। नदी के बढ़ते हुए जलस्तर से कई गांव हुए प्रभावित। चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विद्यालय हथुआ का निरीक्षण किया। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी हथुआ, कल्याण पदाधिकारी गोपालगंज और प्रखंड विकास पदाधिकारी हथुआ सहित तमाम पदाधिकारी गण मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विद्यालय में संचालित शैक्षणिक गतिविधियों, विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम एवं दैनिक दिनचर्या की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उनके पठन पाठन, विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं तथा खेलकूद से संबंधित गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही विद्यार्थियों के नियमित स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था के संबंध में भी अधिकारियों और विद्यालय प्रबंधन से जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने विद्यार्थियों के लिए संचालित जीविका दीदी की रसोई का भी निरीक्षण किया। रसोई में तैयार किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता एवं स्वच्छता का भी उन्होंने जायजा लिया। विद्यार्थियों से भोजन की गुणवत्ता और नियमित उपलब्धता के संदर्भ में भी आवश्यक जानकारी ली। साथ ही उन्होंने विद्यालय की आधारभूत संरचना का भी जायजा लिया। आवश्यकता अनुसार भवन एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं की मरम्मती कार्य कराने का भी निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया। छात्रावास में विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करने और आरओ मशीन को भी निर्धारित समय पर बदलने का निर्देश दिया गया। नगर थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के सहबाजवा गांव के पास रेलवे ट्रैक से एक बुजुर्ग का शव बरामद किया। बताया जा रहा है कि ट्रेन के चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हुई है। हालांकि मृतक की पहचान पुलिस के द्वारा नहीं हो सकी। आसपास के लोगों से भी पता करने का प्रयास किया गया, परंतु स्थानीय लोगों के द्वारा भी मृतक की पहचान नहीं की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद सुरक्षित हॉस्पिटल में रखा है और मृतक की पहचान की जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस को अंदेशा है कि मृतक शायद ट्रेन यात्रा के दौरान ही ट्रेन से गिरकर मरा होगा। हालांकि इस मामले

दुर्गा मंदिर में शादी के बाद दूल्हा दुल्हन होटल लौट आए। घर जाने के लिए गाड़ी बुलाया गया। जाने के दौरान बाइक सवार कुछ लोगों ने दूल्हे के परिजनों से मारपीट की और दुल्हन को अपने साथ लेकर फरार हो गए। कथित लुटेरी दुल्हन गैंग की जानकारी होने के बाद पीड़ित परिवार स्तब्ध हो गया। इसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई है। बताया जा रहा है कि फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। हालांकि इस कांड को लेकर पुलिस के तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मीडिया खबरों में प्रसारित जानकारी के अनुसार थामे माँ भवानी के मंदिर परिसर में ही शादी कराई गई थी और गैंग के लोग अपने सदस्यों के साथ दूल्हे के परिवार को चूना लगाकर फरार हो गए। शादी के नाम पर दूल्हे से नगदी रुपए भी लिए गए। इसके अलावा दुल्हन को जो भी गहने और जेवर इत्यादि दिए गए थे वह सब दुल्हन लेकर फरार हो गई। अब पीड़ित परिवार पुलिस से इस मामले में सहायता की गुहार लगा रहा है। नेपाल के क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के कारण गोपालगंज में भी गंडक नदी में जलस्तर वृद्धि हो रही है। बताया जा रहा है कि गंडक नदी में हुई जलस्तर की वृद्धि से निचले इलाके के कुछ गांवों में पानी घुस गया है। सदर प्रखंड के रामनगर मेहंदिया जगीरी टोला खाप मकसूदपुर कमल चौधरी का टोला रामपुर टेंगराही और राजवाही समेत कई गाँव पानी से घिरे हैं। माझा प्रखंड के भी निमुइया गाँव में गंडक का पानी प्रवेश कर रहा है। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से अधिक गाँव के स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र हेल्थ सेंटर और प्लस टू विद्यालय पानी में डूब गए हैं। करीब 2 दर्जन गांवों का सड़क संपर्क भी जिला और मुख्यालय से टूटने की बात सामने आ रही है। नीचे उफनती गंडक नदी के वजह से इलाके के लोगों में दहशत है और दियारा इलाके के लोग बताया जा रहा है कि इलाके में कुछ जगहों पर 3 से 4 फीट तक पानी सड़कों पर भरा हुआ है जिससे लोगों को जान जोखिम में डालकर कहीं आना जाना पड़ रहा है। पानी के वजह से जलीय जंतु का भी खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोग प्रशासन से भी सहायता की गुहार लगा रहे हैं। जादोपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि धर्मपुर की ओर से चोरी की मोटरसाइकिल लेकर गम्हरिया के मंगलपुर पुल के रास्ते नौतन की ओर कुछ लोग जा रहे हैं। पुलिस ने मंगलपुर पुल के पास वाहन जांच अभियान शुरू किया। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार पुलिस वाहन को देखकर भागने लगे। पुलिस ने सूझबूझ के साथ घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में चंदन कुमार पिता राजकुमार महतो और विपिन कुमार पिता मंगल बीन, ये दोनों बिशंभरपुर के रहने वाले हैं। पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि उक्त मोटरसाइकिल चोरी की है। पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल को जब्त करने के बाद दोनों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अब पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। इधर माले के नेता और अधिवक्ता आजाद शत्रु के जेल जाने के बाद अब गोपालगंज के जिला विधिज्ञ संघ ने 10 अगस्त को सीजेएम कोर्ट का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा अधिवक्ता आजाद शत्रु को जेल भेजा गया और इससे नाराज अब जिला विधिज्ञ संघ ने 10 अगस्त को सभी अधिवक्ताओं के साथ सीजेएम कोर्ट का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। जादोपुर के गंडक नदी में एक युवक के डूबने की सूचना मिली है। इसके वजह से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना स्थल पर इकट्ठा सैकड़ों की भीड़ एसडीआरएफ की टीम के साथ सर्च अभियान चला रही है। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन चल रहा है। भैंसही के बलुही बाजार स्थित गंडक नदी पुल के पास की यह घटना बताई जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में कुचायकोट के मठिया हरदो पंचायत भवन पर मानसिक बीमार और बौद्धिक अक्षमता व्यक्ति योजना 2024 और स्थायी लोक अदालत का गठन आदि विभिन्न विषयों पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पैनल अधिवक्ता हैदर अली के द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों को मानसिक बीमारी एवं बौद्धिक अक्षमता, इसके लक्षण, ऐसे व्यक्तियों के साथ परिवार के अन्य सदस्यों के रहने के तरीके, मानसिक बीमार एवं बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के इलाज हेतु सदर अस्पताल के अलग वार्ड की व्यवस्था और उन्हें मिलने वाली विधिक सहायता इत्यादि के बारे में आवश्यक जानकारियां दी गई। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने 41 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ओवर ब्रिज के पास वाहन जांच करते हुए मोटरसाइकिल सवार शराब तस्कर को पकड़ा। पकड़ा गया आरोपी संतोष कुमार पंडित पिता चंद्रिका पंडित साकिन हरपुर टेंगराही थाना मोहम्मदपुर का निवासी है। इसकी गाड़ी और शराब को जब्त कर आरोपी को उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
इधर भोरे थाना की पुलिस ने कल्याणपुर मुसहर टोली में डीजे पर नाच के दौरान हुई मारपीट के मामले में 3 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि 19/6/2006

0: 26 को यहाँ डीजे पर डांस के दौरान मारपीट हुई थी। इस घटना में कुछ लोग घायल हुए थे। इसी मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया था और नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध छापेमारी चल रही थी। अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने आरोपियों को दोषी पाते हुए बिरजू सहनी पिता जवाहिर सहनी, विशाल सहनी पिता जवाहिर सहनी और पंकज राजभर पिता हरिलाल राजभर, ये सभी साकिन कल्याणपुर भटवलिया थाना भोरे के रहने वाले हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और अब इन पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों ने मारपीट की घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। बरौली थाना की पुलिस ने देवापुर में ग्रामीण बैंक के सामने खड़े एक ट्रैक्टर से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बैटरी चोरी करने के मामले में कार्रवाई की है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि घटना स्थल पर पहुंचकर पुलिस ने जांच पड़ताल की। इस दौरान ग्रामीण बैंक के सामने ट्रैक्टर से बैटरी चोरी होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। इसी बीच मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने इस चोरी के कांड में संलिप्त संदिग्ध की पहचान की। आरोपी का नाम अंकु कुमार पिता रंजन सिंह उर्फ टुन्ना सिंह साकिन देवापुर बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और पूछताछ की गई, जिसके बाद अंकुश कुमार सिंह ने बैटरी चोरी होने की बात स्वीकार की। आरोपी के निशानदेही पर चोरी की गई ट्रैक्टर बैटरी को बरामद किया गया, जिसके बाद अब इसे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। कुचायकोट पुलिस ने भी चोरी की एक मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गश्ती के दौरान भटवा मोड़ पर वाहन जांच शुरू किया था। इसी दौरान आरोपी मोटरसाइकिल लेकर भागने लगा। पुलिस ने खदेड़ कर जब इसको पकड़ा और जांच पड़ताल की गई तो यह मोटरसाइकिल चोरी की निकली। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान सुमित कुमार पिता श्रवण शाह साकिन मठिया दयाराम थाना कुचायकोट के रूप में बताया जा रहा है। पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद चोरी की मोटरसाइकिल को जब्त कर इस मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। भीमराव अंबेडकर विद्यालय का जिला पदाधिकारी ने किया निरीक्षण। रेलवे ट्रैक से एक अज्ञात बुजुर्ग का शव पुलिस ने किया बरामद। आगरा का एक युवक बना लुटेरी दुल्हन का शिकार। नदी के बढ़ते हुए जलस्तर से कई गांव हुए प्रभावित। चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ तारापीठ जगन्नाथपुरी गंगा सागर कालीघाट कोलकाता रजरप्पा राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गया बोधगया वाराणसी अयोध्या गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गुवाहाटी माँ कामाख्या धाम दार्जिलिंग सिलीगुड़ी गंतोक जनकपुर अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम हर हर महादेव।
3: ठक ठक
4: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए।
3: अच्छा मिला ही नहीं
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
8: सुनिए सुनिए सुनिए,
9: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
8: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
9: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
8: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
10: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 8604348652 पे।
11: तो अब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
12: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
11: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
12: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
11: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
12: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या? दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
13: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
11: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
14: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
15: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
16: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
17: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
16: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
17: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
16: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
17: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
16: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
18: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
19: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
18: और लाइट बिल के,
19: अब 0 रुपए कैसे दूं?
18: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
19: पक्का।
20: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
21: हर घर

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का साथ, बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का साथ, किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का हाथ। हमको अपना साया तक अक्सर बेजार मिला, हमको अपना साया तक अक्सर बेजार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। वेरी वार्म वेलकम टू दिस एपिसोड, जहां पर मुझे लगता है कि हर एक गाना जो मैं आज आपको सुनाने वाली हूं वो आपके दिल को छलनी छलनी कर देने वाला है। हर एक गाने में जो गहराई है वो सच में, मतलब आई थिंक आप डूब जाने वाले हैं हर एक गाने में। क्यों? क्योंकि हर एक गाना लिखा ही गया है इतनी खूबसूरती के साथ। आज मैं जिन शख्स के गाने यहाँ पर लेकर के आई हूँ, जिन्हें हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, जिनकी ज़िंदगी के बारे में आपको बताने वाली हूँ, आई डोंट थिंक वो एक ऐसा नाम है जिन्हें इंट्रोडक्शन की भी ज़रूरत है। मैं बात कर रही हूँ साहिर लुधियानवी जी के बारे में। वो एक समय था जब गाने में जज्बात और जान अगर कोई ला सकता था तो वो सिर्फ साहिर लुधियानवी जी ही कर सकते थे। आपको पता है कि हमने बॉलीवुड में जितने इनके गाने सुने हैं, प्यार के बारे में, ज़िंदगी के बारे में सुने ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में लिखना बिल्कुल पसंद नहीं था। क्या क्या चीज़ें थी जिनके बारे में साहिर जी को लिखना पसंद था और कौन सी चीज़ें बिल्कुल नापसंद करते थे, वो बताऊंगी आपको आगे शो पर। लेकिन फिलहाल यहाँ पर गानों की करते हैं शुरुआत। सबसे पहला गाना ही खयाम साहब और साहिर लुधियानवी जी की जो बेहतरीन दोस्ती थी उसके नाम, कभी कभी फिल्म से तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती।

0: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। वंस अगेन मुकेश जी की आवाज़ में कभी कभी फिल्म से ये गाना था, वो गाना जो कि आज की तारीख में कोई ऐसा बच्चा जिसके पैदा होने के 30 साल पहले ये गाना आ गया था वो भी शब्द शब्द दर शब्द जो है वो याद करके गा सकता है। इस तरह का ये गाना, उस तरह के बोल साहिर लुधियानवी जी के लिखे हुए, जिनकी ज़िंदगी को आज मैं यहाँ पर सेलिब्रेट कर रही हूँ, कुछ अनसुनी कहानियाँ किस्से आप तक लेकर के आई हूँ। मैं बता रही थी आपको कि साहिर साहब को बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो प्यार के बारे में लिखें। इनफैक्ट उन्हें खुदा, हुस्न, जाम, आशिकी, इन सब के बारे में भी लिखना बिल्कुल पसंद नहीं था। मतलब ही वॉज अ ट्रू बिलीवर ऑफ इट कि जिंदगी में और भी कई हैं गम, सिर्फ ये प्यार इश्क मोहब्बत ही नहीं है जिसे लेकर के लोग अपना दिल तोड़े बैठे हैं। इनफैक्ट अगर आप साहिर लुधियानवी जी की कुछ ऐसी कविताएं पढ़ेंगे या फिर कोई ऐसा लेखन पढ़ेंगे जो कि बॉलीवुड में इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो आप ये देखेंगे कि उन्होंने ज्यादा चीजें लिखी थी सोसाइटी के ऊपर, वॉर, पॉलिटिक्स, या फिर जो भी किसान थे उनकी जिंदगियां किस तरह से वो जूझ रहे थे उसके बारे में लिखना साहिर लुधियानवी जी ज्यादा पसंद किया करते थे। वैसे एक चीज जो लोग पसंद नहीं किया करते थे वो था साहिर जी का गुस्सा। कहते हैं कि हमेशा कॉन्ट्रोवर्सीज में बने रहते थे साहिर लुधियानवी जी उनके गुस्से के कारण। मतलब किसी ने अगर एक चू भी कर दी तो साहिर जी का गुस्सा जो था वो इस तरह से बढ़ जाता था जैसे कि मतलब सच में पहाड़ टूट गया हो। ऐसा ही कुछ एक किस्सा हुआ था जिसके बाद में लता जी और साहिर साहब के बीच में तनातनी हो गई थी। अभी लता मंगेशकर जैसी सिंगर से एक लिरिसिस्ट का यूं झगड़ा मोल लेना, क्या थी ये बात बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। उसके पहले फिलहाल सुनाते हैं आपको मोहम्मद रफी साहब की आवाज में गाना, जयदेव जी का कंपोज किया हुआ, हम दोनों फिल्म से।
1: मैं

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
2: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
4: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। ये गाना आज की तारीख में भी जब शादी हो रही होती है तो संगीत वगैरह में बजता ही है कि नहीं? उतना मजेदार ये गाना ओपी नैयर जी का म्यूजिक नया दौर फिल्म से उड़े जब जब जुल्फें तेरी सुना आपने। मैं हूँ रुचि आपके साथ और आज साहिर लुधियानवी जी के लिखे हुए जो गाने हैं वो चुन करके लाई हूँ आपके लिए। मुझे लगता है सुपर हिट प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, सो आई होप आपको हर एक एक गाना जो है मेरा चुना हुआ वो बेहतरीन लग रहा हो। फिलहाल मैं आपको बता रही थी कि साहिर जी का गुस्सा जो था वो तो बहुत फेमस था। सभी लोग डरा करते थे साहिर लुधियानवी जी का गुस्सा, मतलब दूर रहो भाई, इस टाइप का गुस्सा था। अभी हुआ यूं था कि साहिर साहब ऐसा समझते थे कि गाने हिट होते हैं तो वो लेखक के कारण, लिरिसिस्ट के कारण हिट होते हैं, ना कि सिर्फ सिंगर या सिर्फ कंपोजर के कारण। इसीलिए सबसे पहले तो साहिर साहब ने म्यूजिक डायरेक्टर्स और कंपोजर्स से एक रुपए ज्यादा लेना शुरू किया। उन्होंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कहना शुरू कर दिया था कि जितने भी पैसे दोगे, मैं नहीं कहता कि मुझे इतना सारा पैसा चाहिए, पर तुम जितना भी पैसा तुम्हारे म्यूजिक कंपोजर को दोगे उससे मैं एक रुपए ज्यादा लूंगा। वहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन फिर एक बार साहिर जी ने लता मंगेशकर जी को लेकर के भी यही बोला था कि तुम्हें क्या लगता है कि गाना सिर्फ इसलिए हिट हो रहा है क्योंकि लता जी ने गाया है? नहीं, गाना इसलिए हिट है क्योंकि मैंने ये गाना लिखा भी है, तो लता जी जितने पैसे लेंगी उससे एक रुपए ज्यादा तुम्हें मुझे देना पड़ेगा तो ही मैं गाने लिखूंगा, वरना मैं नहीं लिखूंगा। इस बात से लता जी ना खुश हो गई थी, नाराज हो गई थी। उन्हें लगा कि काफी रूड था ऐसा स्टेटमेंट देना, एंड दैट इज वाई लता जी और साहिर लुधियानवी जी के बीच में थोड़ी परेशानियां हो गई थी। लेकिन बॉलीवुड की बेस्ट सिंगर और बेस्ट लिरिसिस्ट ज्यादा दिन तक अलग कैसे रह सकते थे, तो दोनों ने एक दूसरे को मना लिया और फिर सब कुछ ठीक हो गया। वैसे तनातनी एक और बात को भी लेकर के थी कि साहिर जी अपनी उस समय की गर्लफ्रेंड सुधा मल्होत्रा जी से गाने गवाना चाहते थे, ना कि लता जी से। ये बात भी लता जी को वैसे ज्यादा पसंद नहीं आई थी। पर जहां तक लव स्टोरी की बात है, लव स्टोरी तो साहिर जी की एक किसी और के साथ में थी, जो आज तक भी जिसके मिसाल जो है वो दी जाती है, आज तक भी जिसके किस्से जो हैं वो याद किए जाते हैं। प्यार भरपूर था लेकिन लव स्टोरी अधूरी रह गई थी। कौन थी ये जिनके ऊपर मर मिटे थे साहिर साहब, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। फिलहाल यहाँ पर सुनाती हूँ आपको गीता दत्त और मोहम्मद रफी जी की आवाज में प्यासा फिल्म से अगला गाना।

मन्ना डे की आवाज वक्त फिल्म से ये गाना सुना आपने वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर। मैं हूं रुचि आपके साथ। वक्त चाहे जितना भी बीत जाए, जब एक शौहर अपनी बेगम के लिए गाना गाना चाहे तो यही गाना गाता है कि ए मेरी जहर जबी तुझे मालूम नहीं। आई थिंक जो रोमांस उस समय के लिरिक्स में हुआ करता था वो रोमांस आज की तारीख में कहीं खो गया है। वो जो गहराई थी प्यार की वो आज की तारीख में कहीं खो गई है। नहीं, आपको नहीं लगता? वैसे प्यार की गहराई की जहाँ तक बात है तो वो गहराई तो थी साहिल लुधियानवी जी और अमृता प्रीतम के प्यार में। आपको पता है दोनों को एक दूसरे की लिखी हुई कविताएं किस्से जो होते थे वो इतने पसंद थे कि दोनों एक दूसरे के लेखन पे मर मिटे थे। एक्चुअली कुछ ऐसा ही था कि इन दोनों को एक दूसरे का काम इतना पसंद था, साहिल लुधियानवी जी और अमृता प्रीतम को, कि दोनों को एक दूसरे की लिखी हुई चीजें पढ़ पढ़ करके एक दूसरे से प्यार हो गया था। अमृता प्रीतम जी शादीशुदा थी लेकिन वो इतने प्यार में थी, और साहिल जी भी प्यार में थे, इतने प्यार में थी अमृता प्रीतम जी कि वो अपनी शादी को छोड़ करके साहिल जी के साथ में आने को तैयार थी। लेकिन साहिल जी समाव नहीं चाहते थे कि ये जो एक ब्रिज था इन दोनों के बीच में, एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था अमृता प्रीतम जी और साहिल लुधियानवी जी के बीच में, साहिल जी चाहते नहीं थे कि इसे कम किया जाए, इस डिस्टेंस को कम किया जाए। उन्हें हमेशा लगता था कि उनका प्यार दूरी से है तो वही ठीक है। खूब सारे लेटर्स लिखा करते थे ये एक दूसरे को। एक बार जब ये दोनों मिले थे एक दूसरे से, तब साहिल जी ने खुद लिखा है ये कि एक अजीब सी चुप्पी थी इन दोनों के बीच में, मानो ये दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे को सिर्फ खतों के तौर पे जानते थे। एज अ पर्सन या असली में जब सामने आकर के वो इंसान बैठ जाए तो इन्हें लग रहा था जैसे कि एक दूसरे को जानते ही नहीं है। साहिल जी को कंटिन्यूसली सिगरेट स्मोक करने की आदत थी, तो वो चेन स्मोकर थे, तो वो जब अमृता जी के साथ में बैठे हुए थे तो लगातार सिगरेट पी रहे थे और बस बिना कुछ बात किए यूं ही कुछ एक्सप्रेशंस एक दूसरे को देख करके दिए और निकल लिए थे वो वहाँ से। और अमृता जी ने ये खुद कहा था कि साहिल जी के जाने के बाद वो उनकी पी हुई सिगरेट उठाती थी, उन्हें जलाती थी और फिर उसमें से एक गश लेकर के ये सोचती थी कि शायद मेरा और तुम्हारा जो फूका हुआ धुआं है वो ही जा कर के आसमान में मिल जाएगा। आई डोंट नो अगर ऐसा प्यार आज की तारीख में है भी या नहीं। क्या आपको पता है साहिर जी ने एक बार अमृता जी को एक होटल पे बुलाया था? नहीं नहीं, अकेले नहीं, वो उनके साथ में जो एक काफी उनसे छोटे उम्र में लेकिन पार्टनर इमरोज थे वो भी थे साथ में। लेकिन वहां पर भी एक बहुत ही बेहतरीन किस्सा हुआ था, इनका प्यार ही कुछ ऐसा था। आई थिंक दैट्स वाई साहिल लुधियानवी जी इतने बेहतरीन राइटर भी थे। दिल में प्यार ना हो तो इंसान राइटर लिरिसिस्ट नहीं बन सकता है। क्या था वो किस्सा बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
2: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
2: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
2: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है, साहिल लुधियानवी जी और अमृता प्रीतम जी की प्रेम कहानी। आज साहिल लुधियानवी जी के ही लिखे हुए गाने मैं आपको सुना रही हूँ यहाँ पर शो पर। मैं बता रही थी आपको कि कैसे एक बार एक होटल पे मिले थे साहिर जी और अमृता प्रीतम जी, साथ में इमरोज भी थे, साहिर जी के पार्टनर हुआ करते थे जो उस समय। तीनों काफी देर तक बैठे थे, साथ में थोड़ी बहुत शराब भी पी थी, लेकिन अमृता जी जब निकल गई वापस, जैसा मैंने आपको बताया था शादीशुदा थी वो तब तक, तो वो वापस गई जब, तब साहिर जी ने फोन लगाया अमृता जी को और बोला कि तुम तो चली गई हो लेकिन तुम्हारा पिया हुआ ग्लास जो है वो यहाँ पर अभी भी रखा हुआ है, और ये ग्लास जो है मैं हमेशा अपने साथ में रखूँगा, उसी ग्लास में से अभी मैं एक एक करके घूंट ले रहा हूँ और कुछ लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए। क्या लिखा था वो शायद साहिर जी ने कभी किसी को बताया नहीं, लेकिन अमृता जी बताती ज़रूर है कि कुछ बहुत ही खास है जो कि साहिर जी ने उसके बाद में लिख करके उन्हें भेजा था। इनफैक्ट कहने वाले कहते हैं कि कई सालों बाद तक भी एक ग्लास हुआ करता था जो साहिर जी की टेबल पे रखा रहता था, शायद ही वही ग्लास था जिसमें अमृता जी ने एक बार वो शराब पी थी। इन दोनों का प्यार तो मुकम्मल हुआ नहीं, लेकिन इनके गाने सुन सुन के हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कई दफ़ा प्यार में पड़े हैं। तो चलिए ऐसा ही एक और गाना आपको सुनाते हैं, मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है, त्रिशूल फिल्म से आपके लिए।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
2: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।
3: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
2: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।
4: 90.4
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
5: रात के 11 बज चुके हैं और रेडियो रिमझिम पर समय हो चुका है रात्रि समाचार का। आइए सुनते हैं पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में ये न्यूज़।

समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण। रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी। श्री मोदी ने एक वीडियो संदेश साझा करते हुए कहा कि जो खेलेंगे वे आगे बढ़ेंगे और उन्होंने नागरिकों से हमेशा भारत का उत्साह बढ़ाने की अपील की।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
0: इस मौके पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़ से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

0: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही। श्री सिंह ने भारतीय रक्षा बलों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों और उनके आकाओं का सफाया किया और भारत पर बुरी नजर डालने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग JPSSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023-25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ED जांच और आपराधिक मामलों की CID जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। ये कार्यकाल इस महीने की 13 तारीख से शुरू होकर अगले वर्ष 13 अगस्त तक रहेगा। सेवा में ये विस्तार 31 जुलाई 2027 को उनकी तय सेवा निवृत्ति के बाद भी जारी रहेगी। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राहुल नवीन का कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी दी है। वे 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi today met the medal winners of the Commonwealth Games 2026 at his residence in New Delhi. During the interaction, the medal winners shared their experiences from the games with the Prime Minister. In a social media post, Mr. Modi said that each one of them has made the nation proud through their exceptional performances, and their success will motivate many youngsters. India finished at the 4th spot on the medal table at the Games held in Glasgow, Scotland between 23rd of July to 2nd of August. Indian athletes won 39 medals, including 13 gold, 17 silver and 9 bronze across various sporting disciplines. The Har Ghar Tiranga campaign is being celebrated nationwide to foster a sense of patriotism among citizens, strengthen national unity and promote India's cultural heritage.

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: का हो साली जी, कहाँ की तैयारी बाहो?
2: रहो न जीजा, मैंने तैयार ना होकी।
1: ओहो,

0: बजे जा बुझने।
1: अच्छा तो चला।
2: दिल बोले म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4 रेडियो रिमझिम, सुनो दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: जी, स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
2: पूर्वी चंपारण बिहार के परराज बाबा सोमेश्वर नाथ से बोल रहा हूँ, जूना साजी।
1: अच्छा जी, क्या हाल चाल है आपका?
2: बढ़िया है, फिलहाल अभी जम्मू कश्मीर में हूँ।
1: तो कौन सा गाना सुनना है आपको?
2: दूल्हा गंगा पार के गाना सुना दीजिए। हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी, पैदल भी अबे तोरे दुआरी भोलेनाथ।
1: अच्छा, और गाना किसी को सुनाना भी है?
2: जी जी जी, फर्स्ट तो है रामविलास कुशवाहा जी कीर्तपुर बगहा से, वैसे धर्मेंद्र यादव जी और दिनेश साजी, उमेश साजी और भरत साजी, रवि कुमार साजी और रेडियो सुनने वाले सब साथी लोगों से सुना दूंगा प्रणाम।
1: तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं संत रेडियो सबके साथ, रेडियो 90.4 FM। प्रणाम।

0: जी बहुत
1: हेलो।
0: बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: थैंक यू मैम।
0: क्या हाल चाल है?
1: अच्छा है, आप कैसी हैं?
0: हम भी अच्छे हैं। नाम बता दीजिए अपना।
1: ईशा कुमारी।
0: कहाँ से?
1: हम गोपालगंज पोस्ट ऑफिस जो है वहीं पे।
0: तो कौन सा गाना सुनना है बता दीजिए, आज बता दीजिए आज कौन सा गाना सुनना है।
1: ये लो बता, ये मेरा भाई बताएगा मैम।
0: जी दे दीजिए।
1: हेलो।
0: हाँ बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते।
1: एक मुझे गाना सुनना है।
0: बता दीजिए।
1: बवली में पैसा। हिंदी
0: हिंदी सॉन्ग है। गाने के और कुछ लाइन याद है थोड़ा बहुत सुना दीजिए ना।
1: बगली में पैसा पैसा के करी लाख।
0: अच्छा तो आप बता दीजिए, मतलब मैं नहीं सुन पाऊंगी ना तो नहीं बजा पाऊंगी।
1: अच्छा ये बोल रहे हैं ना, बगली में पैसा पैसा के करी लाख, ये वाला गाना।
0: अच्छा और गाना किसी को सुनाना है?
1: सबसे पहले आपको, मेरे भाई के हम हैं, मम्मी है और रेडियो टीवी में जितने भी दोस्त हैं उन सबको।
0: चलिए ठीक है, तो फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो।
0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो में।
4: नमस्ते मैम।
5: नमस्ते
4: जी, मैं प्रदीप सानी दिल्ली से बोल रहा हूँ।
5: क्या हाल चाल है आपका?
4: ठीक है जी, अपना बताइए।
5: हमारा भी ठीक है।
4: मुझे एक सॉन्ग सुनना था।
5: बता दीजिए कौन सा सॉन्ग सुनना है।
4: ये जो ये दुल्हा गंगा पार का सॉन्ग सुनना है, टाइटल सॉन्ग।
5: अच्छा,
4: इतना बता दो ये दुल्हा गंगा पार के ये गाना सॉन्ग सुनना।
5: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
4: जी, अंकुश कुमार और प्रिंस कुमार और अमरजीत साहनी और जितने रिमझिम रेडियो में सुन रहे हैं सारे।
5: ओके, तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4।
4: थैंक यू मैम।
5: वेलकम।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 एफएम में।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार,
1: कैसी है मैम?
0: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: जी हम भी अच्छे हैं। बारिश उधर हुआ है रात को?
0: बारिश तो पूरी रात हुई है।
1: हम लोगों भी यहाँ बारिश बहुत हुआ है, चारों तरफ सादा ही सादा दिख रहा है, पानी ही पानी।
0: चलिए इसी का तो सब कोई को बेसब्री से इंतजार।
1: मैम गाना सुनवा दीजिए, एक तो
0: बता दीजिए।
1: गाने का बोल है, बादल यू गरजता है, डर कुछ ऐसा लग रहा है।
0: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
1: डेडिकेट आप सुनिएगा, जितने रेडियो रिमझिम होता है सभी सुनेंगे।
0: ओके
1: जी मैम,
0: तो फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। वेलकम।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
5: जी नमस्कार, मैम सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम मायर।
6: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
5: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे आपका शो का इंतजार करते हुए मैम।
6: तो आज कौन सा सॉन्ग सुनना है?
5: आज सुनवा दीजिएगा ना कजरे की हार।
6: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
5: मैं रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहता
6: हूँ। ओके, तो चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम। थैंक यू।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: जी नमस्ते नमस्कार जी, सोनी सिंह सर कैसे हैं?
0: नमस्ते, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
1: मैं तो आवेज मस्त मिलता है, झकास रहता हूँ। मैं रेडियो फैन मोहम्मद खान, ना बताइए सब क्या हो रहा है? ब्रेकफास्ट हो गया?
0: ब्रेकफास्ट हमारा हो गया, और आपका?
1: मेरा भी बहुत पहले हो गया है।
0: अच्छा,
1: और सर सुनाइए मौसम कैसा है अपने यहाँ का?
0: यहाँ का मौसम अभी ठीक है।
1: सुने बारिश हो रही है?
0: हाँ, बारिश हो रहा है लेकिन कभी कभी, लेकिन मौसम ठंडा
1: है। यहाँ पे तो काफी गर्मी है दुबई में, 45 क्रॉस कर गया है, कभी कभी 50 भी चला जा रहा है। तो मुझे सॉन्ग सुना दीजिएगा दयावान मूवी के।
0: और सॉन्ग कौन सा है
1: आज के दिन पे क्या रहा है?
0: अच्छा, तो चलिए और
1: सुनाना चाहते आपके साथ। जी सुनाना चाहते आपके साथ नीता भारती, रफ्तार खातून, सागुप्ता फिर दोस्त और लिस्नर को, और अनिल भाई को भी, छोटपुर वाला अनिल भाई, उनको भी सुनवा दीजिएगा।
0: चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सब कुछ। थैंक यू।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
2: नमस्ते मैडम
3: जी। नमस्ते।
2: हेलो।
3: हाँ जी
2: मैडम, मुझे गीत सुनना है।
3: जी नाम बता दीजिए।
2: कुमार से बोल रहा हूँ।
3: और कौन सा गीत सुनना है आपको?
2: दिल्ली आने का डोला जो मार के लिए।
3: ओके, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
2: मैं भी, हमारे श्रोता सुन रहे होंगे, इसमें सभी लोगों के लिए।
3: अच्छा जी, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 एफएम में।
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, मैं मोहम्मद अंसारी जयपुर से
1: जी,
0: और मैं कई बार लगा चुका हूँ और रिकॉर्ड करा भी चुका हूँ। मेरा सॉन्ग चलता नहीं है, क्या प्रॉब्लम है?
1: ऐसा तो नहीं है, सभी का कॉल प्ले होता है, ऐसा थोड़ी है कि आपका प्रॉब्लम हो जाएगा।
0: ऐसा है कि मुझे गाना सुनना है, गाना खेसारी लाल की आवाज में चलवा दीजिएगा।
1: बता दीजिए कौन सा।
0: ई प्यार काल परसों के भइल ना रहे।
1: एक बार और बोल दीजिएगा।
0: ई प्यार काल परसों के भइल ना रहे।
1: अच्छा, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
0: सुनाना है, सब दिन मामा है, अजरुद्दीन भाई है, और समीर भाई है, और सोहन भाई है, अजीम भाई है, सबको सुनाना है और ये गाना सुनना चाहते हैं सब हम।
1: जी बिल्कुल, प्ले करेंगे, प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं हेलो,
2: हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: जी नमस्ते।
6: नमस्ते,
5: क्या हाल बा?
6: हमारे तो ठीक बा, रुवा बताइए अपन रुवा कैसे बानी?
5: ठीक बानी, भारती दिन एक पहले तो ना तो नहीं हो
6: तो बुधवार के दिन छुट्टी पे रहो।
5: अच्छा अच्छा, मनोरमा जी रहने वो दिन तो गाना सुना दी हमसे, न भंगिया पिसाई है गणेश के पापा न यह जाता नो, ये गाना बाजी।
6: और ये गाना क्योंकि सुनाई वो करे
5: हम पूरा जुड़ल बस सब सुनी।
6: जी चलिए फिर, ठीक बात है। गाना प्ले करता नहीं सुनत रहे सबके साथ रेडियो रेंज 90.4 FM।
5: जी हम पचपरा से बोला जी बोलते नहीं।
6: हाँ हाँ
5: जी नमस्ते।
6: नमस्ते।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: मैडम नमस्ते।
0: नमस्ते,
1: मैं ज्योति साहू मधुसूदनगढ़ से बोल रही हूँ।
0: जी कैसी हैं आप?
1: बढ़िया है।
0: और क्या कर रही हैं अभी?
1: अभी हम खाना बना रहे हैं अभी।
0: अच्छा, नाश्ता हो गया है?
1: हाँ नाश्ता हो गया, खाना बना रहे हैं।
0: चलिए सब तो बढ़िया है। और गाना कौन सा सुनना है बता दीजिए।
1: गाना वो सुनना चाहती हूँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना।
0: एक बार और बोल दीजिए।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो कितने जाना।
0: ओके, और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: जी मेरे पति को।
0: अच्छा चलिए सब तो बढ़िया है। गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM। वेलकम।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
2: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
3: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: हेलो
5: हेलो,
4: हाँ जी मैम, नमस्ते।
5: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 90.4 एफएम में।
4: मैम आपको गाना सुनना है।
5: अच्छा, नाम बता दीजिए।
4: सुबह कानपुर हाजियापुर से
5: जी। तो कौन सा गाना सुनना है जी आपको?
4: मैम भरत तिवारी के एक गाना सुना दीजिए।
5: कौन सा?
4: भरत तिवारी पे कोई कोई भी सॉन्ग सुना दीजिए।
5: चलिए, और गाना किसी को सुनाना भी है?
4: मैम आपको और अपने घर वालों को परिवार को बजेगा मैम गाना
5: कल या फिर आज सुनने को मिलेगा
4: शाम में। सबका नाम क्या है?
5: मेरा नाम
4: हा?
5: मेरा भारती है।
4: सोनू मैम नहीं,
5: वो भी है। ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंजर 90.4 FM।

0: हेलो जी, नमस्कार मैडम जी।
1: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 90.4 एफएम में।
0: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश।
1: जी कैसे हैं आप?
0: बस दीदी, हमारे यहाँ तो गर्मी पड़ रही है, बरसात नहीं हो रही है अभी फिलहाल में, कम से कम 8-10 दिन हो गए हैं।
1: अच्छा,
0: आपके आपके यहाँ पर कैसा मौसम है?
1: मेरे यहाँ भी मौसम अभी ठीक है।
0: बरसात हुई है क्या आपके उधर?
1: हाँ हुआ था शाम के टाइम में थोड़ा सा।
0: नहीं इधर तो नहीं हुआ, कम से कम 8-10 दिन हो गए हैं, अभी पानी गिरा नहीं अभी तक। खाना माना हो गया आपका?
1: जी मेरा हो गया, आपका हो गया?
0: नहीं अभी नहीं हुआ मेरा। जी
1: जी, कौन सा गाना सुनिएगा बता दीजिए।
0: जी मैडम जी, पिक्चर नाम है अंट नंबर 1।
1: और गाना कौन सा है?
0: गाना भी सुना दीजिए, आई है बंटी तिवारी।
1: ओके, और गाना किसी को सुनाना भी है?
0: जी जी, सबसे पहले आपको और गजराज सिंह लोधी है और गोपाल ओझाजी ककवासा से।
1: जी चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 एफएम।
0: धन्यवाद मैडम।
1: वेलकम।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ding ding bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 94.4 FM।
6: किस्मत बोल रहे हैं?
5: हाँ जी, कैसे हैं आप?
6: हाँ सब ठीक बा, तुम ठीक बोलो ना।
5: हाँ,
6: तो बारिश हो तो रहा आज तो नहीं क्या होता है? ठीक बात, दिन ठंडा दिन बा ना।
5: हाँ आज दिनो ठंडा बावे, अतनी बारिश नहीं क्या हो खता आज हो
6: बावे। जुम्मा है तो ठीक होगा। वो सुना दियो कवाली बोलिया।
5: अच्छा, कौन सा कवाली सुने?
6: तू अपना मुँह से सुना दू, अच्छा होला।
5: चलिए ठीक बाबा, गाना प्ले करते नहीं, सुनते रहें रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: ठीक।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार।
1: शिवराज कुमार सिंगापुर।
0: हाँ जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, आप कैसे हैं मैडम?
0: हम भी ठीक हैं।
1: अच्छा, और बारिश हो रहा है गोपालगंज में?
0: नहीं, अभी तो नहीं हो रहा है, हुआ था रात को, अभी ठीक है।
1: अच्छा, अभी मौसम सही हो रहा है ना?
0: मौसम अभी सही हो रहा है, ठंडा ठंडा रह रहा है अभी।
1: हम लोग का तो धान बोरिंग से रोका गया, तब बारिश हुआ, भगवान जी मेहरबान है एकदम।
0: चलिए कोई नहीं, दोबारा नहीं पटाना पड़ेगा।
1: हाँ, दोबारा नहीं चलाना पड़ेगा।
0: हाँ हाँ,
1: और बताइए मैम, खाना वाना हो गया?
0: हाँ, मेरा तो हो गया, आप अभी तो हो गया क्या?
1: नहीं, हम लोग का 2 घंटा अभी टाइम है लंच होने में, अभी 11 बजे नाश्ता तो सुबह में करके आते हैं।
0: चलिए तब तो बढ़िया है। तो बताइए,
1: हमको आज गाना खेसारी लाल का गाना सुनवाइएगा, नया सॉन्ग।
0: खेसारी लाल का नया सॉन्ग कौन सा?
1: वो वाला गाना नहीं है, वो लाली लगाएंगा जिसे करिए, अरे वो सब छोड़ दीजिए, कौन सी कम सुनवा दीजिए, अब कबो जर भी खैला कर बे असर होला।
0: अच्छा,
1: यही कौन सिंह सुनवा दीजिएगा, ठीक है? नया खेसारी लाल का है गाना, लेकिन हमको याद नहीं है ना।
0: कोई नहीं, अगली बार वो बता दीजिएगा, इस बार ये पवन सिंह का सॉन्ग बजा दूंगी।
1: यही पवन सिंह के व्यवसाय सुनवा दीजिएगा।
0: जी जी जी। और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
1: सबसे पहले आपको डेडिकेट करना चाहते हैं
0: जी,
1: आज जितना रेडियो रंजन सुनने वाला है सबसे।
0: चलिए फिर गाना आपका प्ले करते हैं, सुनते रहिए के साथ रेडियो रंजन 91.4 FM।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: जी हम जैन बनारस।
6: जी कैसे हैं आप?
7: बढ़िया है।
6: क्या हो रहा है अभी?
7: साड़िया में काम कर रहे हैं, पावर लूम।
6: तो बता दीजिए कौन से गाने की फरमाइश है आज?
7: ये गाना है वो वाला, सारी दुनिया का जैसे एक है, उस तरह तू मेरी दिल रूपा एक है। कुमार सानू आवाज।
6: और गाना किसी को डेडिकेट भी है?
7: जी हम दोस्त लोग को सुनेंगे और अपने फैमिली के साथ सुनेंगे।
6: जी जी, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: नमस्कार जी।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो में।
0: जी मैं गांधीनगर से अजय पकवान बोल रहा हूँ।
1: जी क्या हालचाल है आपका?
0: जी बढ़िया है, अपना सुनाइए।
1: मेरा भी ठीक है।
0: जी गाना सुनाइए हमको, सौदागर दिल ले ले दिल देकर।
1: कौन सा सॉन्ग?
0: सौदागर फिल्म का है, सौदागर दिल ले ले दिल देकर।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट की है?
0: लड्डू शाह है, व्यासा है, राजेश है, साहिल जी है, इंतजार जी है, दीपक जी है, शंकर भाई है और रेडियो सुनने वाले सभी को।
1: तो चलिए फिर आपसे गाना शुरू करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंगीन 94.4 FM।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: बच्चा तू जतना खर्चा करेबू हम उतना खर्चा करब। ओकरा खातिर हम भागल ना हई। आ जदि हमरा के छोड़ के गइलू तो बुझ लीह
1: हम संतोष पागल नहीं।

0: अरे एक करे जा, जितना तुहरा से रात में बात कोइले बनी ना, उतना केहू और खाती जागल ना है। लेकिन जदि तू हमार दिल तुरलू तो बुझ ली हम
1: संतोष पागल नहीं।

0: ना हो तर
1: अरे एक करे जा हम बरसिना खाली गर्जे वाला बादल ना होई आ जदी हमरा के छोड़ के गइलू तब बुझ लीह
2: हम संतोष पागल नहीं।

0: हुआ कि हम ग्रेड ए पोल नहीं पोल नियर खड़ा हो जाए।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट कारवा मिनी।
2: सारे गामा कारवा इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूँ रुचि आपके साथ।
3: बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो जैना।

0: अरे पूरा इंडिया हिली बाबू, खाली तू देखत जा। अरे पूरा इंडिया हिली बाबू, खाली तू देखत जा।
1: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम है इस पल यहाँ, जाने हो कल।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बस बस बहुत हो गया, माफ कर दिया तुम लोगों।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से। All right.

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आज विक्रम संवत 2083 श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि प्रातः 5:56 तक तथा त्रयोदशी रात 3:32 तक रहेगी। आज दिनांक 10 अगस्त 2026 दिन सोमवार के इस पावन प्रभात में रेडियो रिमझिम का पूरा परिवार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। आज सूर्योदय प्रातः 5:30 तथा सूर्यास्त 6:30 के आसपास होने की संभावना है। तो आइए जानते हैं आज का आदर्श वाक्य। हार केवल वही मानता है जो प्रयास करना छोड़ देता है, वरना लगातार मेहनत करने वाला हर दिन सफलता के और निकट पहुंचता है। श्रोताओं, उगते सूरज की सुनहरी किरणों ने प्रकृति को जगाना शुरू कर दिया है और हमारी स्टूडियो घड़ी में सुबह के 5:00 का संदेश दे रही है। नई उमंग, नई ऊर्जा और सकारात्मक विचारों के साथ आइए आरंभ करते हैं आज की प्रातःकालीन सभा एक मधुर और भक्तिमय गीत के साथ।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।